0: 2626.
1: वेदर का हालचाल, 18 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है एंड 10 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। 0% चांस है बारिश के। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया वेदर है, लेकिन आज का सनसेट होगा 7:29 PM पे।

0: Kia ora, namaste, welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. Hey. Well, yes, thank you so much for tuning in. अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया तो और अगर आप मुझे 12 बजे से सुन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बने रहिए बिकॉज और भी बातें यहाँ पे आने वाली हैं, और भी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यू स्टे हियर एंड देन आई विल बी टॉकिंग लॉट मोर अबाउट द लंच टाइम रेंट लाइन, जिसके मैसेजेस आप मुझे भेजेंगे. आज कॉल्स भी करिए, कॉल करके बताइए यार कुछ. एंड देन ऑफकोर्स कोई ऐसा टॉपिक विच यू फील लाइक वॉन्ट शुड बी डिस्कस ओवर हियर, तो देखते हैं. यू नो, फील फ्री टू मैसेज मी ओवर हियर. बताइए मुझे कोई ऐसा टॉपिक जो यहाँ पे मुझे लाना चाहिए या फिर मुझे इस आर में बात करनी चाहिए, आप मुझे बताइए 5599 पे. पर यस, बने रहिए, उसके साथ बॉलीवुड की खबर भी मैं लेके आने वाला हूँ. सो यस, लेट्स स्टार्ट विथ दिस अमेजिंग सॉन्ग बटरफ्लाई, देव नेगी एंड सुनी चौहान की आवाज में. बचाओ क्या?
1: लौट के आया उड़ता पंछी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज.

0: स्टे ट्यून, आप बस बने रहिए बिकॉज लंच टाइम रेंटलाइन के मैसेजेस में यहाँ पे पढ़ने वाला कुछ मैसेजेस मिले हैं, आप भी मुझे भेजिए 5599 पे, सो दैट यहाँ पे मैं शेयर करूँ कि लोगों को किस चीज से आपत्ति है. एज एन लाइक ऑफ कोर्स यू नो दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग बट वैसा हुआ नहीं और सडनली एक कोई सरप्राइज एलिमेंट आ गया, सो उसके बारे में बात होगी. आप बस बने रहिए, सुनते रहिए आज के इस लंच बॉक्स शो में, बने रहिए. लंच
1: बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
3: हम
1: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन.
4: माजे लिए माजे लिए मोमबत्ती है, पहले दिनों तेरे उत्ते आंख रखिए, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दिल मंगिए.

0: Streaming on Rover.
1: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और professional, confidential और free emotional support देते हैं। Call Asian Helpline Free on 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है, तो 111 पर कॉल करें।
2: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
3: India aa raha hai Auckland and the Blue Tigers need your voice behind them. देखिए इंडिया को ऑल व्हाइट्स के अगेंस्ट गो मीडिया स्टेडियम थर्सडे 12 नवंबर को एक रेयर चांस अपनी नेशनल टीम को न्यूजीलैंड की जमीन पर लाइव देखने का ब्रिंग द फैमिली वेयर योर कलर्स एंड फिल द स्टेडियम विद प्राइड अडल्ट टिकट सिर्फ $20 से शुरू किड्स $10 से प्लस बुकिंग फीस बुक नाउ एट टिकटेक एंड बी देयर फॉर अ हिस्टोरिक नाइट
4: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है क्या आप हिम्मत हार चुके हैं तो एक मौका मुझे देके देखिए हाय मैं हूँ गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं
5: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800-564-424
6: At Woolworths, these back to school specials are a great way to save. Get half price on the Sistema range. And Dairyworks cheese slices 500 gram are just $8 each. TCs and exclusions apply. Only at Woolworths.
7: The ultimate pro iPhone, iPhone 18 Pro. With a big leap in battery life, new 48 megapixel fusion main camera with variable aperture for more creative control, and four gorgeous colors. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.
8: Lunchbox with Ketan.
9: Mujhe pasand hai ladka.
8: Hum. Lunchtime Rant Line.
10: लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत है और यहाँ पे हम बात करेंगे यू जस्ट कॉल मी ऑन द सेम नंबर 0800-004-866 पे और यहाँ पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं वैसे एक मैसेज तो आया मुझे लेट मी जस्ट ओपन द थिंग बट यस आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कॉल करके भी आप मुझे बता सकते हैं ये रहा लंच टाइम रेंट लाइन का मैसेज हाय आई एम मीना मनुकाओ से ये मैसेज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि माय रेंट इज अबाउट पीपल हु बोरो योर फोन चार्जर एंड सम हाउ फॉरगेट दैट दे बोरोड इट माय कलीग आस्क्ड फॉर माइन बिकॉज हर फोन वाज ऑलमोस्ट डेड आई गिव इट टू हर इन द मॉर्निंग एंड बाय द एंड ऑफ द डे शी हैड ऑलरेडी गॉन होम विद इट हाउ डू वी कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट टेकिंग एनीवनस चार्जर और बिलोंगिंग to their home. Well. ये एक्चुअली क्वाइट कॉमन इशू है ये काफ़ी बार हमें मैसेज आए हैं रिगार्डिंग दैट यू नो यू गिव इट टू समवन इन योर ऑफिस और मे बी समवेयर यू नो जहाँ पे भी आप जाते हैं एंड देन कम्प्लीटली इफ़ यू फॉरगेट द अदर पर्सन ऑल्सो फॉरगेट बट द इशू इज दैट आप जब उन्हें बोलते हैं आई मीन फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपका सामान लिया है वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक आप उसे रिमाइंड नहीं करवाते हैं आई मीन नॉट कि सभी ऐसे करते हैं बट मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि इवन दे फॉरगेट और मे बी आई डोंट नो उनको लगा कि शायद ये मेरा ही है या नहीं है देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स तो जब आप फ़ोन करते हो फिर सामने वाले अरे हाँ या मैं भूल ही गया था कम्प्लीटली भूल गया था सो दैट इज़ वॉट मीना इज टॉकिंग अबाउट कि भाई जब तुम्हें पता है कि तुम लेके गए हो तो एटलीस्ट जस्ट कॉल मी बैक एंड लेट मी नो कि भाई तुम्हारा सामान जो है वो मेरे पास रह गया है इफ़ यू लाइक हाउ कैन आई गिव इट बैक टू यू बट वो भी नहीं हो रहा है उसी वजह से ये चिढ़ रही है मीना जी Well, Veena ji, मुझे लगता है कि मैंने last time भी किसी को बताया था, what they can do is they just write down the name on that, and if someone wants to charge the thing, you just ask them straightforward कि भाई अगर तुम्हें charge करना है तो तू मेरे desk पे कर ले, and then yeah, जितनी देर तक करना है, जितनों का phone charge करना है, you are free to do so, but once you're done, you take the phone, right? I mean, if they can ask you to stay away from your phone, the charger, why can't they stay away from their phone for a while, once it's charged? राइट आप जब घर पे भी चार्ज करते हो तो ऐसा तो नहीं ना कि चार्जर को हाथ में. वैसे एक चीज़ बता देता हूँ, जब चार्ज हो रहा होता फ़ोन, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एट ऑल, कि आप चार्जिंग फ्रीक्वेंसी के अगल बगल बैठे होते ना, सो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट गुड फॉर योर ब्रेन. ये मैंने कहीं सुना है, मैं थोड़ा बस रिसर्च करके एक बार मैं फिर से लेके आता हूँ बात. बट येस, अगर आप चार्ज कर रहे हैं, इट्स बेटर नॉट टू वर्क ऑन योर फ़ोन वाइल इट्स चार्जिंग. सेम लैपटॉप के लिए भी लोग बोलते हैं कि आपको जब चार्ज हो रहा है एटलीस्ट आप फोन मतलब अपनी बॉडी से दूर रखें. अब लोग क्या करते हैं, चार्ज पे भी लगाते हैं प्लस वो अपने लैप पे भी रख देते हैं. दैट इज इवन वर्स्ट फॉर योर स्किन, एंड जो अगर आपके जो पांव के जो अंदर के जो वेन्स हैं और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो सकती है उससे. सो यस, सेम फॉर द फोन एज वेल. फोन यू डोंट कीप इट डाउन एंड ऑपरेट इट, यू एक्चुअली होल्ड इट. सो दैट्स वाई पीपल से कि आप फोन को जो चार्ज होने दो अपने हिसाब से, एंड देन वंस इट्स चार्ज देन यू कैन टेक इट आउट एंड स्टार्ट यूजिंग इट. बट थैंक यू मीना फॉर योर मैसेज, एंड होप यू आर हैविंग गुड डे. लेट्स हियर दिस सॉन्ग यारो फॉरएवर.
8: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: Well, एक खबर है लेटेस्ट. न्यूजीलैंड में एक वेप रिटेल चेन को $35,000 का फाइन लगा हुआ है क्योंकि अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन के दौरान माइनर्स यानी कि 18 साल से कम उम्र के लोग वेप प्रोडक्ट खरीदने में सक्सेसफुल रहे हैं वहां से. न्यूजीलैंड में माइनर्स को वेप बेचना इलीगल है और रिटेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर्स की एज वेरीफाई करें. हेल्थ न्यूजीलैंड और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की इन्वेस्टिगेशन में डिस्काउंट मॉल वेप लिमिटेड के स्टोर्स पर 10 बार अंडरकवर चेक्स किए गए हैं. इनमें से 6 ओकेजन पर अंडर 18 यंगस्टर्स वेप खरीदने में सक्सेसफुल रहे. अथॉरिटीज ने कंपनी पर $35,000 का फाइन लगाया है. ये न्यूजीलैंड में पहला केस है जहां एक स्पेशलिस्ट वेप रिटेलर्स को माइनर्स को वेप सेल करने और उन्हें स्टोर में एंटर करने से रोकने में फेल हुए. दोनों ऑफेंसेस के लिए प्रोसिक्यूट किया गया. अथॉरिटीज का कहना है कि यंग पीपल की हेल्थ प्रोटेक्ट करना रिटेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली.

0: तेरा मेरा प्यार पहली बार सुन रहा हूँ मैं, बट बहुत ही खूबसूरत गाना है यार। कार्तिक, महालक्ष्मी, अंतरा, मित्रा, इन्होंने किया है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। वैसे बॉलीवुड के गाने की बात ही हो रही है तो एक नई फिल्म रिलीज हुई है, द कंक्लूजन। कितनों ने देखी है? 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी दृश्यम, एंड आपके रिव्यू का इंतजार मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप मुझे बताइए कैसी लगी फिल्म आपको। बट यस, अजय देवगन की दृश्यम द कंक्लूजन ने बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिखाई है। फिल्म की सक्सेस के साथ पूरी दृश्यम फ्रेंचाइजी का जो टोटल कलेक्शन है वो करीबन 400 करोड़ का माइलस्टोन जो है वो क्रॉस कर चुका है, और सिर्फ 2 दिन में कंबाइंड कलेक्शन 420.65 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इसे फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी और ऑडियंस के बीच सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के स्ट्रॉन्ग फैन बेस को पता चलता है। देख रहे हो, लाइक मजा आ गया, लाइक यू नो हाउ पीपल आर लविंग इट। सो ऑफ कोर्स अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अपने पहले 2 दिन में 113 करोड़ इंडियन कलेक्शन के हिसाब से किया है, जबकि पूरी फ्रेंचाइजी का जो कंबाइंड कलेक्शन था वो 420.65। अब यहाँ पे एक सवाल है, पूरी फ्रेंचाइजी का मतलब क्या, लाइक इंक्लूडिंग द साउथ की जो पहली फिल्म थी वो, बिकॉज ऑब्वियसली बॉलीवुड रीमेक है, सो यू नो इज दैट टुगेदर विद दैट और जस्ट बॉलीवुड वाली। मेरे ख्याल से तो सिर्फ बॉलीवुड की ही बात हो रही है, बट सो ग्रेट यार, सो ग्रेट। वैसे पढ़ भी लेते हैं कि रिव्यू क्या है। एक का मैसेज भी आया, ही लव्ड द मूवी एंड ही इज रिकमेंडिंग टू गो एंड वॉच इन द थिएटर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द OTT। दैट इज सो ट्रू, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि मूवी जो है बहुत ही बढ़िया होगी। वैसे ये फिल्म जो है बॉलीवुड हंगामा की तरफ से रिपोर्ट आई है, उन्होंने एक पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर फिल्म बताई है, और ये सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी अपने क्लेवर स्टोरी टेलिंग, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और विजय सलगांवकर के कैरेक्टर के लिए काफ़ी पॉपुलर है। इस बार भी ऑडियंस को मिस्ट्री, टेंशन और माइंड गेम्स देखने को मिलता है, जहां हर सिचुएशन में सच और झूठ के बीच का डिफरेंस समझना मुश्किल हो जाता है। बॉलीवुड के रिपोर्ट के हिसाब से उनके क्रिटिक तरन आदर्श, उन्होंने 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए, यानी कि 9 out of 10। वाओ, उन्होंने अजय देवगन और जयदीप अलावत के फेस ऑफ, कोर्टरूम सीन्स, पावरफुल क्लाइमेक्स और अभिषेक पाठक की डायरेक्शन की खास तारीफ की है। रिव्यू के अकॉर्डिंग ये फ्रेंचाइजी की बेस्ट फिल्म है और 2026 की बेस्ट फिल्म में से एक हो सकती है। वाओ, दैट इज, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप सोच रहे अगर आपको पहली भी पसंद है तो ये उससे भी धमाकेदार है। फिर तो देखना बनता है यार। What do you think?
1: लंच बॉक्स विद केतन। हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम
0: लंच के मंच पे दिल से दिल तक unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: मुझे पसंद है लड़का। हम
1: लेडीज एंड जेंटलमैन
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: anywhere you get your podcast.
1: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
3: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
4: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
5: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
6: मुझे जस्टिस नहीं,

0: Kia namaste, welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. And yes, welcome back. आप सभी का स्वागत करते हैं इस आर में. बहुत सारी बातें होने वाली है. Yes, इस आर में कुछ अपडेट्स भी देने वाला हूँ, स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए, वो मैं करने वाला हूँ. सो आप स्टे ट्यून रहे एंड ऑफकोर्स आप बने रहिए आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में. पर यस, वेलकम बैक. अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. लेकिन अगर आप मुझे 12 बजे सुन रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. 3 बजे तक मैं हूँ, उसके बाद सैंडी जुड़ेंगी फॉर द कॉफी ब्रेक एंड रुजबे उनका साथ देंगे ड्राइव शो में. सो यू हैव अ वेरी गुड बैक टू बैक शोज राइट आफ्टर मी एज वेल ऑल द वे मिडनाइट तक. तो यस, आपका काम है, आप बस बने रहिए, सुनते रहिए. शुरुआत करते हैं बहुत ही बादशाह का एक नंबर वाला गाना, बोले तो नशा. लेट्स सी किस तरह का नशा देते हैं इस गाने के थ्रू.
1: बचाओ क्या,

0: चेतन
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very that is a very
4: acceleration. That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This is my fancy English. That's a very.
5: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: Weekdays, 6 to 10 a.m.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
8: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Swimming pool heat pumps under $2,000. Outdoor four-piece resin lounge set just $299. Outdoor gazebos just $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आर ओवरऑल हेल्थ. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं. कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें. कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर. गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें. जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे. कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड. डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
9: Big Save's Big Spring Sale ends today. We need to clear $20 million worth of sofas, recliners, beds, bunks, sofa beds, dining and bedroom furniture. Get 50% off selected sofas, yes, 50% off. King beds from only $999 and get two recliners for only $699. Plus, 36 months interest-free store-wide. T's, C's and credit criteria apply. Must

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम
0: स्किप या रीप्ले।
4: वेल यस, इस दिवाली हम के साथ अपनी किस्मत जो है वो चमकाने का मौका मत छोड़िए, बिकॉज हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, जहाँ पे आप जीत सकते हैं बहुत ही अमेजिंग प्राइजेस। वेल जी हाँ, विन $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली विद हम। वेल पहला प्राइज तो है $1,000 का, जहाँ पे आप एंट्री लेने के लिए हमें टेक्स्ट करें फॉर्च्यून स्पेस अपना नाम और सेंड कर दीजिए 5599 पे। Did you get it? मैं फिर से बताता हूँ, आप फॉर्च्यून लिखे FORTUNE स्पेस और अपना नाम लिख के मुझे 5599 पे भेज दीजिए, ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सकें एंड जीत सके $1,000 कैश। फॉर्च्यून जी हाँ, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिन्स, फॉर्च्यून फ्यूल एवरीवन बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून। और दूसरा प्राइस है $1,000 का, वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर्स। जी हाँ, पेट्रोल के खर्चे में रिलीफ पाना है तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिए IH स्पेस और अपने नाम के साथ मुझे 5599 पे भेज दीजिए। एक लकी विनर जीतेगा $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर। लेट मी रिपीट इट अगेन, आप IH लिखें और स्पेस के साथ अपने नाम लिख दीजिए और मुझे 5599 पे भेज दीजिए, ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाएं और आप $1,000 की कैटेगरी में आ जाएं, ताकि $1,000 मिले आपको और उससे फ्यूल वाउचर, फ्यूल रिफिल करें अपने कार में या फिर यू नो व्हाटएवर व्हीकल यू आर ड्राइविंग इन। और ये प्राइस जो है वो लेके आए हैं इंडेलिबल होम्स, आप सभी के लिए जो एक बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैं। आप उनकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं indelibleholmes.co.nz। एक खास बात मैं आपको याद रखने को बोलूँगा, ड्रॉ जो है वो फ्राइडे 30th October 2026 को होगा, यानी कि यू जस्ट नीड टू लिसन टू अस एवरी आवर, बिकॉज ये जो अनाउंसमेंट है जब जब आपको मिलेगा आपको तब तब हमें टेक्स्ट करना है इमिजिएटली, एंड इसलिए भी बिकॉज हर आवर में, हर शो में इट विल बी डिफरेंट देन द अदर। वेल यस, हम .rua.nz वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्वियसली रेट्स रहा है, बट यस इस दिवाली आप फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के साथ हो सकते हैं किस्मत आपका दरवाजा खटखटाएगा सिर्फ हम रेडियो के साथ।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंचबॉक्स। अभी के लिए खबर पढ़ लेते हैं। ऑकलैंड में रेलवे क्रॉसिंग पर एक ड्राइवर की डेंजरस ड्राइविंग का इंसिडेंट सामने आया। जब रेलवे बैरियर्स नीचे थे तब भी ड्राइवर ने रुकने की बजाय क्रॉसिंग पार करने की कोशिश की थी, जिससे सीरियस एक्सीडेंट का रिस्क पैदा हो गया। रेलवे क्रॉसिंग पर ऐसे लापरवाही ड्राइवर्स के साथ पैसेंजर्स और ट्रेन में सफर कर रहे लोगों की सेफ्टी को भी डेंजर में डाल सकती है। आज का इंसिडेंट ऑकलैंड के मॉर्निंगसाइड एरिया में ग्रीन पार्टी के ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट के दौरान हुआ। पार्टी लीडर्स मरामा डेविडसन और क्लॉय स्वॉर्ब्रिक के सामने एक कार ने लोअर्ड रेल बैरियर क्रॉस कर दिया। जब ट्रेन पास आ रही थी और वार्निंग लाइट्स और साइरेंस एक्टिव थे, ट्रेन ड्राइवर्स को हॉर्न बजाना पड़ा, लेकिन कार सेफली दूसरी तरफ निकल चुकी थी। ग्रीन्स ने कहा कि ऑकलैंड की वेस्टर्न लाइन पर लेवल क्रॉसिंग को रिमूव करने से सेफ्टी इंप्रूव हो सकती है और एक्सीडेंट का जो रिस्क है वो कम हो सकता है। एक वीडियो भी उन्होंने डाला है। Like whenever you get time, you can definitely see it. But yes, as you see, कि यहाँ पे red signal है, लेकिन फिर भी I'm just looking at the thing कि बजने के बाद भी the car didn't go through. So it was very, very, very, very close enough. Very, very close. क्योंकि वो एक साइड से निकल के दूसरे साइड में चले गए, ये काफ़ी डेंजरस था। सब कुछ बंद था उसके बावजूद भी आई थिंक जस्ट नीड टू लुक अराउंड कि कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। बट होपफुली एंड लकीली फॉर्चुनेटली किसी को हर्ट नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ इस वजह से। जस्ट इन केस अगर ट्रेन और भी पहले आ जाती तो शायद थोड़ा रिस्की हो सकता था।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। अभी की स्पोर्ट्स की खबर भी बता देता हूं मैं। वेल, न्यूजीलैंड रग्बी टीम के एक्सपीरियंस्ड लॉक स्कॉट बैरेट ऑल ब्लैक्स में वापसी को लेकर काफी एक्साइटेड है। भले ही अब वो टीम के कैप्टन नहीं रहे, बैरेट इंजरी के बाद टीम में रिटर्न कर रहे हैं और उनका जो मेन फोकस है वो अपनी परफॉर्मेंस और टीम को सपोर्ट करने पर है। वैसे कैप्टनसी से हटने के बावजूद उनका जो एक्सपीरियंस है और लीडरशिप जो है वो ड्रेसिंग रूम में टीम के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाली है। वेल, बैक सर्जरी और लगभग 10 महीने रग्बी से दूर रहने के बाद बैरेट को अपकमिंग ब्लेडिस्लो कप सीरीज के लिए ऑल ब्लैक स्क्वाड में रिकॉल किया गया है। होकर कोडी टेलर टीम के कैप्टन होंगे, जबकि बैरेट अपने ब्रदर्स ब्यूरन और जॉर्डी के साथ स्क्वाड में वापस आने वाले हैं। ऑल ब्लैक्स ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहला टेस्ट जो है वो 10 से शुरू होने वाला है। 10 अक्टूबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेलेंगे और दूसरा टेस्ट 17 अक्टूबर को सिडनी में होने वाला है। यानी कि दो जगह दो दिन और मुकाबला एकदम फुल ऑन एंटरटेनमेंट। एंड यस, ऑफ कोर्स उसके लिए भी आप मेक श्योर करें कि हमारे यहाँ पे भी ट्यून इन करें टू गेट द लाइव अपडेट फ्रॉम ऑल द वे, लाइक वेयर यू आर। यू एक्चुअली डोंट नीड टू वरी अबाउट गेटिंग अपडेट्स बाय गूगलिंग योरसेल्फ। बस एक बार अगर कार का या फिर आपके फ़ोन पे रो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू भी अगर वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा देंगे तो यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम। जी हाँ, लंच बॉक्स विद केतन।
1: मुझे पसंद है लड़का। हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
7: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
8: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz। दैट्स commonwealthvault.co.nz.
9: The Cooperative Bank's home loan crew are in the house. Check it. Got that home dream, but don't know where to start? Little KiwiSaver and lots of listings bookmarked. LIMS, LVRs, what does it all mean? Been checking out listings since 2019. Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for your tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. From first questions to front door keys, we got you. T's and C's apply.

0: Glad I got my enrollment sorted the other day.
1: See, Mai? I told you it was easy.
2: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
1: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
2: Really? What if I miss it?
1: Well, your vote won't count for this year's election.
2: Acha! You've convinced me. I'll enroll tonight.
3: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
4: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
5: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
4: Iske piche.
6: Hum.
4: Tech Talk.
7: वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबर। मैंने जैसे फ़ोन के बारे में बताया था थोड़े टाइम पहले अबाउट दैट यू शुडन बी चार्जिंग एंड यूजिंग इट एट द सेम टाइम। लाइक राइट नाउ माय फ़ोन इज़ नॉट विथ मी, दैट मींस मेरा फ़ोन जो है अभी एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली चार्जर नहीं था, सो व्हाट आई डिड इज़ मेरे पास पावर बैंक था, सो आई कनेक्टेड माय पावर बैंक टू सम अदर चार्जर एंड देन उसके थ्रू मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा, सो इट इज़ नॉट विथ मी राइट नाउ। इट इज़ लाइक कोसों दूर अभी पड़ा हुआ है। माई पॉइंट वॉजेंट लाइक कोसों दूर रखना, बट माई पॉइंट इज कि आप यूज़ ना करें फ़ोन वाइल इट्स गेटिंग चार्ज। उसका रीज़न एक और टॉपिक भी आता है, काफ़ी लोगों ने सवाल भी किया है। एक्चुअली एक उनका सवाल जो था वो ये था कि क्या ओवरनाइट चार्ज करना भी सही है या नहीं है। पर आजकल बहुत से लोग अपने फ़ोन को रात भर चार्ज पे रख छोड़ देते हैं और फिर सुबह उठते हैं फुली चार्ज होता है बट स्टिल कनेक्टेड, तो क्या ये सेफ है या नहीं। मॉडर्न स्मार्टफोन्स में बैटरी फुल होने पर चार्जिंग कंट्रोल जो है करने का सिस्टम होता है, इसीलिए ओवरनाइट चार्जिंग जनरली सेफ होता है। लेकिन फ़ोन को तकिए के नीचे या फिर ब्लैंकेट के अंदर रखकर चार्ज करना अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी लोग रखते हैं उसे बिकॉज उनको लगता है कि भाई मैं अलार्म से उठ नहीं पाऊंगा तो अगर वाइब्रेशन भी होगा तो उससे मैं उठ जाऊंगा। लेकिन फ़ोन को तकिए के नीचे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए क्योंकि हीट बिल्डअप हो सकती है। जी हाँ, पहले से उसके पास कंप्रेशर, क्योंकि कोई एयर नहीं तो उससे प्रेशर, सेकेंड डेज ऑफकोर्स आप चार्ज करें उससे भी हीटअप होता है। बैटरी की लाइफ को लॉन्ग टर्म में मेंटेन करने के लिए फ़ोन को बार बार 0% तक ड्रेन करना और हर बार 100% चार्ज करना अवॉइड कर सकते हैं। आपका फ़ोन में ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग या अडेप्टिव चार्जिंग का ऑप्शन होता है तो यूज़ इनेबल करें, उसे जो है एकदम प्रॉपरली ऑन कर दीजिए, अनेबल कर दीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि न्यूजीलैंड की वर्क सेफ एजेंसी रिकमेंड करती है कि फ़ोन को शॉर्ट वक्त ओवरनाइट सोते वक्त ओवरनाइट चार्जिंग पर ना छोड़ें और हमेशा ओरिजिनल या रेप्यूटेबल चार्जर्स ही यूज़ करें। सस्ते के पीछे ख़राब क्वालिटी के ना लें बिकॉज उससे क्या हो सकता है, उसका आपका फ़ोन की जो बैटरी जो पावर सप्लाई है वो भी ख़राब हो सकती है। सो दैट्स वाई यू नो दैट्स वाई जो ओरिजिनल फ़ोन्स की जो एसेसरीज़ होती है वो क्यों इतनी महंगी होती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेम ब्रांड वाली ले ही लें, और भी ऑप्शंस होते हैं, बट ये देख लीजिए कि वो उन कंपनी से अप्रूव्ड है या नहीं, ये भी आप डबल चेक कर लीजिए। बट यस, बहुत सारे चीप वाले प्रोडक्ट पे भी मत जाइए बिकॉज वो चीप थोड़े टाइम के लिए होगा बट इट कैन डैमेज यू लाइक 10-15 टाइम्स मोर एक्सपेंस व्हाइल डूइंग अ रिपेयर।
4: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: चलिए फटाफट से अपडेट दे देता हूँ रिगार्डिंग इलेक्शन स्पेशल पॉडकास्ट। न्यूजीलैंड के अपकमिंग इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सनी कौशल जी सैंडी रुस्बे के साथ डिस्कशन करते हैं कि कीवी बिजनेस को आजकल किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, और एट द सेम टाइम जिस तरह से क्राइम और रिपीटेड ऑफेंडर्स भी हो रहे हैं, इमिग्रेशन को लेके और स्टाफ शॉर्टेज, ये सारी बातें उन्होंने काफ़ी अच्छे से करी है। तो आपको अगर ये पॉडकास्ट सुनना है, विच आई वुड हाईली रिकमेंड, नॉट जस्ट फॉर इलेक्शन बट ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, यू आर ऑल्सो टैक्स पेइंग सिटीजन यहाँ के, या फिर रेसिडेंट कह सकते हैं। तो यस, आपको ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए बिकॉज काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी इसके थ्रू। आप 5599 पे मुझे ड्राइव लिखिए और भेज दीजिए। साथ में ऑफकोर्स एक पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे हुई है शर्ली सेठे के साथ, तो वो भी आप अनफिल्टर्ड तरीके से सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बॉलीवुड का एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है, स्ट्रगल शेयर किया है, और कैसे मुकाम पर बींग एज एन आउटसाइडर वो आज जिस भी जगह है कैसे पहुंची है। सो यस, ऑफकोर्स ये भी डेफिनेटली काफ़ी इंस्पायर करेगा आपको, तो आपको इसे भी सुनना चाहिए। जस्ट फाइंड आउट ऑन आवर रोवा ऐप, या फिर आप स्पॉटिफाई पे भी सर्च कर सकते हैं, अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे भी सर्च करिए, काफ़ी अलग कंटेंट भी आपको मिलेगा वहाँ पे। एंड यस, बियॉन्ड द डेप्थ, सक्सेस को आप कैसे तराशते हैं, कैसे तोलते हैं, समाज कैसे उसको निखरता, तो ये भी पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। 5599 पे टेक्स्ट भेजिए मुझे BF, या फिर डेफिनेटली रोआ पे ये भी आपको मिल जाएगा। बट यस, फटाफट से आपको मैं फिर से बता देता हूँ रिगार्डिंग दिवाली फेस्टिवल्स आने वाला है, तो उसके लिए हमने बहुत बढ़िया तरीके से कंपटीशन आपके लिए सजाया है। पहला तो आप मुझे फॉर्च्यून लिखें और स्पेस लिख के, स्पेस लिखना नहीं है, फॉर्च्यून के बाद स्पेस एंड देन योर नेम, और मुझे 5599 पे भेज दीजिए अब भी, ताकि $1,000 कैश जीतने के मुकाम पे आप पहुंच जाएं, और वहां पे आपका ड्रॉ में बस वेट करना है अनटिल 30th अक्टूबर तक ये कॉम्पिटिशन चलने वाला है। एक्चुअली ड्रॉ विल हैपन ऑन 30th अक्टूबर, तो तब तक आपको बस लगे रहना है। और दूसरा मुझे IH लिख दीजिए, ताकि आप 5599 पे भेज के इसमें भी आप पार्ट ले सके, ताकि $1,000 का फ्यूल वाउचर आपको मिल सके बाय indelibleHomes.co.nz। और जो पहला वाला है वो फॉर्च्यून फ्यूल्स, फॉर्च्यून विथ होल ग्रेन्स, असेंशियल विटामिन, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी वेन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून। बट यस, टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई, आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।

0: Get fast track security, extra baggage, and priority check-in. Once you're there, enjoy even more time to relax with Resort Check-In. Complete your flight check-in from various Fiji resorts with your luggage transported securely to the airport. Travel in style with one of the world's top 10 airlines. Visit fijiairways.com.
1: Time check. Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00 00 10.
2: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Good afternoon, I'm Bridget Hastie with the latest at 3. Calls are growing for political action on plans to detect chronic kidney disease earlier. Kidney Health New Zealand spokesperson Maddie Kay.
4: Health New Zealand said in March that a national plan was being developed. It's October now. Where is the plan? What will it cost? And when is it going to be implemented?
3: Some serious crashes are causing delays around the country today. A serious crash has closed State Highway 99 in Southland this afternoon. One person is in a critical condition following a single vehicle crash near Polaris Bridge. And State Highway 6 is now open but under stop-go traffic management at the site in Marlborough. And a person has died at the scene of a serious crash involving a motorbike in Tauranga this morning. The Greens are taking a safety-first approach to level crossings on Auckland's Western train line. The party has promised to fund replacements concerned by a number of near misses. Co-leader Chloe Swarbrick.
5: With the removal of these level crossings, we can double the capacity of our train network along this line, in turn unlocking the amazing potential of the City Rail Link.
3: New Zealand's most decorated Olympian, Dame Lisa Carrington, is celebrating the successful arrival of her baby girl with her husband, Michael Buck. She is the couple's first child. To sport, Formula One's governing body has promised a full investigation into a software bug that causes chaos and forced the start of the Bahrain Grand Prix in Malaysia to be aborted. Motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty. And a rare chance for the All Whites to test themselves against top 20 opposition. The All Whites play the 17th-ranked Japan in the final of football's Kieran Cup at 11:30 tonight.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
6: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.6 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 8 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम आज का ऑलमोस्ट फाइन, गुड वेदर. सनसेट आज का 7:29 पर.
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड
7: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं
2: है.
1: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
6: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेकर 4 तक मेरा और आपका साथ रहेगा. 4 के बाद यहाँ पे मेरा साथ हो जाएगा रुजबे के साथ इन द ड्राइव शो. सो कैसे है आप और आपका वीकेंड कैसा क्या था? इट वॉज क्वाइट मिक्सड काइंड ऑफ वेदर, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक वेदर था. दिवाली पे जो हमें मिले, थैंक यू सो मच. एंड दिवाली वॉज अमेजिंग, जो कि मैं नकाऊ में थी. काफ़ी लोगों से वहाँ पर मुलाकात हुई थी. एंड इसके फ़ोटोज़ अगर आपको चेक करनी है तो हम के पेज पे जाके एक्चुअली में आप चेक कर सकते हैं. सो आपने वीकेंड पे क्या किया? कुछ बिंज वॉच किया? कहीं पे गए घूमने के लिए? यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. आने वाले दिनों में लॉन्ग वीकेंड भी आने वाला है एंड देन बहुत ही जल्दी ये फेस्टिव सीज़न जो है ये शुरू हो के इसकी छुट्टियाँ भी शुरू हो जाएंगी. मुझे लगता है कि ये ना लास्ट 3 बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं किसी भी साल के, क्योंकि हमारे लिए फेस्टिव टाइम भी होता है, बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं. एंड ऑल्सो बिकॉज काफ़ी लोगों को छुट्टी पे जाना होता है तो उससे पहले बहुत सारा काम भी निपटाना होता है. सो हैव यू प्लान योर हॉलीडेज येट? अगर नहीं तो स्टे ट्यून, आप ये हॉलीडेज़ हमारे साथ भी प्लान कर सकते हैं.

0: तीन बज के 9 मिनट हो चुके हैं और मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपने कुछ ओवर द वीकेंड देखा है, कुछ बिंज वॉच किया है या फिर कहीं पे गए हैं, आप शेयर कर सकते हैं। निमी का मैसेज आया है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने डब्बा कार्टल सीरीज़ पूरी देखी है एंड एब्सोल्युटली लव्ड इट। व्हाट अ फैंटास्टिक ड्रामा, सो ग्रिपिंग एंड एंटरटेनिंग फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। आई ऑल्सो लव सीइंग इंडियन वेमेन बींग पोर्ट्रेड एज स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट एंड इंडिपेंडेंट करेक्टर्स। Indian dramas are getting better and better. Well, thanks to OTT, they're getting better and better. You know, Indian dramas के ऊपर actually में एक research भी है. So, इस research के बारे में थोड़ी देर में आपके साथ मैं share करूँगी ज़रूर. But yeah, talking about the Dabba Kartal is actually very nice series. अगर आपने नहीं देखी, आप भी देख सकते हैं. And शबाना आज़मी है इसमें. So, this is actually crime, fictional crime drama series, हम इसको कह सकते हैं. शिबानी अख्तर जो है, इन्होंने इसको लिखा है. सो इसमें क्या है कि दे वर्क ऑन अ कंसेप्ट जहाँ पे मिडिल क्लास वुमेन जो है एक हाउसिंग सोसाइटी में है, एंड ये एक ट्रेडिशनल लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम, जिसे डब्बा सिस्टम हम कहते हैं, डब्बा सिस्टम, उसके थ्रू एक अंडरग्राउंड ड्रग रिंग चलाने की कोशिश करती हैं. एंड बहुत सारे यू नो अप्स एंड डाउन्स बीच में होते हैं, रिस्क वगैरह वो सारी चीज़ें. बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी सीरीज़ है. तो कभी मौका मिले तो आप भी डब्बा कार्टल ज़रूर देख सकते हैं. कॉफी ब्रेक विद सैंडी,
1: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए
3: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है,
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
7: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर. गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें. जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं, तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे. कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड. डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz. दैट्स commonwealthvault.co.nz.
8: Power into summer with Powerball. There's 100 extra prizes of $20,000 that must be won. Get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn 17th October. T's and C's apply.
9: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat and this seat. And that's it.
10: James, this is a radio ad.
9: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more. So let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
11: Thinking of switching lanes? How about insurers? Switching to Tower is easy. Plus, get $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
12: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
13: मैं बेटे के लिए justice चाहिए.
14: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
12: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
15: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा?
12: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
15: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa

0: शो विद सैंडी एंड रिस्पे.
1: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा फाड़ देंगे.
2: गुड आफ्टरनून, ड्राइव शो में स्वागत है आपका. ड्राइव शो स्टार्टेड अर्ली टुडे.
3: गुड आफ्टरनून रिस्पे, कैसे हो तुम?
2: गुड, हाउ आर यू सैंडी?
3: क्या हाल चाल? आई एम गुड.
2: हैप्पी मंडे.
3: ओ या, हैप्पी मंडे. वेल, वीकेंड कैसा था इसके बारे में और भी बात करेंगे. सो क्या हुआ ना कि मेरे पास मैसेज आया निमी का. उसने बोला कि उसने डब्बा काटल देखी रिसेंटली और उसको बहुत अच्छी लगी. वो शबाना आजमी वाली जो सीरीज है,
2: राइट? एंड
3: बहुत बढ़िया सीरीज है. और उसने लिखा कि आई ऑल्सो लव सीइंग इंडियन वुमेन बींग पोर्ट्रेड एज स्ट्रांग, इंटेलिजेंट एंड इंडिपेंडेंट करेक्टर. इंडियन ड्रामाज आर गेटिंग बेटर एंड बेटर. सो एक्चुअली मैंने एक रील देखी थी, देन आई डिड माई रिसर्च, बिकॉज आजकल AI का टाइम है, यू नेवर नो क्या सच है क्या झूठ है. सो इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्ट जेंसन एंड एमिली ऑस्टर.
2: अच्छा.
3: इन्होंने रूरल इंडिया में जो केबल टीवी का जो एक्सपेंशन हुआ उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 2001 से, जब से केबल टीवी आना शुरू हुआ था विलेजेस में.
2: जी, 2001.
3: अच्छा. तो वो क्या करते थे कि हर एक घर पे जाके वो कुछ सवाल पूछते थे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, रीमैरिज के ऊपर, टैबू जो क्वेश्चंस हुआ करते थे उसके बारे में सवाल पूछते थे. एंड सेम सवाल एवरी ईयर उन्होंने पूछे, ये जो इकोनॉमिस्ट थे. और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये अभी स्टडी जो है ये रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है. एवरी ईयर. और केबल टीवी जब आया उसके बाद एकता कपूर के सीरियल्स का उसमें था कि काफ़ी लोग वो देखते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये सब चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए एकता कपूर का नाम वहाँ पे हाईलाइट हुआ.
2: राइट.
3: ओवर द ईयर्स लोगों की थिंकिंग में चेंज आ गया.
2: हाँ, तो टीवी बहुत इम्पैक्ट करता है.
3: बहुत इम्पैक्ट करता है. लाइक वी समटाइम्स जोक अबाउट एकता कपूर सीरियल्स एज वेल, लाइक यू नो कि लाइक क्योंकि सास भी कभी बहू में ये सब चीज़ें, बट देन बहुत ही सटल वे से उस चीज़ें में, उस जगह पे उनके सीरियल्स में री मैरिज, देन बेटी का बर्थ को सेलिब्रेट करना काफी सीरियल्स में ऐसा भी दिखाया गया.
2: लाइक फॉर एग्जांपल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कोई पकड़ लो, उसमें जो मेन लीड कैरेक्टर है, और एकता कपूर के मोस्ट सीरियल्स आप देखो मेन लीड कैरेक्टर ऑलवेज फीमेल, विमेन के ऊपर ही ज्यादा अटेंशन होता था. विमेन इज द मेन डिसीजन मेकर, विमेन के हाथों में सब कुछ है, हमेशा वही होता था मैसेजिंग.
3: दिस इज एक्चुअली मेरे को पढ़ के लगा कि वाओ, कि केबल टीवी ने विलेजेस में लोगों की थिंकिंग चेंज की है. एंड दे डिड द सेम क्वेश्चंस, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस एवरी ईयर दे डिड 180 विलेजेस में.
2: आई थिंक पहले साल में तो बात भी नहीं की होगी काफी लोगों ने,
3: क्योंकि टॉपिक्स
2: स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं बात एंटरटेन ही नहीं करते ना, स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं बात करते. लाइक फॉर एग्जांपल यहां पे आप कितनी बार, अगर आपके घर पे कोई नॉक करता है, कितनी बार आप एक्चुअली में एंटरटेन करते हो उन्हें?
3: नहीं करती.
2: सो यू नो दैट जस्ट शोज कि वी आर एज अ कम्युनिटी वी आर वेरी हेजिटेंट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स.
3: हाँ, लेकिन यहाँ पे बात थोड़ा डिफरेंट भी है ना, मतलब
2: यहाँ पे ज्यादा सेफ है.
3: यहाँ पे सेफ तो है, लेकिन यहाँ पे इट्स आई नो व्हाट यू सेइंग, लेकिन काफी लोग डरते भी है काफी चीजों को लेके भी, बिकॉज इंसिडेंट भी होते हैं नॉकिंग करके, कई बार कोई आ जाता है तो मतलब यू नो रॉबरी वाले इंसिडेंट्स भी हुए हैं यहाँ पे.
2: सो यहाँ पे मैंने वो नोट किया है कि रॉबरीज ये सब जो होती है ये खाली घरों में होती है, भरे हुए घर में बहुत रेयरली ऐसे, मतलब अभी हाँ भैया तो चेंज हो गया सिनेरियो,
3: काफी
2: तो,
3: चीजें चेंज हुई है तो काफी डर भी होता है कई बार, पुलिस वाले ही कहते हैं.
2: बट इन जनरल इट्स नॉट यहाँ का थिंग.
3: या इट्स नॉट यहाँ,
2: क्योंकि इंडिया में हमने कितना एंटरटेन किया है लोगों को दरवाजे पे.
3: इंडिया में एक्चुअली में हमारे घर में बहुत हुआ है एंटरटेन, मतलब हम करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो आते थे दरवाजे में कई बार आपको बहुत अच्छी डील्स कई बार मिल जाती थी या कुछ ऐसे स्टफ लाइक दैट, यू नो यू यूज्ड टू गेट एक्चुअली वेरी गुड डील्स, वो सब था. तो अभी वो फोन का भी टाइम ज्यादा हो गया है ना, अभी सीधा फोन ही आता है
2: और फोन पे भी एंटरटेन करते हैं ना काफी बार, क्योंकि स्कैम्स होते हैं वहां पे,
3: भी स्कैम होते हैं. टाइम ही इतना खतरनाक हो चुका है ना कि ट्रस्ट फैक्टर मेरे को लगता है लोगों के अंदर थोड़ा वो हेजिडेंट हो चुके हैं कि हाउ टू ट्रस्ट अ पर्सन.
2: दैट्स राइट.
3: वो एक्चुअली में ऐसा टाइम आ चुका है. बट या लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ओवर द इयर्स केबल टीवी ने, एकता कपूर के सीरियल्स ने लोगों की थिंकिंग चेंज की है यार, वो भी विलेजेस में. सो मुझे लगता है कि ये बहुत सही बात है.
2: या Yeah, and that is what TV has the power, na?
3: Yeah.
2: And after TV, log matlab actually main now if you think about it, YouTube pe restrictions ki kyun baat ho rahi thi? Because usually these things अफेक्ट पीपल, इंस्पायर पीपल और मैनिपुलेट पीपल और वॉट एवर, यू नो, जो भी हो सकता है, जो भी वर्ड आपको यूज करना है जिस हिस्से से आप. तो जब भी यूट्यूब पे खुली छूट मिल जाती है लोगों को कोई भी कंटेंट क्रिएट करके पब्लिश करने की, तो सडनली आप एक कम्युनिटी को ओपन कर रहे हो फॉर लॉट ऑफ रिस्क. क्योंकि अभी आप कम्युनिटी को ओपन कर रहे हो टू गेट इन्फ्लुएंस्ड इन अ डायरेक्शन व्हिच प्रोबेबली
3: इज नॉट द राइट,
2: और द गवर्नमेंट फील्स इज नॉट द राइट.
3: या 100%. सो ओवर द टाइम वो जब इन्फ्लुएंस हो रहे थे तो मे बी एक इनोसेंस वाली वो फेज था मे बी, बट देन ओवर द टाइम चीजें अगर चेंज हुई है कि नहीं हुई नहीं पता है हमें, बट या इट कैन गो आइदर वे.
2: या बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ मैं लाऊं अपना ए गेम. ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: 328 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो दिवाली आने वाली है और ऐसे में आज सुबह ही हमने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए की है फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून की। अगर आपने मिस आउट किया है, फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून है क्या, यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली। $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस इस दिवाली आपके नाम हो सकते हैं। एंड इसके लिए आपको करना क्या है, डिफरेंट टाइमिंग्स में आपको मौका दिया जाएगा कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड कुछ वाउचर्स यहाँ पे जीतने के लिए। तो इस ड्रॉ में शामिल होने के लिए आपको करना क्या है, सुनते रहना है। जैसे ही फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के बारे में हम अनाउंस करेंगे, उस समय पर आपको यहाँ पर एंट्री भेजनी होगी 5599 पर। अगर आप हमें उस समय पर अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो आप रोवा के ज़रिए हमें सुन सकते हैं। आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इस कॉम्पिटिशन की रोवा की वेबसाइट पर जाके, हमारी हम की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, hum.rova.nz, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ज़रूर मिलेंगी। सो मेक श्योर कि आपको पता है कि जब भी आप हमें यहाँ पे मैसेज करते हैं 5599 पर, तो उस समय पर स्टैंडर्ड करियर रेट्स डू अप्लाई।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूँ गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
2: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800 564424।
3: What could I be? A teacher? A scientist? A builder? But first I need a chance. A chance to feel safe, to learn, to believe in myself. That's why Barnardo's is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because the returns last a lifetime.
4: 35 minutes and we've moved 3 kilometers.
5: Welcome to Peak Hour Commute, bhai.
4: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
5: Over 18, lived here for more than a year, and a resident for electoral purposes?
4: Yeah, that sounds like me.
5: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
4: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
6: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.

0: You're listening to Humplink, Bollywood's biggest hits. 3:30 baj chuke hai, 3:32 to be precise, and on the 5th of October today.
1: Yes, आज 5th अक्टूबर है रुजबे एंड आज मैंने थोड़ी देर में यहाँ पे बताया कि आपको मौका मिलने वाला है दिवाली के ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स जो हमने शुरू कर दिए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. बट बिफोर दैट इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है. सो एक वेप शॉप है जिसे फाइन हुआ है $35,000 का बिकॉज अंडर कवर गए थे वहाँ पे टू चेक एंड उन माइनर्स को उन्होंने एक्चुअली में बेचा.
0: ओह माय गॉड.
1: Miners were able to enter its store 10 times.
0: 10 times?
1: 10 times. On 6 of those occasions, the young people were able to actually purchase vapes.
0: Oh my God, that's bad, yeah.
1: Yeah. So, $35,000 ka fine hua hai. Jo prosecution hai was brought by Health New Zealand and Ministry of Health. So, reportedly, the pehli prosecution jo thi of a specialist vape retailer for both selling to under 18 and failing to prevent young people from entering the premises as well.
0: But prevent, how can you prevent someone from entering the premise? Matlab, kya aisa kar sakte hai? Ke aap, matlab, wo mereko samajh mein nahi aa raha hai. Matlab, aisa kuch hota hai karne ka? Ki kaise bol sakte ki under 16 not? Haan, matlab, wo ek sign hona chahiye ki 18 over hona chahiye wo wala.
1: Yeah.
0: बट अगर कोई आ जाता है तो आ जाएगा मतलब
1: उनको बाहर कैसे भेजना है.
0: हाँ. या सैंडी डू यू गेट आस्क्ड फॉर आईडी स्टिल?
1: डिपेंड
0: व्हेन यू गो आउट.
1: हाँ कहाँ पे हो
0: कहाँ पे आपको पूछते हैं आईडी के लिए?
1: मेरे को लगता है कि जब आप अल्कोहल लेते हो तो वहाँ
0: तो आपको पूछते हैं. अभी भी पूछते हैं आपको?
1: बहुत टाइम हो गया मेरे को वैसे पर्सनली जाके ऐसा खरीदे.
0: राइट.
1: या बट अल्कोहल लेते समय मेरे को लगता है स्टैंडर्ड ही होता है.
0: नॉट ऑलवेज
1: बट कई बार होता है ना अगर उनके आसपास खड़े होते हैं तो दे डू आस्क.
0: उनके आसपास खड़े होते मतलब
1: उनका सुपीरियर कोई खड़ा होगा या फिर उनका सीनियर खड़ा होगा तो उनको ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है ना. इट्स अ प्रोटोकॉल.
0: तो रूल तो ये है कि अगर इफ यू लुक अंडर 25 और 30 आई थिंक अभी मेरे को रिसेंटली किसी ने बोला डू यू आर यू ओवर 30 ऐसा कुछ पूछा उसने. तो मैंने
1: क्या बात है ये मैंने पहली बार सुना है.
0: पता नहीं मतलब
1: 18 का ही होता है वैसे तो बट आई डोंट नो.
0: नहीं सो इफ यू लुक अंडर मेरे को ये जो पहला रूल था इफ यू लुक अंडर 25 दे कैन आस्क यू फॉर आईडी.
1: ओह वाओ.
0: तो मुझे हमेशा आईडी के लिए पूछते हैं.
1: हां
0: तो मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ मेरे को जब आईडी के लिए पूछते
1: हैं. भाई सही है.
0: मैं बोला मैंने उसको बोला भी रिसेंटली मैं गया था परचेज करने के लिए तो मैंने बोला कि या यू डिडंट सी मी फ्रॉम बिहाइंड इफ यू हैड सीन मी फ्रॉम बिहाइंड यू प्रोबब्ली वुडंट हैव आस्क्ड फॉर आईडी.
1: भाई ले जाओ.
0: बट इट्स ओके.
1: नहीं इट्स ओके. बट या एनीवेज वैसे तुम्हें पता हूँ सिंस 2023 and 2024 इन्फोर्समेंट एक्टिविटी जो है ये काफ़ी इंक्रीज हुई है विद मोर देन 600 इन्फ्रिंजमेंट नोटिसेस फॉर स्मोक फ्री लॉ का जिन्होंने ब्रीच किया है. सो या 600 इन्फ्रिंजमेंट नोटिसेस गए हैं.
0: या
1: Anyway, how was your weekend, Ruzbe?
0: My weekend. My weekend was busy, yaar. Hectic, Sandy.
1: Quite packed, na?
0: We log Diwali MC kiya pehla Diwali hua shayad se New Zealand ka.
1: Yeah.
0: This season ka. And it was quite a nice turnout. It was
1: very nice
0: amazing.
1: Turnout. Very good venue, I will say. Bahut
0: and what
1: Diwali
0: a beautiful
1: thi.
0: Day also, yaar. Yes. I think Saturday was much better than Sunday.
1: Yeah, 100%.
0: If I compare now.
1: Yeah.
0: Mujhe pehle laga tha Sunday is going to be better than Saturday.
1: But Saturday was better.
0: Saturday was way better. Sunday was I don't know what yeah मतलब yeah इस बार तो संडे को भी हम लोगों ने साथ में काम किया सैंडी.
1: हाँ वो भी साथ में काम किया.
0: मतलब कुछ ज़्यादा ही सहन किया है एक दूसरे को इस हफ्ते.
1: Too much. एक तो बीच में वीकेंड की हमें ब्रेक मिल जाती है इस बार वो नहीं मिली. बट एनीवे गाइस आप भी शेयर कीजिए अगर आप कहीं पे गए आपने क्या किया. अगर आप दिवाली पे गए थे मेनकाओ वाली तो आप भी बताइए यहाँ पे अगर आप हमने मिले नहीं मिले या फिर वहाँ पे हमारी अनाउंसमेंट्स के बाद हमें फॉलो किया तो लेट अस नो.

0: हमारे अपने केतन कुमावत की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही बढ़िया सा गाना सफायर 2.0। आई वुड कॉल इट सफायर ऑकलैंड वर्जन।
1: एक्चुअली में ये 2.0 पता नहीं उसने क्यों नाम दिया। दिस इज या सफायर ऑकलैंड ऑकलैंड वर्जन। क्यों बोल रहे
0: हो आप उसके काम में खामी क्यों निकाल रहे हो सैंडी?
1: खामी नहीं निकाल रही हूं, तुमने खामी नहीं निकाला, मैंने बस सेकंड किया उसको।
0: अच्छा सेकंड किया। ऑलराइट एनीवे
1: तुम्हें हां
0: हमारा हक बनता है।
1: नेटफ्लिक्स पे 27 अक्टूबर को आने वाली है द वन अबाउट मैथ्यू पेरी चैंडलर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री।
0: वाओ
1: या सो दिस डॉक्यूमेंट्री विल बी देयर। मेरे को लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डॉक्यूमेंट्री रहने वाली है काफी लोगों के लिए।
0: मैथ्यू पेरी के बारे में
1: मैथ्यू पेरी चैंडलर फ्रेंड्स के चैंडलर के बारे में हम बात कर रहे हैं।
0: एंड अगर किसी ने मतलब फ्रेंड्स नहीं फॉलो किया या किया भी होगा तो चैंडलर का जो कैरेक्टर था इट वाज अ वेरी सार्केस्टिक कैरेक्टर।
1: या और किसी को नहीं पता चलता था कि ये जॉब क्या करता है थ्रू आउट।
0: नो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सार्केज्म उसने इतना यूज किया था वो सारे चीज में। हाँ सार्केज्म इतना यूज किया था उसने वो सारी चीज में वो जमाने में 90s में जहाँ पे इतना कॉमन नहीं था। अभी आज के डेट में बहुत कॉमन है सार्केज्म लेकिन हम बहुत रेगुलरली यूज करते हैं बट फॉर दैट टाइम एंड दैट्स व्हाई फ्रेंड्स इवन टुडे इज सो रेलेवेंट।
1: आज भी ना उसका कोई भी एपिसोड निकाल के देखोगे ना तो आपको हंसी आती है। यू एंजॉय इट्स लाइक
0: दिस इज फॉर अस दिस इज फॉर अस मिलेनियल्स बट आई वांट टू अंडरस्टैंड एनी जेनजीज और यू नो उसके बाद के जेन जो जेन अल्फा। अगर आप हमें अभी सुन रहे हैं डू यू नो अबाउट फ्रेंड्स?
1: या
0: हैव यू वॉच फ्रेंड्स? डू यू नो अबाउट इट? क्या आपके लिए भी वो इतना ही वैल्यूएबल है जितना हमारे लिए है? मतलब यू नो जितना हम उसको
1: जैसे
0: देखते हैं
1: लाइक मिलेनियल जैसे उसको देखते हैं या फिर उससे पहले की जनरेशन।
0: अभी जब नेटफ्लिक्स पे नहीं था फ्रेंड्स तो बहुत फोमो हो गया था मतलब बहुत
1: अभी वापस आ चुका है
0: ऐसा लग रहा था कि अरे यार अभी डिनर के टाइम पे क्या ही देखें।
1: हाँ वो फ्रेंड्स इज योर डिनर पार्टनर
0: यू नो और द ब्यूटी ऑफ फ्रेंड्स इज एनी एपिसोड डजंट मैटर
1: या
0: देन यू कैन जस्ट कीप गोइंग ऑन फ्रॉम देयर
1: ईच एंड एवरी कैरेक्टर।
0: सो जेन ज़ीज इन द हाउस गिव अस अ कॉल 0800-004-866 नंबर है यहाँ पे कॉल करने का 0800-004-866। अगर आपने इसके पहले कभी कॉल नहीं किया हमें दिस इज योर चांस गिव अस अ कॉल
1: कॉल करो और बताओ हमें यहाँ पे
0: इंग्लिश भी आती है हमें हम इंग्लिश में भी बात करते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो
1: ना जैसे भी आप हिंदी बात करने में या
0: ऐसा होता है काफी बार ना
1: हाँ कंफर्टेबल नहीं होते एक लैंग्वेज में लाइक समझ में आती है लैंग्वेज लेकिन बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते
0: हम इंग्लिश में बात कर लेंगे कोई बात नहीं
1: तो यस आप यहाँ पे जरूर इसके बारे में बता सकते हैं। एंड ऑल्सो आप बताइएगा कि अगर आप आजकल कुछ बिंज कर रहे हैं
0: अरे यार मैंने चुंबक देखा सैंडी
1: खत्म हो गया
0: तो मैं तो आई विल बी ऑनेस्ट सो चुंबक स्टार्टिंग इज वेरी स्लो एंड यू फील लाइक कि अरे यार यू नो वेयर इज दिस गोइंग दिस टू मच
1: ओके
0: बट hang in there for 3-4 episodes and it grows on you like 16th episode pe hum pahunche and literally Nushin initially was like you know she was very well uske baad wo uske dialogues bolne lag gayi so it really grows on you
1: okay
0: it's a nice watch it's a fun watch
1: तो आपने भी देखा है आप भी यहाँ पे जरूर बता सकते हैं but right now आप कुछ और अगर binge watch कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे बताइए। अगर आप friends देखते हैं एंड उसके बारे में भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। थोड़ी देर में एक सवाल भी पूछा जाएगा एंड रिमेंबर उसमे आज 5 बजे और 4 बजे के बाद दोनों आवर्स में हम यहाँ पे कंपटीशन करने वाले हैं दिवाली के मौके पर $5,000 वर्थ ऑफ वाउचर जीतने का मौका है।
0: दिवाली इज बैक यस दिवाली
1: इज हियर
0: और दिवाली के टाइम पे हमारे लिसनर्स को मौका मिलता है यहाँ पे ढेर सारे प्राइजेस जीतने का एंड दिस टाइम यू कैन विन अप टू $5,000
1: $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस
0: वाओ सो
1: वाउचर्स आई कैन से
0: वाउचर्स या सो ये बार हम आपको वाउचर्स दे रहे तो ताकि आप
1: बड़ा बड़ा इनाम दे रहे आपको गाइस
0: So yeah, so you have to participate. More details coming to you in a while.
1: आपको जैसे ऐसा hint देती हूँ. Imagine $1,000 का petrol भरा के आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं.
0: $1,000 का petrol भरा के
1: कहाँ कहाँ जा सकते हैं.
0: कहाँ कहाँ जा सकते हैं.
1: Yeah, ऐसे prizes हैं आपके लिए.
0: Nice. तो $1,000 का petrol आपके नाम हो सकता है. और भी है ना
1: और भी बहुत.
0: 4 बजे के बाद और details आपके लिए. सुनते रहिए हम.
2: To you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
3: night. Wanna natural night. Do you feel alright? Wanna natural night.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 17 डिग्री हो चुका है और आज का ओवरनाइट 8 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम आज का ऑलमोस्ट फाइन, सनसेट आज का 7:29 पर।
2: The Drive Show with Sandy and Ruzbain, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Ruzbain.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
1: 4:03 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है। यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। अभी से लेके 7 तक आपके लिए ड्राइव शो रहता है। थोड़ी देर में रुजबे यहाँ पे शामिल हो जाएगा। सो कैसे हैं आप और आपका डे कैसा जा रहा है आज का? वेल, आपका डे तो और भी अच्छा और बहुत ही बिजी होने वाला है, बिकॉज बहुत ही जल्दी आपको मौका मिलने वाला है फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करने के लिए। वेल, फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि दिवाली एक ऐसा ही फेस्टिवल है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की किस्मत जग जाती है एंड काफ़ियों के घर पे लक्ष्मी आती है एंड ऐसे में आपके घर में भी आ सकती है। सुनते रहेगा, इस कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ पे बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। बट फॉर नाउ आपको बता दूँ कि अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अगर आप घूमने फिरने के बारे में सोच रहे हैं, हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, तो हॉलीडेज़ को अगर आप अभी दिसंबर में नहीं लेना चाहते, सेव करना चाहते हैं, या फिर यू हैव इनफ हॉलीडेज टिल मार्च 2027, तो ये हॉलीडे आप हमारे साथ कर सकते हैं। बिकॉज मार्च 2027 जो कि ईस्टर वीकेंड है, उस समय पर मैं और रुजबे सन टूर्स के साथ हम जा रहे हैं बाली एंड बैंकॉक। ये दो जगह पर हम जाने वाले हैं, दो एपिक जगह पर हम जाने वाले हैं। सो टुक टुक राइड्स, बीच क्लब चिल्स, ड्रीम डेस्टिनेशंस है दोनों काफ़ी लोगों के लिए। सो बाली बैंकॉक गेटवे आप मेरे और रुजबे के साथ घूम सकते हैं सन टूर्स के साथ। सब कुछ प्लान्ड है, एक पैकेज बनाया है सन टूर्स ने, इंक्लूसिव पैकेज है, हैसल फ्री है। करना क्या आपको, बस बैग पैक करने हैं और साथ में चल पड़ना है। इसमें एयर टिकट्स रहेंगी इस पैकेज में, फ्रॉम ऑकलैंड टू बाली बैंकॉक वापस यहाँ की, एंड देन 5-स्टार अकोमोडेशन भी रहेगी, तीनों टाइम का खाना एंड जो एक्टिविटीज़ इन जगह पे फेमस है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़, सफारी है काफ़ी जगह पे एंड ढेर सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी है। सो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ भी साथ में इस पैकेज में है। सो फ्री क्या मतलब, इस पैकेज में है सारी की सारी एक्टिविटीज़। प्लस अभी दिवाली का टाइम है तो बहुत ही अच्छी डील दी है सन टूर्स ने। अगर आप ये पैकेज खरीदते हैं तो आपको फ्री साथ में मिलेगा 2 नाइट 3 डेज का क्रूज पैकेज ऑफ कार्निवल क्रूज, जो कि 1 साल के लिए वैलिड है एंड ट्रांसफरेबल भी है। यानी कि इस 2 नाइट 3 डे के क्रूज पैकेज में अगर आप नहीं जाना चाहते, किसी और को भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो बाय दिवाली अगर आप बुक करते हैं बाली एंड बैंकॉक का ये टूर हमारे साथ, तो आप ये साथ में तो आपको ऐसे ही फ्री में मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि एक्चुअली में काफ़ी अच्छी डील है। सो अगर आप ये जाना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर काफ़ी सवाल है कैसे होगा, पेमेंट्स के बारे में, वहाँ पे क्या क्या होने वाला है, ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए, तो दिस वीकेंड मैं और रुजबे चाय पे चर्चा करने वाले हैं सन टूर्स के साथ, क्योंकि हमारे अंदर भी काफ़ी सवाल है ना, तो हम तो सवाल पूछेंगे। तो आप भी हमारे साथ मिल लीजिए, आप भी सवाल पूछिए। सो अगर आपको चाय पे चर्चा हमारे साथ ज्वाइन करनी है दिस वीकेंड, आपको करना क्या है, आपको ट्रिप लिख के भेजना है 5599 पर। ट्रिप लिख के भेजिए 5599 पर। ऑटो रिप्लाई में आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिल कीजिए एंड बस आपका जो स्पॉट है हम यहाँ पे बुक कर लेंगे जहाँ पे, देन आपको लोकेशन हम भेजेंगे, टाइमिंग्स एंड लोकेशन कि आपको कहाँ पे पहुँचना है। सो वहाँ पे बैठेगा, जितने भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, बिकॉज उसके बाद अगर आपको लगे सही कि यार आपके सारे सवालों का जवाब आपको आपके हिसाब से मिल चुका है, देन बुक योर ट्रिप। सो जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी तब तक हम सवाल पूछेंगे। सो यू नो बेटर जस्ट कैच अप एंड देन टॉक अबाउट इट, सही लगे तो बुक कर लेना। सो ट्रिप अगर आप लिख के भेजते हैं 5599 पर, तो आपको ऑटो रिप्लाई में फॉर्म मिल जाएगा जो आपको फिल करना है ये चाय पे चर्चा के लिए, जहाँ पे आप ये सारी की सारी डिस्कशंस करेंगे।
4: mixing in the house.

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

4:10 हो चुके हैं एंड दिनेश आपका मैसेज आया है कि व्हेन कैन आई कम टू योर स्टूडियो। दिनेश बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको स्टूडियोज विजिट करने हैं, अगर आपको हम का ऑफिस विजिट करना है तो ये परफेक्ट टाइम रहता है दिसंबर में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि उस समय पर हम रेडियोथॉन यहाँ पे करते हैं। बहुत ही स्पेशल टाइम होता है, जो लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेडियोथॉन को लेके उनको पता है कि कितना स्पेशल वो टाइम रहता है एंड आई कांट वेट। मेरा भी फेवरेट टाइम रेडियो का एक्चुअली में ये रहता है, उस समय का रहता है। एंड यस दिनेश, बाकी जो आपने भेजा है उसके बारे में हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। बट यस, आपको एक और बात याद दिलाना चाहती हूँ गाइस, मैं अबाउट मेंटल हेल्थ बीइंग, मेंटल हेल्थ इज़ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ। सो जस्ट हम जैसे अपने बॉडी की केयर करते हैं, इट इज़ ओके टू सीक सपोर्ट फॉर आवर माइंड एज वेल। सो अगर आप ओवरवेल्म फील कर रहे हैं या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं टू मैनेज योर इमोशंस, यू डू नॉट हैव टू फेस इट अलोन। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री, कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोफेशनल इमोशनल सपोर्ट देती है फ्रॉम पीपल हु अंडरस्टैंड योर कल्चर। सो आप एशियन हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हैं और इसका कोई भी खर्चा नहीं है, इट्स फ्री नंबर है ये 0800-862-342, इट्स 0800-862-342। इफ़ यू और समवन यू नो इज़ इन इमीडिएट डेंजर, उस समय पर आपको हमेशा 111 पे कॉल करना है।

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepy head beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manikau and Pokekohe, where dreams begin.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces, first come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
5: At Bunnings, you'll find our aisles and shelves are packed full of rewards. That's because you can now earn Bunnings rewards in every aisle, whether you're just popping in or stocking up for a project. Earn 1 point for every $1 spent at Bunnings and get $5 to spend in-store for every 500 points earned. Download the Bunnings app, scan your Bunnings card and see your points stack. T's and C's and exclusions apply. Join Bunnings Rewards today. Bunnings
6: Warehouse. Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। Asian Family Services आपके culture को समझते हैं और professional, confidential और free emotional support देते हैं। Call Asian Helpline Free on 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
7: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
8: Busy day. Ah, looks like I'm on dinner tonight. With Woolworths Express Pickup, I can order what I need online and pick it up in under 60 minutes. Easy. That's my kind of Woolies.
9: T's and C's apply.
10: Are you ready to go home?
11: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
12: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
13: सुपर से ऊपर फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं और आज हमने आपके लिए फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ये कंपटीशन आज आपके लिए लॉन्च कर दिया है. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एज इन की दिवाली के मौके पे आपको चांस मिल रहा है. यहाँ पे यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस. सो ड्रॉ जो है ये 30th अक्टूबर को होने वाला है. राइट नाउ जो आपको चांस मिल रहा है ना यहाँ पे जीतने के लिए, मुझे लगता है कि दिवाली के टाइम पे दिस इज़ समथिंग जो काफ़ी लोग घर से बाहर निकलते हैं खरीदने के लिए. वो है घर के लिए कुछ डेकोरेशन, होम डेकोरेशन का कोई सामान या फिर फर्नीचर. काफ़ियों को होता है कि यार दिवाली आने वाली है तो घर के लिए अगर कुछ नया लेना है ना तो इसी टाइम पे खरीद लेते हैं, घर के लिए एक नई चीज ऐड हो जाएगी एंड देन अच्छा जो टाइम है ये भी है, तो यही आप यहाँ पे जी सकते हैं. यू कैन विन $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग. हैरिंगटन लिविंग की आप वेबसाइट पे जाइए एंड हैव अ लुक एट द फर्नीचर. क्या कमाल का फर्नीचर है यार, मैंने खुद जाके देखा, बहुत ही सही है. आई वुड लव टू बाय समथिंग $1,000 वर्थ वहाँ पे जाके अपने घर के लिए. अनफॉर्चुनेटली मैं इस ड्रॉ में शामिल नहीं हो सकती हूँ तो मुझे खरीदना पड़ेगा, लेकिन आप ये $1,000 का एकदम फ्री में यहाँ पे जीत सकते हैं. सो होम डेको या फर्नीचर का वाउचर ये आपके नाम हो सकता है, एक ही विनर होगा इसके लिए. हैरिंगटन लिविंग मैनकाउ स्प्रिंग सेल वैसे ऑन है, ब्यूटीफुल फर्नीचर है वहाँ पे, 60 months इंटरेस्ट फ्री में आपको मिल रहे हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस आपको हैरिंगटन लिविंग मैनकाउ की वेबसाइट पे मिलेगी. नाउ इस कॉम्पिटिशन में एंटर होने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग जीतना है आपको क्या करना है, वेरी सिंपल. HL हैरिंगटन लिविंग, HL H बोलो. सो HL स्पेस अपना नाम आपको लिख के भेजना है 5599 पर. नाउ आपके पास बहुत ही कम समय है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, सिर्फ 5 मिनट का टाइम है इसमें आपको इस कंपटीशन में एंटर करने के लिए. आपको करना क्या है, HL स्पेस अपना नाम लिख के भेज डालिए 5599 पर और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. यू कैन विन होम डेको या फर्नीचर वाउचर वर्थ $1,000. एंड अभी आप जाओगे ना कभी फर्नीचर खरीदने के लिए या फिर बाय करने के लिए, जब आप ब्राउजिंग करने में भी जाते हैं तो यू नो हाउ द प्राइसेस आर एंड वी आर गिविंग क्वाइट अ गुड अमाउंट यहाँ पे, जिसमें कोई दो चीज़ें भी आप ले सकते हैं या फिर कोई एक बहुत बड़ी चीज़ उसमें और एक्स्ट्रा डाल के भी आप ले सकते हैं. एंड जब तक आप इस कॉम्पिटिशन में एंटर कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो विजिट, अगर आप मैनकाउ में रहते हैं जस्ट विजिट द स्टोर एज वेल एंड हैव अ लुक अराउंड की बहुत ही अच्छा फर्नीचर एक्चुअली में उनका. सो $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग का जीतने के लिए आपको करना क्या है, HL स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर.
9: Bollywood's most wanted.
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
15: मैं लाऊं अपना A game.
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: थोड़ा माहौल बना दे.
3: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

0: 4:33 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। आज 5th अक्टूबर है और अगर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे एक आर्टिकल आया है हैंडरसन में, जो रेल साइड एव क्रॉसिंग है वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे ड्राइवर ओवरटुक जो ट्रैफिक क्यू अप था वहाँ पे एंड वेंट थ्रू द बैरियर्स जहाँ पे ट्रेन अप्रोच कर रही थी। सो क्या है कि जो जो ट्रेन आ रही थी वहाँ से जो बैरियर्स थे वो डाउन थे जहाँ पे आपको स्टॉप रहना पड़ता है, लेकिन ये गाड़ी वाले ने मतलब बाकी गाड़ियों से आगे निकल के वो बैरियर के साइड में से निकल के अपनी गाड़ी निकाली एंड बहुत ही रिस्की वे से, बिकॉज उधर ट्रेन भी साथ में ही आ रही थी। सो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही है। ट्रैक सेफ न्यूजीलैंड ने बोला है 4 पीपल हैव डाइड इन इंसिडेंट्स जहाँ पे लोअर्ड बैरियर आर्म्स जो है वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं इन द रिसेंट ईयर्स। सो इसे इनक्रेडिबली रेकलेस बिहेवियर बताया गया है। और ट्रेन कैन अपीयर एनी टाइम वेदर दे आर एक्सपेक्टेड और नॉट, दे ट्रेवल फास्टर देन दे अपीयर। सो कई बार यू नो रिलाइज होने में, स्टॉप होने में, आपको निकलने में उतना टाइम नहीं लगेगा। एनीवे बैरियर्स डाउन है तो मतलब कि यहाँ पे इवन यू नो कि बैरियर्स मतलब आधा घंटा पहले तो डाउन नहीं होते हैं। बैरियर्स तभी डाउन होते हैं जब ट्रेन अप्रोच कर रही होती है। तो वाई टेक अ रिस्क, मतलब हमें इतना इंतज़ार तो एनीवे नहीं करना पड़ता है यहाँ पे कि ट्रेन कब आएगी, कब निकलेगी और उसके बाद हम निकलें। सो इट डजंट टेक मच ऑफ टाइम एंड इट्स बेटर लेट देन नेवर आई विल से कहीं पे भी जाने के लिए। कीवी रेल, इन्होंने वॉर्न किया है कि दिस इज़ एक्चुअली नॉट गुड एंड पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, पेडेस्ट्रियंस के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस जो थे दे ट्राइड टू डू द क्रॉसिंग, हेडफोन उन्होंने लगाया था जब उनको पता नहीं चला एंड यू नो यहाँ पे इतने वार्निंग, वो सामने साइंस होते हैं, बैरियर्स डाउन होता है, साउंड होता है वहाँ पे कि ट्रेन आ रही है एंड ट्रेन के आने की नॉइस यहाँ पे इतनी नहीं होती है। सो मेक श्योर कि अगर बैरियर्स डाउन है तो चाहे आप पेडेस्ट्रियन है, चाहे आप गाड़ी में है, स्कूटी में है, साइकिल में है, कुछ भी है, आप रुके हुए हैं, डू नॉट ट्राई टू क्रॉस इट। सो या तो ये एक्चुअली में वार्निंग जो है अभी कीवी रेल ने भी दी है। और दिवाली के इस कॉम्पिटिशन में जो आपने पार्टिसिपेट किया फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में, थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इस आवर का जो कंपटीशन है उसकी एंट्रीज बंद होती है, लेकिन एक और कंपटीशन है जो नेक्स्ट आवर में आपके लिए होने वाला है जहाँ पे $1,000 वर्थ ऑफ एक ऐसा वाउचर जीतने का मौका आपको मिलने वाला है। यू नो ये जो स्टोर है ना, जिस स्टोर का ये वाउचर है, हिंट देती हूँ मैं आपको, ये जो स्टोर है वहाँ पे अपने घर के लिए हर किसी को काम पड़ा ही रहता है, कोई ना कोई आपके घर से इस स्टोर में जाता ही है घर का काम करने के लिए एंड दिवाली इज़ अ परफेक्ट टाइम खैर वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन साल में मेरे को लगता है कि बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं हमारे जिनके बहुत चक्कर लगते होंगे ये वाले स्टोर में। एनी आइडिया कौन सा स्टोर हो सकता है ये? सो बहुत काम की चीज़ें एक्चुअली वहाँ पर होती है और वहाँ का $1,000 वर्थ ऑफ वाउचर जीतने का मौका आपको मिलने वाला है, उस ड्रॉ में शामिल होने का मौका आपको मिलने वाला है नेक्स्ट आवर में। एंट्रीज यू नो इस कंपटीशन के लिए आप जितनी मर्जी भेज सकते हैं, आप 10-20 कितने भी एंट्रीज भेज सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। बट रिमेंबर 5599 पर जब भी आप मैसेज करते हैं स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स डू अप्लाई।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
1: हम accurate traffic.
3: Catch a Nania free installation.
4: Partly cloudy overnight with a low of 10. Dairy Flat Highway closed due to a serious crash between Postman Road and Horseshoe Bush Road. Diversions in place. On the northern, heavy traffic heading onto the Harbour Bridge by Oniwa Road. The southern, just slow heading north from Sylvia Park to Green Lane. Town to Manukau, 33 minutes to Drury, 51. On the southwestern, slow from Puhinui Road to the southern.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply.
5: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
6: A Kogan monitor is just like a monitor. Both monitors do very similar monitor things, but with slightly different little logos, cords and stands. One's a Kogan 34-inch curved ultra-wide monitor. The other monitor has a price you won't be able to stand. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith and Kogan.com. Clickin' awesome.
7: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off. Experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
8: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo, or avocado, 2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
10: मैं बेटे के लिए justice चाहिए.
11: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
9: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
12: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
9: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
12: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा.

0: 443 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड वैसे एक आर्टिकल है जो कि इस समय पर काफ़ी पेरेंट्स के लिए ऐप है बिकॉज स्कूल हॉलीडेज टाइम. सो ये आर्टिकल में एक पेरेंट ने ही अपनी सिचुएशन जो है ये बताई है कि एज अ पेरेंट स्कूल हॉलीडेज जो है वो ड्रेनिंग हो जाती है बिकॉज इट इज़ अ जगल बिटवीन टाइम एनर्जी एंड मनी. एक कॉन्स्टेंट जगल है जहाँ पे यू वर्क देन यू डू सम स्कूल हॉलीडे प्रोग्राम्स एज वेल एंड जिसकी वजह से कई बार आपको एनुअल लीव भी लेनी पड़ती है एंड काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करना जो है ये आपको पड़ता है. लेकिन एक्सपेक्टेशंस कई बार काम पे इतनी हाई होती है कि वो भूल जाते हैं कि आप पेरेंट भी हैं. आपका क्या टेक है इसके ऊपर? हाउ डू यू मैनेज, अगर आप पेरेंट हैं और आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, हाउ डू यू मैनेज स्कूल हॉलीडेज के टाइम पे? सो इज़ इट चीपर टू चूज़ अ हॉलीडे प्रोग्राम जहाँ पे आप बच्चों को वहाँ पे यू नो डाल सकें? इज़ इट चीपर दैट वे, या फिर डू यू प्रेफर हैविंग योर एनुअल लीव उस समय पर, या फिर अभी तो हाइब्रिड सिस्टम है एंड अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है हाइब्रिड सिस्टम तो वो मैटर करता है, तो आप हाइब्रिड सिस्टम थ्रू अपना जो काम है वो करते हैं. व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? हाउ डू यू जगल बिटवीन टाइम, वर्क, मनी, स्कूल हॉलीडेज? आपका कैसे ये जगल होता है अभी शेयर कीजिए यहाँ पे 0800 हम पर कॉल करके, या फिर मैसेज करके भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 5599 पर. अगर आपको कॉल नहीं करना है, डू यू फाइंड कि डू यू स्ट्रगल एज वेल जगलिंग करने में कि स्कूल हॉलीडेज के टाइम पे स्पेशली, नॉट एनी अदर डे, बिकॉज उस समय पर अगर आप बच्चों को कहीं पे छोड़ोगे भी उसका भी अलग से पेमेंट होता है एंड ऑफकोर्स यू हैव टू बी विद योर किड्स. सो बिटवीन यू टू पेरेंट्स के बीच में कैसे होता है तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. मेरे साथ है यहाँ पे, हाय.
1: हाय संडी.
0: हाय, क्या नाम है आपका?
1: रूथ बोल रही हूँ.
0: रूथ, हाँ. सो या रूथ, यू आर अ पेरेंट सो यू विल नो कि हाउ डू यू मैनेज दिस, जगल कैसे होता है ये?
1: अरे इस बार तो बहुत ही ज्यादा जगलिंग है बिकॉज ऑफिस का ऐसा सिचुएशन है कि यू हैव टू बी प्रेजेंट फॉर 3 days एंड जो 3 days प्रेजेंट होना है वही डेज में डे की सॉरी स्कूल हॉलीडे प्रोग्राम का रेट बहुत हाई होता है.
0: कितना होता है तकरीबन?
1: अगर 1 week का देखा जाए, अगर फुल वीक का 5 days को के लिए डालो तो अप टू 400-450 होता है जस्ट 1 week का.
0: ओके.
1: यस, और उसमें भी ऐसे कुछ होते हैं स्पेशल डेज. तो कुछ स्पेशल डेज जो होते हैं, इट इज पॉसिबल कि पर डे यू आर प्रोबली पेइंग अबाउट $100. सो हमें वो जो जगल करना पड़ा कि ओके ये 2 दिन हम भेजेंगे नहीं क्योंकि ये 2 दिन आर हाई रेट. तो उन 2 दिनों के लिए मैंने बोला ओके आई विल वर्क फ्रॉम होम एंड बाकी 3 दिन, 1 दिन आई टुक हिम टू वर्क, बाकी 2 दिन उसको आफ्टर केयर में रख के, सॉरी हॉलीडे प्रोग्राम में रख के आई वेंट टू वर्क. तो ऐसे कुछ करना पड़ा.
0: हाउ इज योर वर्क विद दिस बैलेंसिंग स्टफ की ओके अपने बच्चे को लेके आ सकते हो या फिर क्या हिसाब किताब?
1: वहाँ पर इट वॉज गुड, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था. दे वर वेरी कंसर्न इज यू ओके एंड देन सपोर्ट अच्छा था, ऐसा कोई
0: ऐसा कुछ नहीं है. सपोर्ट अच्छा है वर्क पे,
1: सपोर्ट अच्छा है वर्क में, अच्छा सपोर्ट है.
0: ओके ओके.
1: बट लाइक एज अ पेरेंट वी हैव टू रियली जगल एंड इट गेट्स एग्जॉस्टेड एंड आई वुड प्रेफर टू टेक एन एनुअल लीव, जो मैंने इस वीक क्लिक किया.
0: ओके, यू टुक एनुअल लीव. ओके,
1: या इट डिपेंड्स आई थिंक पेरेंट टू पेरेंट एंड कंपनी टू कंपनी,
0: कंपनी टू कंपनी में या वर्क कल्चर भी, उनकी कंपनी में वर्क कल्चर क्या है.
1: Yes, absolutely, absolutely.
0: Annual leave काफी लोग prefer करते हैं.
1: Prefer करते हैं, but I think it is also depending upon partners. Like कैसे हो जाता है कि एक partner समझो 2 दिन अगर घर से काम कर रहा है, वो 2 दिन बच्चों को देख लेंगे.
0: Yeah, yeah.
1: हाँ, and switch कर सकते हैं role.
0: You divide the days.
1: Yes. या डिवाइड एंड कॉन्कर भी कर सकते हैं, तो वैसा
0: डिवाइड एंड कॉन्कर सही है.
1: इन अ गुड वे,
0: इन अ गुड वे. या
1: या या या,
0: यस, गुड वन. थैंक यू सो मच रूथ, थैंक्स फॉर शेयरिंग.
1: यू टेक केयर, बाय
0: बाय. वेल आप भी मैसेज करके शेयर कर सकते हैं, जैसे रूथ ने बोला कि वो प्रेफर करती है, वैसे उसने ये हफ्ता तो उसने एनुअल लीव ही लेके रखी है, सो दिस इज़ हर वे ऑफ मैनेजिंग स्कूल हॉलीडेज़ का टाइम. तो आप भी कैसे करते हैं, आप भी यहाँ पे मैसेज करके भी शेयर कर सकते हैं. 5599 इज अ नंबर.
2: The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jaiku.
3: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
4: Preet ki lat mohe aisi lagi.

0: At about 20 past three, crews found a single-storey house to be well alight, but no reports anyone was inside at the time. They're now dampening down hotspots. National has confirmed its fiscal plan will be unveiled early next week. Finance Minister Nicola Willis says it will account for every promise made on the campaign trail, including wellbeing.
1: We will follow orthodox budget practice and increase funding for health in every single budget, not just the first three budgets.
0: The Greens will be feeling vindicated in Auckland, catching a near miss with a car and train on tape. The party was announcing plans to fund the replacement of level crossings on the Western Railway line when a vehicle dodged a barrier arm behind them. Co-leader Chloe Swarbrick says it's a case in point.
2: We will work with Auckland Council, who have already done so much of this mahi, especially at a local board level, to determine where the immediate priorities are.
0: And Dame Lisa Carrington, New Zealand's most successful Olympian, is celebrating the arrival of a baby daughter with her husband, Michael Buck. She is the couple's first child. To sport a big test for the All Whites in Tokyo in the final of football's Kirin Cup. They take on Asian powerhouse Japan from 11:30. Japan has a world ranking of 17. And Black Caps all-rounder Michael Bracewell will shift to a casual contract with New Zealand cricket for the upcoming season. He wants to pursue an opportunity in the Big Bash League. Left-handed batter Nick Kelly replaces Bracewell on the central contract list.
3: Sports News.
4: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari koi branch nahi hai.
4: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
6: Weather ka hal kafi kamal aaj ke din. Beautiful day, southeasterlies ka saath hai. Partly cloudy hai kuch jagahon pe, lekin mere ko lagta hai weekend se better weather aaj raha. Feels like 16 degrees right now, and overnight temperature is going to be as low as 8 degrees tonight. Kal bhi low rehne wala hai, as low as 8.
3: The Drive Show with Sandy and Ruzbay, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku. Power Drive at 5.
4: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Ruzbay.
7: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
6: 5:03 हुए हैं on the 5th of October. Good afternoon, स्वागत है आपका Drive Show में.
8: A very very good afternoon to you guys. कैसे हैं आप? And Ruzbay, how's it going so far? How's Monday going?
6: Monday is going full on as usual.
8: Monday is Mondaying.
6: Monday is Mondaying. Yes, that's right.
8: Yeah, Monday बड़ा busy होता है ना सबका. ऐसे काम बहुत ज़्यादा होता है.
6: Yeah, मेरे को लगता है कि क्योंकि फ्राइडे
8: ज्यादा लगता है उस
6: नहीं, क्योंकि फ्राइडे को हम थोड़ा स्लैक भी करते हैं ना. फ्राइडे को हम बोलते हैं कि अरे ये फ्राइडे है, चलो मंडे को कर लेंगे. तो इसलिए मंडे मेरे को लगता है थोड़ा सा और ज्यादा बिजी काफी बार. बट आज मुझे लगता है कि काफी काफी लोगों ने आज वो थोड़ा पार्टी वाले मूड में, आज मतलब
8: आज पार्टी
6: छुट्टी वाले मूड में.
8: ऐसा क्यों?
6: क्योंकि स्कूल हॉलीडेज है पहले तो.
8: ओह या, स्कूल हॉलीडेज है. और मैं लास्ट आवर में ही आर्टिकल पढ़ रही थी कि काफी पेरेंट्स जो है, और हमें रूथ का कॉल भी आया था यहाँ पे, जगल कर रहे हैं बिटवीन वर्क मनी एंड स्कूल हॉलीडेज ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज काफी लोग एनुअल लीव भी लेते हैं स्कूल हॉलीडे के टाइम पे. इट्स नॉट इजी टू मैनेज. एंड देन काफी लोग स्कूल हॉलीडे प्रोग्राम में भी अपने बच्चों को ज्वाइन करवाते हैं, विच इज अगेन कम्स विद अ कॉस्ट.
6: And it's very expensive, yeah, actually, school holiday programs.
8: Yeah, yeah, yeah. So, juggle करना पड़ता है काफी parents को ये time पे. मतलब school holiday तो होती है बच्चों के लिए holiday, लेकिन parents के लिए school holiday is like a headache.
6: Yeah. मेरे को कभी-कभार
8: ऐसा. And then you also have to join the activities with kids, ना, because it's school holiday.
6: मेरे को कभी-कभार लगता है कि ये जो यहाँ का जो system है ना, उसको थोड़ा change मांगता है. क्योंकि ये काय को ऐसा ना 10 weeks एंड फिर हॉलीडे, फिर 10 weeks और हॉलीडे होता है ना, ऐसा कुछ
8: को ऐसा शो नहीं है.
6: कुछ तो भी होता है ऐसा ही रफली ना, कि 2 week का हॉलीडे हो जाता है फिर उसके बाद. वो ऐसा नहीं होना चाहिए सिस्टम. हमारे यहाँ पे कैसा था,
8: एक ही बार गर्मी की छुट्टियाँ और बाद में ये
6: बीच में
8: दिसंबर
6: की छुट्टियाँ होती है और एक दिवाली की छुट्टी होती थी बीच में.
8: नहीं, छुट्टियाँ होती है काफी यार, तुम्हें हर एक फेस्टिवल की हमें छुट्टी होती है, लेकिन
6: That's
8: उस
6: right.
8: समय पर पेरेंट्स को भी छुट्टी होती है. That's another thing.
6: पब्लिक हॉलीडे काफी होती है.
8: पब्लिक हॉलीडे अगर हमारी है, जो बैंक हॉलीडेज को कहते हैं, तो वो पेरेंट्स की भी होती है. So
6: most
8: it's a different
6: times,
8: day.
6: Most times.
8: हाँ, अगर स्कूल में छुट्टी है तो इट्स लाइक छुट्टी उनकी भी.
6: हाँ नहीं डिपेंड करता है ना सैंडी, लाइक काफी लोग जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं वो उनको नहीं होती ना वैसे छुट्टियां, सो या इट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है. बट एनीवे आप बताइए आपका कैसे चल रहा है स्कूल हॉलीडेज यार, लाइक हाउ इज इट गोइंग.
8: अभी आप शेयर कीजिए एंड आज देसी नॉट सो देसी बिहेवियर का टॉपिक भी लेके आएंगे एंड थोड़ी देर में इसी आवर में आपको मौका मिलने वाला है पार्टिसिपेट करने के लिए फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में, जहां पे यू कैन विन, यू कैन बी इन द ड्रॉ टू विन $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 का वाउचर.
6: ओ वाओ, $1,000 का माइटर 10 का वाउचर मिल रहा है.
8: यस, माइटर 10 में जाके जो आप खरीदना चाहते हैं $1,000 में खरीद सकते हैं.
6: बहुत कुछ मिल सकता है,
8: बहुत कुछ मिल सकता है एक्चुअली में.
6: एंड अभी समर में आउटडोर वाली चीजें. ओहो हो हो.
8: और इसके बारे में और डिटेल्स हम शेयर करेंगे थोड़ी देर में.
6: बहुत बार तो मेरे को लग रहा है कि टूल्स लेने हैं, ये सारी चीजें लेने
8: हैं. घर का काम तो मेरे को लगता है कि कभी खत्म ही नहीं होता है.
6: नहीं होता, कभी नहीं होता खत्म.
8: मतलब और ऐसे स्टोर्स का वाउचर में क्या होता है कि नॉट जस्ट घर का काम, फर्नीचर का काम, एनीथिंग यू नीड, लाइक अपने घर पे काफी चीजें जो है वो आपको मिल सकती है वहां से. अभी मेरे को चाहिए यार, मेरे को किचन कैबिनेट के लिए चाहिए था सब. मेरे को चाहिए था कह रही है, बट एनीवे
6: कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सैंडी, प्लीज लेट मी रिमाइंड यू.
8: एनीवे गाइस स्टे ट्यून, इसी आवर में आपको चांस मिलने वाला है इस ड्रॉ में शामिल होने के लिए, तो सुनते रहिएगा. 1 2 3 4

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits, Drive Show, Power Drive at 5 जा रही है आपके लिए. And time आ गया है हम खर्चों की बात करें अभी.
1: खर्चा करने का जब समय आ रहा है तो न्यूज है रुजबे, कीवी शॉपर्स आर पुलिंग बैक ऑन देयर स्पेंडिंग एंड देयर थ्री बिग रीजंस. पेट्रोल प्राइसेस आर अप,
0: इंटरेस्ट रेट्स बहुत अप है यार, $3.50 पहुंच गया है अभी,
1: काफी ज्यादा हो गया है. इंटरेस्ट रेट्स आर स्टिल पुटिंग प्रेशर काफी बजट्स के ऊपर एंड वेदर हैजंट एग्जैक्टली बीन हेल्पिंग बिजनेसेस आइदर.
0: Yeah, it's a tough time, na?
1: It is tough time. So, latest
0: plus
1: spending
0: there's elections
1: data.
0: Happening.
1: Plus, elections are happening.
0: Coffee uncertainties we are going through.
1: The latest spending data suggests that consumers are becoming more cautious about opening their wallet. So, non-essential spending, jo hai, वो अभी कम हो चुकी है काफ़ी लोगों के घर पे. मतलब पहले होता था ना कि चलो यार ब्राउज करने देखते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो उठा लेंगे, देख लेंगे, मतलब खरीद लेंगे. अभी वो लोगों ने करना कम कर दिया है.
0: एक काम करते हैं ना, यहाँ पे अपन लाइव पोल करते हैं ना.
1: या लेट्स सी एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल.
0: ये जो चीज अभी हो रहा है कि यू नो हम लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं ज्यादा बाहर जाकर, इज दैट अ देसी थिंग और इज इट अ नॉट सो देसी थिंग?
1: या इज इट अ देसी बिहेवियर? अगर आपने रिसेंटली अपनी स्पेंडिंग कट बैक की है,
0: सो लेट्स डू अ पोल ओवर हियर कि आपने, आप हमें यहाँ पे कॉल करके बताइए पिछले एक महीने में व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू हैव बॉट. ग्रोसरी और ये सब नहीं,
1: ग्रोसरी नहीं, नॉन मतलब नॉन एसेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं कि यू लग्जरी आपने ऐसा खरीदा.
0: लेकिन देखो अभी काफी लोग बोलेंगे फोन इज एसेंशियल, तो आप वो नहीं बोल सकते हो ना.
1: फोन इज एसेंशियल ओनली इफ योर फोन इज ब्रोकन.
0: बट वो देखो यार,
1: नहीं नहीं नहीं, फोन अगर आपका काम नहीं कर रहा है, फोन अगर आपका खराब हो गया है उसके बदले में आप फोन खरीद रहे हो, वो एसेंशियल है.
0: अभी
1: आई एम जस्ट डिफाइनिंग द कैटेगरी.
0: ओके, तो
1: लेकिन अगर आपका फोन अच्छा खासा चल रहा है लेकिन आपको जस्ट ऐसा है कि यार ये नया है मुझे ना अपग्रेड करना है,
0: नहीं नहीं लेकिन
1: दैट इज नॉन एसेंशियल.
0: नहीं नहीं नहीं, सो ओके ओके, हाउ वुड यू डिफाइन दिस देन? के फोन चल रहा ठीक है बट उसका बैटरी मतलब थोड़ा, मतलब ऑब्वियसली जैसे ओल्ड हो जाता है, थोड़ा
1: ड्रेन हो गया है,
0: ड्रेन होती है बैटरी जल्दी, ड्रेन हो जाती है, ये सब होता है,
1: तो एसेंशियल हो ना, बिकॉज़ फोन इज डाइंग बेसिकली.
0: अच्छा,
1: फोन इज गोइंग अवे. तो अगर आपका फोन डाई आउट हो रहा है तो उसके बदले में अपने आप फोन खरीद रहे हो इससे पहले कि वो बंद हो जाए.
0: अच्छा,
1: मतलब इफ इट इज इन दैट कैटेगरी फोन आपका, तो एसेंशियल है. लेकिन अगर आपका फोन अच्छा खासा चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग एंड यू आर लाइक कि मुझे ना अपग्रेड करना है, बहुत हो गया ये फोन, मैंने बहुत यूज कर लिया, दैट इज नॉन एसेंशियल जो मुझे लगता है. व्हाट डू यू थिंक गाइस?
0: हां ठीक है, तो अभी आप कॉल करके यहां पे बताइए हमें. 0800-004-866 इज द नंबर. व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू हैव बॉट इन द लास्ट 1 month?
1: तुम्हारा फोन बंद नहीं हुआ था ना जब तूने नया लिया?
0: मेरा फोन तो बंद ही हो गया था ना.
1: ओ, बंद हो गया था ना,
0: टूट गया था ना वो स्क्रीन, क्रैक हो गया था.
1: ओ या या, सो यू, तुम्हारे लिए एसेंशियल था वो?
0: वो एसेंशियल था, फिर भी मैंने उसको बहुत टाला. मैं वो फालतू फोन यूज कर रहा था ना काफी टाइम तक.
1: या मेरा भी एसेंशियल ही था, मेरा फोन का ऑन ऑफ वाला ही टूट गया था.
0: हाँ.
1: So, मैंने ये नया लिया.
0: मेरे हिसाब से
1: आफ्टर S21 मैंने S26 लिया.
0: क्या बात है सैंडी, 5 साल बाद, मतलब
1: 25
0: या 4-5 साल के बाद लिया.
1: या
0: नाइस, मैंने 8 साल बाद लिया था फोन.
1: Nice.
0: Just letting you know.
1: अभी कॉल करो या अभी, what do you think? Is it a desi behavior cutting back your cost ki expenditure, I will say.
0: अभी like we are checking like RR desis also cutting back cost. मेरे को लगता है देसी लोग को फर्क नहीं पड़ा है inflation ये सब से.
1: लगता है तुम्हें?
0: हमारे लोग बहुत छापते हैं.
1: हाँ.
0: वो लोग खुश है, वो बोलते हैं कि हम उड़ाएंगे पैसे.
1: तो लास्ट एक्सपेंसिव चीज आपने क्या खरीदी?
0: लास्ट एक्सपेंसिव चीज आपने कौन सी खरीदी है ये आप हमें कॉल करके यहाँ पे बताइए.
1: तो कुछ भी हो सकता है, शूज भी हो सकते हैं.
0: मैंने लास्ट जो एक्सपेंसिव कह सकते हो
1: एक $600 के हेडफोन के बाद बंदा एक और हेडफोन खरीद के आता है. क्या, कितने का है
0: ये? 250 के.
1: 250 इज लाइक
0: 250 नॉट बैड ना. बट इसमें भी मजा नहीं आ रहा है.
1: 600 वाला कौन यूज कर रहा है?
0: 600 वाला अभी पड़ा है, हम उसको एंटीक रख रहे हैं अभी.
1: कोई खरीदने भी नहीं आया.
0: मुझे एक ऑफर आया था.
1: हाँ?
0: मैं एक इवेंट पे गया था, वहाँ पे मुझे उन्होंने मजाक में बोला, शायद
1: मजाक में बोला ना उन्होंने
0: कि मैं खरीदना चाहती हूँ तुम्हारे हेडफोन्स. मैंने बोला हाँ ठीक है, श्योर. मेरी वाइफ को बोला ये, मेरी वाइफ बोलती अरे तो लेने का ना नंबर दे, बेच देने के ना.
1: हाँ?
0: मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं, वो मजाक कर रहे थे शायद से. बड़े इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो.
1: सो गाइज, आपने लास्ट एक्सपेंसिव चीज क्या खरीदी, आप भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे।
0: कोई कॉल करेगा तो मजा आ जाएगा यार, या हमारे फोन लाइंस नहीं चल रहे। 0800-004-866 is the number. Give us a call. And
1: remember, थोड़ी देर में आपको दिवाली के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलेगा।
0: देखो मैं बोला ना,
1: तो ऑलरेडी टेस्ट कर लो।
0: हमारे लोगों के पास बहुत पैसा है। रवनील का मैसेज है, इन्होंने अभी गाड़ी खरीदी, 45,000 की गाड़ी खरीदी।
1: पर गाड़ी इज असेंशियल।
0: ऐसा थोड़ी होता है सैंडी यार।
1: गाड़ी फॉर मी वाज असेंशियल क्योंकि मेरी गाड़ी गई थी।
0: नो, इफ यू हैव असेंशियल गाड़ी, अगर असेंशियल बोल रहे हो तो वो आप सस्ती गाड़ी भी असेंशियल काम कर सकती है।
1: नहीं, कई बार आपको होता है कि गाड़ी जब आपको लेनी है तो फिर आपको सही गाड़ी लेनी है।
0: आप तो ऐसे बोल रहे हो कि मतलब खाना खाना असेंशियल है तो मैं 5-star होटल में जाके खाऊंगी, उसको असेंशियल नहीं बोल सकते हो ना।
1: गाइस मेरे को ये बात बताओ, नई गाड़ी खरीदना जब आपकी गाड़ी मतलब कबाड़ा हो गई है, खत्म हो गई है।
0: इन दिस कंट्री ब्रांड न्यू कार लेना इज अ लग्जरी, इट्स नॉट एसेंशियल।
1: या इट इज लग्जरी,
0: सो इट इज नॉट एसेंशियल। हर एक चीज को एसेंशियल मत बोलो। आपने कुछ एसेंशियल गाड़ी नहीं खरीदी है, आपने लग्जरी गाड़ी खरीदी है।
1: देयर वाज लास्ट ईयर।
0: हां,
1: सो रवनील ने यहाँ पे बोला उनका एक्सपेंसिव थिंग थी उनकी नई गाड़ी।
0: या आप भी बताइए यहाँ पे यार, आपके लिए ऐसा क्या रहा है जो खर्चा आपने किया है।
1: गाड़ी तो तुम्हारे खर्चे में भी आएगी ना।
0: गाड़ी तो मैंने भी खरीदी है भैया,
1: बट
0: हमने
1: एसेंशियल खरीदी है।
0: एसेंशियल खरीदी है, वी हैव नॉट गॉन लग्जरी। वेल होपफुली सून।
1: या
2: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी।
3: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पी।
4: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं।
2: Accurate traffic.
5: Beauty Mump at Bargain Chemist.
6: Partly cloudy overnight with a low of 10. Town to Silverdale taking 44 minutes. Now it's heavy on the northern heading onto the Harbour Bridge by Oniwa Road. To Massey, 22 minutes on the southern, just slow in both directions between Sylvia Park and Green Lane. Town to Drury, 49 minutes. Southwestern's heavy heading north through Mangere Bridge and Puhunui Road a bit slow through to the southern.
5: Treat yourself to big bargains on your beauty favourites this Beauty Month at Bargain Chemist.
7: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
8: मुझे भी।
7: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
9: Savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with Spring Savings at Beds R Us Manukau and Poke Kohe, where dreams begin.
10: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
11: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
12: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
13: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
14: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop, so you can fuel up without slowing your day down and still earn smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
2: Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Poke Kohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Poke Kohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Power Drive at 5.
3: Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
0: पावर ड्राइव एट 5 जारी आपके लिए। एंड यहाँ पे मैसेज आया है कि आप, हमने पूछा आपको सवाल कि ऐसी क्या एक्सपेंसिव चीज़ें आपने खरीदी है रिसेंट में। एंड मैसेज एक आया है कि गोल्ड डायमंड ईयरिंग्स बाई किए इन्होंने। क्या बात है,
1: गोल्ड डायमंड इयररिंग्स इन्होंने बाय किए हैं। एक और मैसेज है, उन्होंने बोला 2019 से मोबाइल नोट प्लस चला रही हूँ, बैक इज ब्रोकन बट स्टिल वर्किंग सो हैप्पी, और कुछ नहीं लिया, बस नया घर बनाया फॉर द फैमिली बाय बोरस। ओके, नथिंग फॉर अस बट श्योरली फॉर फैमिली बेनिफिट।
0: क्या बात है। फिर एक आया मैसेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्नेहा थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आई बॉट डाइसन हेयर एयर रैप आईडी which was not essential. This is
1: very nice.
0: No. What is very incredible is that Sneha has acknowledged that it was not an essential.
1: Yeah.
0: Because a lot of them would say, no, that is an essential, yaar.
1: If I'm not wrong, Sneha, ये वही Dyson hair wrap है जिससे आपको heating करने की मतलब straight वगैरह वो सब करना है, और straight भी करने के लिए वो सब heating की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: It's air wrap।
0: एक मिनट इनको पूछते call करके यार।
1: Yeah।
0: I want to understand।
1: और ये महंगा ही होता है, और मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी investment है, लेकिन ये
0: invest कुछ नहीं,
1: it's a good investment।
0: पूछते ना कितनी बार use किया?
15: Sorry, we can't.
1: She can't take the call.
0: अच्छा, कॉल नहीं ले सक रहे यार। स्नेहा यार कॉल करो हमें यार, 0800-004-866 इज द नंबर, कॉल करो हमें, जानना है यार ये क्या है, ये एयर रैप, एयर रैप आईडी।
1: मेरे को लगता है ये वही है ना, एयर रैप आईडी। और रोनल का भी मैसेज आया है,
0: रोनल ने भी मैसेज किया है, उन्होंने एकदम मेरे जैसा मैसेज लिखा है यहाँ पे, पेइंग मॉर्गेज बिल्स इंश्योरेंस फूड फ्यूल एक्सेट्रा, देयर इज नॉट मच लेफ्ट फॉर बाइंग एनीथिंग एल्स। यस रोनल, फील यू
1: Yeah.
0: In this.
1: So, yeah, वही करता है air wrap, dries, curls, shaves, smooths hair at the same time using high speed air instead of extreme heat. तो heat apply नहीं होती, तो उससे आपके बाल जो है damage नहीं होते हैं.
0: Oh.
1: So that's why I'm saying it's a good investment. So metal clamps जो होते हैं, जो बाकियों में होते हैं ना, वो इसमें नहीं है. It's a air wrap.
0: अच्छा, कितने पैसे मिले ये प्रमोट करने के?
1: नहीं, मुझे नहीं
0: मिले,
1: बट आई वाज रीडिंग इट, इट्स क्वाइट नाइस रुज़बे।
0: या मेरे को पता है आपका बर्थडे आ रहा है।
1: या रुज़बे, अगर या
0: हिंट देने का टेक्निक थोड़ा कैजुअल था,
1: ज्यादा लाउड था।
0: एनीवे, आप यहाँ पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में $1,000 जीतने के मौके आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। क्योंकि अभी हम आपको एक मौका देने वाले थोड़े टाइम में, लेकिन यश का मैसेज है, उससे पहले बॉट एयरपॉड्स 5 एंड गोल्ड बार। अल्लाह, गोल्ड बार, भाई साहब, गोल्ड बार इज सो सच अ
1: इट्स आल्सो इन्वेस्टमेंट, लेकिन या आपने एक्सपेंसिव तो लिया, लेकिन वो मैंने सुना है कि काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, बिकॉज गोल्ड खरीदना, जो बाकी गोल्ड की चीजें होती है उसको जब आप कन्वर्ट करते हो किसी और चीज में, तो
0: उसमें मेकिंग चार्ज चला जाता है,
1: चला जाता है, लेकिन गोल्ड बार इज गुड वन,
0: गोल्ड बार इज गुड वन, सैंडी अप्रूव्स इट। हाय स्नेहा।
15: हाय रुज़बे,
0: कैसे हो?
15: इट्स माय फर्स्ट टाइम कॉलिंग।
0: क्या बात है यार, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग बैक।
1: यार आपने एयर रैप लिया है, लाइक हाउ इज इट लाइक डिफरेंट स्नेहा? मेरे को थोड़ा ऐसा रिव्यू दो उसका, नॉट अबाउट द कंपनी बट अबाउट द एयर रैप।
0: चलो यार, ठीक है, समझ गए हम। बोलो।
15: मैंने लिया तो है, पर आप मानोगे नहीं, मैंने सिर्फ इसको 3 बार ही यूज किया और मुझे ढंग से आता भी नहीं है, और बस ले लिया है क्योंकि मेरा स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर था, खराब हो गया। तो मैं सोचा क्या लूं, चलो डायसन लेके देखते हैं, बट मुझे आता कुछ नहीं है उसमें अभी भी।
0: इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग एंड प्लीज डोंट आंसर इफ यू माइंड, तो कितना खर्चा किया ये सब पे?
15: 900 तक।
1: कहाँ घूमने चले जाती स्नेहा?
15: नहीं, मैं जा रही हूँ इंडिया अभी, तो सोचा कि लेके जाऊंगी, थोड़ा सा फ्लॉन्ट करूंगी।
1: फ्लॉन्ट करूंगी। अच्छा, मेरे को ये बताओ, वो जो 3 बार यूज किया, हाउ वाज इट, लाइक बाल ऐसा बने, मतलब कैसा था वो?
0: नहीं, फालतू था, इसलिए तो 3 ही बार यूज किया।
15: वो ब्लो ड्राई वाला बहुत अच्छा है, एक दो बार ट्राई किया मैंने, बट उसमें काफी सारे आई थिंक हेयर में प्रोडक्ट्स लगाने पड़ते हैं पहले। वो भी लिए मैंने, काफी एक्सपेंसिव थे।
1: तुम तो 1500 तक पहुंची होगी।
15: आराम से, मजा आया मेरे को।
1: मैं नहीं यार, मैं ट्रिप कर लूँ इस मिस।
0: स्नेहा, आपकी मतलब यू हैव अ पार्टनर और हस्बैंड और या पार्टनर या कुछ है?
15: उनको मैं अपने हस्बैंड के भी कर देती हूँ ब्लो ड्राई मास्क, उनको अच्छा लगता है, उनके तो एटलीस्ट हो जाते हैं, मेरी नहीं हुए तो।
0: अच्छा,
1: छोटे बाल है ना, उसे सही
15: छोटे बाल में अच्छे से, हाँ मस्त हो जाते हैं।
0: अच्छा है, अच्छा, आपके हस्बैंड के बाल तो है।
1: सही है, ओके, आइडिया कैंसिल स्नेहा।
0: तो एक मिनट, नहीं मेरे को एक बात बताओ, तो आपके हस्बैंड अप्रूव करते हैं आपका ये जो मतलब अप्रूव मतलब ही इज हैप्पी विद द परचेज दैट
1: यू मेड? क्या करना
15: हाँ, like हाँ वो मुझे काफी टाइम से बोल रहे थे डायसन लेने के लिए, अभी 5-6 साल हो गए कब से बोल रहे कि डायसन ले ले ले ले ले ले, तो मैं थोड़ा सा कंजूस करके मैं कहा नहीं स्टेट ना चल रहा है चलने देते हैं, अब ये खराब हुआ तो मैंने कहा अब ले लेते हैं चलो अभी टाइम है।
0: क्या बात है, यू नो मैं अक्सर
15: स्ट्रेटनर लूंगी फिर भी अलग से,
0: वो अलग से लोगे।
1: अरे तो वो क्यों लेना है अभी,
15: इसमें इतना मजा नहीं आ रहा है, स्ट्रेट इतना अच्छा सा नहीं लग रहा मेरे को।
1: मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम YouTube पे जाओ, वहाँ पे ऐसा उसके देखो, ट्यूटोरियल्स देखो, देन थोड़ा ट्राई करो उसने, हाँ उसके बाद और खर्चा करो। यार मेरे दिल में कुछ हो रहा है अभी।
0: यहाँ पे एक और मैसेज आया स्नेहा, माय वाइफ बॉट डायसन एयर रैप एज वेल बट इट वाज अ लाइक ईयर अगो, मस्ट बाय प्रोडक्ट फॉर एवरी लेडी आउट देयर।
1: देखा कंफ्यूज करते हैं ऐसे, स्नेहा यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज इट।
0: हमेशा से चाहता हूँ कि मेरी वाइफ रेडियो सुने, लेकिन आज ये ऐसा मोमेंट था जहाँ पे मैं विश कर रहा हूँ कि वो ना ही
1: सुने।
0: मुझे नहीं पता था पति भी लोग भी इतने सपोर्टिव होते यार खर्चे को लेकर।
1: We bought a baby swing, not a essential as back in the days our parents used to make swing out of sardis by hanging it from the ceiling. GPT says it's unsafe to use that sardis, so I had to buy a swing. हाँ यार वो पहले जो साड़ी वगैरह बांधते थे उसके लिए वो मजबूत वो चीजें होती थी ना, कोई पेड़ होता था घर पे या समथिंग कुछ ऐसा।
0: घर के अंदर पेड़ होता है?
1: कितने घरों के अंदर पेड़ होता है यार।
0: आप लोग हाँ, हाउसेस में रहते हो ना, हम अपार्टमेंट में रहते सैंडी, हमारे घर में पेड़ नहीं होता। हमारे घर में प्लांट होता है ज्यादा से ज्यादा। सॉरी पेड़। या दैट्स इंडिया फॉर यू।
1: एनीवे
0: ओह माय गॉड, एक और मैसेज आया सैंडी,
1: $4,700 का इसने प्राडा का बैग लिया है।
0: अरे बाप रे,
1: वाइफ्स बर्थडे पे।
0: नहीं नहीं, ये सब नहीं पढ़ना था।
1: कब है तुम्हारी वाइफ का बर्थडे?
16: Hollywood's most wanted.
17: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
18: मैं लाऊं अपना ए गेम।
16: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: आपके लिए थोड़ी देर में हम दिवाली में आप कैसे जीत सकते हैं, क्या है अभी इस बार क्या नाम दिया हमने उसका, फेस्टिवल ऑफ
1: फॉर्च्यून,
0: फॉर्च्यून
1: या फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में,
0: फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में आप $1,000 के ऊपर जीत सकते हैं। लेकिन एक बहुत सही मैसेज आया सैंडी, हम फिजूल खर्ची की बातें कर रहे थे या एक्सपेंसिव चीजें आपने क्या बाई की उसके बारे में बात कर रहे थे, इनका मैसेज आया आई बॉट फ्रेश टमेटोज इन विंटर वाइल वी कुड जस्ट बाई टमेटो प्योरी, टोटली अननेसेसरी एंड एब्सोल्यूट लग्जरी,
1: अर्बन गरीब।
0: अच्छा रिगार्ड्स, दिमाग से गरीब इंसान, क्या बात है यार, वेरी नाइस,
1: दैट्स एक्चुअली अ गुड वन यार।
0: देखो मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा गरीब सोचने वाला।
1: एनीवे अभी आते हैं फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, जहाँ पे यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइसेस दिस दिवाली विद हम। एंड हम एक ऐसा रुजबे हिंदी रेडियो स्टेशन है जो कि दिवाली पे, वन ऑफ द फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन है जो कि दिवाली पे इतना बड़ा प्राइज आपको दे रहा है यहाँ पे इन ओशियाना रीजन।
0: अच्छा
1: या
0: वाओ।
1: सो आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ पे $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 का वाउचर जीतना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, दिस इज़ बाय NZPMI, आपको NZPMI स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर। सो आई विल से इट वेरी स्लोली, NZPMI, NZ एज ए न्यूजीलैंड, PMI, सो NZPMI आपको अपने नाम के साथ लिख के भेजना है 5599 पर। NZPMI के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी वैसे आप सेल वैल्यू के लिए अनलॉक कर सकते हैं जो कि आपके लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं।
0: तो मैं कहना चाहूंगा कि इट इज NZPMI,
1: PMI,
0: नॉट TMI,
1: नॉट TP, P फॉर पैरेट।
0: जी आप ऐसा समझ लो NZ प्राइम मिनिस्टर इंडिया, नहीं इजी रहेगा ना,
1: या फिर I,
0: हाँ I is for India, मतलब
1: सो NZPMI,
0: बहुत
1: और देन अपना नाम लिख के भेजो 5599 पर एंड आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे यू कैन विन $1,000 वो तो माइटर 10 वाउचर यार।
0: माइटर 10 में $1,000 उड़ाने के लिए मेरे को लग रहा है वो भी कम पड़ जाते काफी बार, इतनी सारी चीजें आप ले सकते हो वहाँ पे।
1: टर्म्स एंड कंडीशन वैसे हमारी वेबसाइट पे है hum.rova.nz पे, आपके पास सिर्फ 5 मिनट का समय है अभी शुरू होता है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, 10 एंट्रीज भी आप भेज सकते हैं, 20 एंट्रीज आप भेज सकते हैं, बट रिमेंबर जब भी आप यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं स्टैंडर्ड करियर रेट्स टू अप्लाई। Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Hum, accurate traffic. Everything for gardens, lawns and landscaping at Dalton's Landscape Supplies. Partly cloudy overnight with a low of 10. Town to Silverdale taking 44 minutes now. It's heavy on the northern heading onto the Harbour Bridge by Oniwa Road. To Massey, 22 minutes on the southern, just slow in both directions between Sylvia Park and Green Lane. Town to Drury, 49 minutes. Southwestern's heavy heading north through Manganui Bridge and Puhunui Road a bit slow through to the southern.
2: Easy ordering or pick up. Daltonslandscapes.co.nz.
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
4: The first time Glenn saved lives was a Thursday. He was wearing odd socks. He crossed his feet. No one seemed to notice. The second time wasn't quite as dramatic. He closed his eyes to see how many dog breeds he could name. 22. Not bad, Glenn. Not too bad. Sit back and save lives at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
2: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudimahotels.com/food festival.
5: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
6: It's my turn on dinner, and my flatmates have only ever seen me make toast. Burnt toast. But I look like I know what I'm doing with Wilbur's sweet chili butterfly chicken. Even though I don't. That's my kind of woolies.
3: Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusbane, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku. Power Drive at 5.
7: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
8: Let's go.
7: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZ PMR.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है.
2: वेल एब्सोल्युटली जो होता है अच्छे के लिए होता है और ये गाना भी बहुत अच्छा है जो आपके लिए बहुत जल्दी यहाँ पे लेकर आएंगे. लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैसेजेस आए हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस. एक ही चीज बताना चाहते हैं कि NZPMI ये वन वर्ड है.
3: तो वन वर्ड करके जो अलग लिख के भेजा है तो प्लीज अपनी एंट्री आप दोबारा भेज दो. काउंट होगी वो NZPMI है जिन्होंने गलत लिख के भेजा था. बट फॉर नाउ आपको बताना चाहते हैं कि हम थर्सडे को इलेक्शन स्पेशल्स करते हैं. तो पिछला इलेक्शन स्पेशल अगर आपने मिस आउट किया है जहाँ पे सनी कौशल से हमने बात की थी जो कि चेयरमैन एंड सीईओ है इंडिया न्यूजीलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के. हमने उनसे बात की अबाउट इंडियन कीवी बिजनेसेस जो कि अभी फेस कर रहे हैं यू नो जॉब्स को मतलब वो जॉब्स आउट करते हैं तो कोई हायरिंग होती है कि नहीं होती है. क्राइम को लेके, इमिग्रेशन को लेके, बेसिकली वर्कफोर्स शॉर्टेजेस को लेके ये सारी चीज़ें उनके साथ हमने बातें की. कॉस्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस एक्चुअली में इसके बारे में भी बातें हुई थी.
2: एंड क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं बिजनेस क्या फेस कर रहे हैं एंड हाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग और व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड फर्दर इसके बारे में हमने बात की. तो एपिसोड आप चेकआउट कर सकते हो. लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की सैंडी ओवर द वीकेंड और मैंने ये पहले भी कहीं तो भी फेसबुक पर देखा था. लॉट ऑफ people candidates जो खड़े हो रहे they are experiencing a lot of vandalism.
3: ये मैंने तो देखा, मैंने तो उधर west में बहुत देखा ये.
2: यार मैं उस दिन literally weekend पे I was going and मैंने देखा एक आदमी broad daylight में afternoon में वो spray paint से national का जो वो post वो था billboard type था उनका उसके ऊपर ऐसे marks वाक्स कर रहा है और
3: yeah, even I have seen quite
2: बुरी चीजें लिख रहे हैं वहाँ पे.
3: Different different parties का actually मैंने देखा है.
2: मैंने mainly देखा है national के साथ ये ऐसा होते हुए.
3: I think area to area depend कर रहा है शायद वो.
2: ओह अच्छा ऐसा भी है.
3: Person to person. Yeah. तो एक जगह पे मैंने उल्टा देखा. मैंने labor का भी देखा है मैंने.
2: Oh wow. So. But I just feel yeah like this should not be part of.
3: Yeah because उनके campaigns हैं. तो campaigns में उनके जो boards हैं वो out जाते हैं वो लगते हैं. तो that's a way of doing a campaign ना. तो वो नहीं करना चाहिए. वो आपके ऊपर है. सो इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज. बेसिकली आपको क्या करना है, आपको पॉलिसीज अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है एंड वोट फॉर द पर्सन जिसके आपको लगता है कि पॉलिसी आपके लिए सही है. एंड वोट करना मेरे को लगता है बहुत जरूरी है स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लिए.
2: बट ऐसे केसेस में आप क्या करोगे अगर आपने किसी को देखा है ऐसे करते हुए. लाइक मैंने देखा वो ऐसे करते हुए लेकिन मेरे में तो हिम्मत नहीं है कि मैं उसको जाके कन्फ्रंट करूं और बोलूं कि भाई
3: तुम्हें उसको कन्फ्रंट नहीं करना है. तुम अगर रिपोर्ट करना चाहते हो किसी अथॉरिटी को तो तुम रिपोर्ट कर सकते हो.
2: रिपोर्ट कर सकते हो 105 पे कॉल करके.
3: वी विल नॉट एनकरेज फॉर यू टू गो एंड कन्फ्रंट अ पर्सन बिकॉज क्या होता है ना कि वो किस माइंडसेट से वहां पे वो चीजें वैंडलिज्म कर रहा है हमें नहीं पता है.
2: वही ना.
3: सो अपने आप को कभी रिस्क में नहीं डालना चाहिए.
2: दैट्स राइट. और आयुष्मान खुराना की मूवी आ रही है उड़ता तीर वैसे भी
3: बन जाए लेने का
2: हमने नहीं लेना चाहिए.
3: तुम्हारा बिलबोर्ड नहीं है ना वो. तुम्हारा बोर्ड नहीं है ना रुस्बे.
2: वही ना. खाया पिया कुछ नहीं मार खाया फालतू का. एनीवे जुल्फी की आवाज आपके लिए. यू आर लिसनिंग टू हम.
1: वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है गलत कहते हैं.

सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Your new home awaits in Strathmill, Ottawa.
3: Partly cloudy overnight, a low of 10 on the northern from Tarn to Silverdale, 36 minutes is heavy heading onto the Harbour Bridge by Oniwa Road. On the southern, heavy heading north from Sylvia Park to Mountain Road. Tarn to Manukau, 27 minutes, Drury, 39. Southwestern's heavy heading south from Mangere Bridge to Puhinui Road. And some train line closures tonight for maintenance work.
2: Strathmill, discover your new home in beautiful Ottawa. Visit strathmill.co.nz.
4: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
5: जूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
4: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
6: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
7: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
8: Lots.
7: Will they word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
8: Probably.
7: Am I paying for this free coffee?
8: Definitely.
7: Will they talk me into an upgrade? Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
9: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
10: Farmers Lingerie Week is now on with 25% off women's lingerie, including Burley, Triumph, Fendon, Jockey, Bonds and more. Plus, earn double Farmers Club points on all lingerie brands. Farmers Lingerie Week is now on. Conditions and exclusions apply.
11: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of all that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today. For expert advice you can rely on, TCs, fees and credit criteria apply. Floor.

0: All Whites have a rare opportunity to grab some international football silverware, as well as taking on a side that is ranked in the world's top 20. The All Whites play Japan in the final of the Kirin Cup from 11:30. And it's taken 11 years, but veteran batter Nick Kelly has earned his first New Zealand Central contract. The 33-year-old left-hander replaces Michael Bracewell, who is shifting to a casual contract.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
3: Are you ready to go home?
4: The Drive Show with Sandy and Rusbane. Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWN Havel and Omura Jaiku.
3: Let's go!
2: Trend Makers, The Drive Show with Sandy and Rusbe.
5: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
6: 6 baj chuke hain, aapka swagat hai Trend Makers mein. Trend Makers mein hum usually aapke liye ek koi theme lekar aate hain, ek koi shout out lekar aate hain, kuch to bhi aisa particular aisa lekar aate hain jiski karta dharta hai none other than my co-host and the assistant content director of hum. वेलकम सैंडी.
7: वेल आज हम शाउट आउट देने वाले हैं रुजबे.
6: एक पहले गुड इवनिंग बोलते हो.
7: गुड इवनिंग रुजबे, हाउ आर यू?
6: अरे वहां से लाइक सेम लाइक आई वाज लास्ट.
7: ओके, सो आज हम शाउट आउट देने वाले हैं एक ऐसे डायरेक्टर एंड राइटर को जिन्होंने कुछ क्लासिक मूवीज बनाई हैं. तो आई विल टेल अ बिट अबाउट हिम. नाम शायद हर किसी को ना पता हो इनका, लेकिन इनका काम हर किसी को पता है. सो इन्होंने एक सीरीज बनाई थी जिसका नाम था नुक्कड़. एक टीवी सीरीज थी, ठीक है,
6: नुक्कड़ मैंने.
7: तो सैयद अख्तर मिर्जा के साथ ये बनाई थी उस समय पर. एंड उसके बाद बॉलीवुड में इन्होंने एक क्लासिक मूवी बनाई जिसको काफी लोगों ने याद रखा, जिसका नाम है जाने भी दो यारो. एंड देन उसके बाद बहुत सारी मूवीज बनाई, बहुत सारी मूवीज लाइक जिसके गाने आज इस आवर में आप सुनने वाले हैं, जैसे कभी हाँ कभी ना, ये सब मूवीज.
6: तो ये डायरेक्टर है?
7: ये डायरेक्टर एंड राइटर है.
6: डायरेक्टर एंड राइटर है?
7: डायरेक्टर एंड राइटर कुंदन शाह.
6: कुंदन शाह,
7: कुंदन
6: शाह.
7: हाँ, सो कुंदन शाह इनका नाम है. इंडियन फिल्म डायरेक्टर ये रहे एंड राइटर भी है. तो आज इनके काम को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं. तो वैसे ये गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं रुजबे. एंड इनका डेब्यू हुआ था जाने भी दो यारो के साथ. जाने भी दो यारो एक क्लासिक मूवी मानी जाती है. इसमें आई थिंक नसीरुद्दीन शाह थे इस मूवी में. एंड इट्स इसके कुछ सीन्स हैं, मैंने रील्स में इसके सीन्स बहुत ज़्यादा देखे हैं जो कि बहुत ही हिट सीन्स हैं. इसको लिखा था सतीश कौशिक ने वैसे इस मूवी को, जाने भी दो यारों को. एंड स्क्रीन प्ले था कुंदन शाह का.
6: एंड इट्स कंसीडर्ड टू बी अ कल्ट क्लासिक, डार्क कॉमेडी.
7: या डार्क कॉमेडी, या वेरी नाइस मूवी. कभी आपको मौका मिले तो इस मूवी को देखना. मुझे लगता है मुझे भी देखनी चाहिए बिकॉज मैं कहानी भूल चुकी हूँ इसकी. मैंने देखी हुई, मैंने यूट्यूब पे देखी एक्चुअली ये मूवी.
6: इस मूवी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर. काफी.
7: तो
6: और वैसे एक्चुअली उन्होंने काफी अच्छे मूवीज यार, उसके बाद कभी हाँ कभी ना को भी बहुत अच्छा.
7: या उन्होंने बहुत सारी मूवीज बनाई ऐसी. क्या कहना मूवी वाज वेरी डिफरेंट मूवी. सो यू नो ही डिड फ्यू मूवीज जो कि बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज थी फॉर द हिंदी सिनेमा. तो आज उनका काम हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं.
6: इन्होंने सर्कस भी बनाई है.
7: या सर्कस सीरीज जिसमें शाहरुख खान थे.
6: शाहरुख खान थे स्टार्टिंग.
7: सो नॉट जस्ट नुक्कड़. नुक्कड़ वाज द फर्स्ट वन व्हिच वाज वेरी हिट. ये जो है जिंदगी में, मैंने ऐसा नाम सुना सुना लग रहा है कहीं पे. तो ये वागले की दुनिया, वागले की दुनिया भी सुना हुआ है या सर्कस भी सुना है. वागले की दुनिया भी सुना है शायद से.
6: अच्छा.
7: या देन परसई कहते हैं, ये भी एक इन्होंने बनाई है टीवी सीरीज.
6: क्या बात है, इनके बारे में और भी बातें करेंगे. लेकिन अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस घंटे की उन्हीं के एक मूवी का. ये गाना है
7: कभी हाँ कभी ना का.
6: कभी हाँ कभी ना.

0: ट्रेंड मेकर्स।
1: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
3: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
4: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 8।
6: Discover the magic at Go Bananas Child Care, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Child Care's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
7: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudimahotels.com/foodfestival.
8: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूँ गुरु कंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं।
9: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424।
10: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
11: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
10: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
12: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
0: The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari koi branch nahi hai.
14: Are you ready to go home?
15: The Drive Show with Sandy and Rusbain, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
16: You're listening to Hump Link, Bollywood's biggest hits, Trend Makers. Aapke liye jari hai yahan pe. Aur Sandy.
17: या ट्रेंड मेकर्स में आज हम कुंदन शाह, इनका काम सेलिब्रेट करने कर रहे हैं बिकॉज इनकी डेथ एनिवर्सरी आने वाली है। वैसे यू नो, डेब्यू तो इनका अच्छा गया ही, जहाँ पे डार्क सेटायर इन्होंने बनाई थी करप्शन पॉलिटिक्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर, ये जो पूरी की पूरी मूवी थी ना जाने भी दो यारो, इसके ऊपर थी। बट ही वॉजेंट अ इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर, उनको काफ़ी समय लगा। ये कल्ट क्लासिक के बाद उनका एक बहुत ही ऐसा गैप आया टू ब्रिंग अनदर गुड मूवी।
16: अच्छा।
17: या सो जिसके वजह से फ्रस्ट्रेशन जो था उनको हो गया था कि ही वुड डील विद द फ्रस्ट्रेशन ऑफ फिल्म मेकिंग, कि उनका जो क्रिएटिव काम है उसको ज़्यादा सराहा नहीं जा रहा है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे. एक फिल्म मेकर की क्रिएटिव काम को लेके जब एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार इतना अच्छा हम कर रहे हैं, जैसे कोई अगर वीडियो बनाते हैं या फिर कुछ रेडियो पे कंटेंट करते हैं, वो लाइक यू आर गिविंग अवर बेस्ट, इसको क्यों नहीं पसंद कर रहा है कोई. तो वो काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसको शुरू हो गई थी.
16: अच्छा, वैसे इनकी बात अगर हम करें तो ये पहले अकाउंटेंट एक्चुअली बन रहे थे, बट फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया टू बी एबल टू बेसिकली परस्यू फिल्म. तो इनके साथ हुआ ये था, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था सैंडी, जो मेरे को पता चला है. तो इनके हेडमास्टर ने इनको हाई स्कूल में ऐसा देखा और बोला कि अरे तू बनिया का बेटा है ना, तू कॉमर्स करेगा. और ऐसे करके उनको कॉमर्स में डाल के उनको अकाउंटेंट बनाने की कोशिश हो रही थी. बट फिर उन्होंने बीच में छोड़ के बोला नहीं नहीं, मुझे तो मूवीज ही बनानी है.
17: या और जैसे अभी क्या कहना का गाना सुनने वाले हैं, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था उस टाइम के लिए, प्री मैरिटल प्रेगनेंसी एंड सिंगल मदरहुड के ऊपर एक्चुअली में इस मूवी को उन्होंने बनाया. एंड इट वॉज़ अ सरप्राइज सक्सेस एक्चुअली में. इसका डिले भी हुआ था रिलीज़ होना, बट काफ़ी चैलेंजेस उन्होंने फेस किए थे इस मूवी को बनाने में भी. और एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड उन्होंने इस मूवी के थ्रू शो किया था कि अनमैरिड वुमेन बिकमिंग अ प्रेगनेंट.
16: ओह या क्या कहना है, या एक्चुअली काफ़ी सटकेल रहे हैं ये. क्योंकि इनके साथ और भी मैं किससे जो थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था उसमें पता चला कि जो मूवी है कभी हाँ कभी ना, उसमें उनके कारण शाहरुख खान मार खाते खाते बच गए. क्योंकि सीन ये हो गया था कि वो पेट्रोल पंप पे शूट कर रहे थे एंड एक कोई रैंडम इंसान बीच में से जैसे चला गया, तो ये भड़क गए, बोले कि कौन है ये, और चिल्लाया जोर से, और उसके कारण एक झगड़ा वहां पे शुरू हो गया और लोग सेटल करने गए, तो उसमें काफी गर्मा गर्मी हो गई थी उस टाइम पे. और वो टाइम पे शाहरुख खान भी बहुत नए थे, सो देन काफी दूसरे लोगों को स्टेप इन करना पड़ा. जैसे तिकू तलसानिया को जानते हैं,
17: सो ही हैड टू आल्सो स्टेप इन,
16: ही हैड टू स्टेप इन टू प्रोटेक्ट शाहरुख खान.
17: वाओ,
16: या सो या काफी नहीं, एक्चुअली नॉट शाहरुख खान बट प्रोटेक्ट कुंदन
17: क्योंकि
16: उनको पीट रहे थे, उनको पीटने वाले थे. तो ऐसे काफी उनके ऐसे किस्से हुए मजेदार.
17: तो वेल, इनके बारे में आज हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, और इन्हीं के मूवीज के गाने आप यहाँ पे सुन रहे हैं.

विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

0: Glad I got my enrollment sorted the other day.
1: See, Mai, I told you it was easy.
2: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
1: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
2: Really? What if I miss it?
1: Well, your vote won't count for this year's election.
2: Achcha! You've convinced me. I'll enroll tonight.
3: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jaiku. Let's go! 3, 2, 1.
5: Trend Makers. आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और ट्रेंड मेकर्स में आज कुंदन शाह को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनको शाउट आउट दे रहे हैं क्योंकि आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है ना
6: यस नहीं नहीं आज उनका बर्थ एनिवर्सरी नहीं है सॉरी
5: अच्छा
6: उनकी डेथ एनिवर्सरी आने वाली है बहुत
5: उनकी डेथ एनिवर्सरी आने वाली है बहुत
6: यस इसके लिए
5: तो कुंदन शाह के बारे में अगर आपने मिस आउट कर लिया है तो काफी क्लासिक्स इन्होंने बनाए हैं एज अ डायरेक्टर एज अ राइटर जाने भी दो यारो एक बहुत ही कल्ट क्लासिक सीरियल मूवी थी ना ये
6: मूवी थी ये
5: जो उन्होंने की सर्कस जो शाहरुख खान की पहली सीरियल थी वो भी उन्होंने ही
6: नुक्कड़ वाज अनदर वन
5: जो इसे काफी बढ़िया काम इन्होंने किया है लेकिन सैंडी क्या आपको पता है तो उनकी जो पहली उनकी फिल्म जो थी एक जाने भी दो यारो उसके ओपनिंग नाइट पे कुंदन शाह एक्चुअली में टिकट काउंटर के पास खड़े थे टिकट्स खरीद के और अपने ही स्टार्स को और को स्टार्स को कास्ट को वो टिकट बेच रहे थे बोल रहे थे पैसे भरो इस टिकट के और अंदर जाओ पैसे खरीद के जाओ टिकट मूवी देखने
6: कि खुद की मूवी भी फ्री देखने के लिए नहीं जाना है
5: हाँ, पैसे लेके जाओ मतलब यू नो
6: सही है यार This is so epic.
5: Yeah.
6: वैसे कुंदन शाह वैसे इन्होंने हमेशा डेमोंस्ट्रेट किया अपने कामों में कि कॉमेडी कैन क्रिटिसाइज पावर एज वेल जो आज भी होता है आज भी बहुत सारे कॉमेडियंस ट्राई करते हैं क्रिटिसाइज करने का पावर को इन देयर ओन वे जब तक वो क्रिटिसाइज ना हो जाए देन ऑर्डिनरी
5: जब तक वो क्रिटिसाइज और जेल ना हो जाए
6: एंड ऑल्सो उन्होंने बोला कि एक फ्लॉड हीरो कैन बी मोर इंटरेस्टिंग देन अ परफेक्ट वन एंड जरूरी नहीं कि हर हीरो को एंड में हीरोइन मिले जैसे कि कभी हाँ कभी ना
5: oh, yeah.
6: जैसे उसमें सुनील को नहीं मिलती है हीरोइन ना शाहरुख खान के करेक्टर को
5: राइट
6: या एंड ही ऑल्सो सेड कि स्मॉल बजट मूवी कैन आउटलिव बिग बजट ब्लॉकबस्टर्स सो वेल उनकी सोच जो थी काफ़ी अच्छी रही थी बॉलीवुड मूवीज़ को लेके वो अपना कुछ मूवीज़ सिलेक्टेड मूवीज़ के साथ उन्होंने अपना मार्क बनाया लेकिन उसके ज़्यादा आगे वो कैरी नहीं कर पाए लेकिन सीरियल्स में इनका हाथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था
5: जी सीरियल्स में इन्होंने काफ़ी किया वो एक्चुअली मैं ये जो मूवी है ना उनकी जाने भी दो यारो इसके अराउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उनके जो को राइटर है सुधीर मिश्रा ये ओम पुरी से मतलब ऐसे मिले मुंबई के बांद्रा स्टेशन पे और पूरी पिच उन्होंने ओम पुरी को लोकल ट्रेन में दी
6: ओह वाओ
5: और वहां से फिर उन्होंने उनको फाइनलाइज किया कि चलो यू नो कि वो कर सकते हैं
6: ये इसकी कास्टिंग में तो देखो ना रुजबेन नसीरुद्दीन शाह ओम पुरी पंकज कपूर सतीश शाह सतीश कौशिक नीना गुप्ता मतलब क्या क्लास इसकी कास्टिंग है कभी गाइस मौका मिले तो YouTube पे सर्च करो जाने भी दो यारो जरूर देखना ये मूवी
5: जी
6: आई थिंक आई शुड वॉच इट एज वेल
5: यू नो आई एम गोना वॉच इट या विद दैट आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू से बाय बाय
6: या यहीं पे
5: साथ के लिए प्यार के लिए थैंक यू सो मच
6: आपको टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हमारे पॉडकास्ट सुनना ना भूलेगा रिमेंबर अगर आप ड्राइव लेके भेजते हैं यू विल गेट द पॉडकास्ट बाली बैंकॉक का ट्रिप अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं ट्रिप लेके भेजिए 5599 पर इसी वीकेंड पे हम एक गेट टुगेदर करने वाले हैं चाय पे चर्चा करने वाले हैं जहाँ पे देखो हम तो सवाल पूछने ही वाले हैं एंड आप भी सवाल पूछिए जो आपके जहन में है सवाल वहाँ पे पूछिए अगर आपको लगता है कि इट्स वर्थ द मनी देन गो विद अस ऑन दिस ट्रिप
5: या एंड ऑल्सो इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू हैंग आउट टुगेदर तो मिलने आ जाना वहाँ पे एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या है ये ट्रिप में
6: या जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे अगर आए हैं तो उसको बाद आपको ऐसा फोर्स किया जाएगा कि भाई खरीदो खरीदो अगर आपको सही लगे तभी आप खरीदो
5: जी ट्रिप लिख कर भेजिएगा TRIP ट्रिप ऑन 5599 एंड रजिस्टर कीजिए इस इवेंट के लिए इसी वीकेंड पे ये होने वाला है एंड इट्स गोना बी एट अ रेस्टोरेंट सो वहाँ पे आपको मिलने की इच्छा रहेगी तो आ जाना ज़रूर
6: सो गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इसी नोट पे आपको कहते हैं हम यहाँ पे टाटा बाय बाय
5: बाय।

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
2: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right, get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry, limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
3: Time check.

0: to you by Maan Tyres for all kinds of tyres and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00010.
1: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
2: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. Petrol prices have hit their highest level since the start of the conflict in the Middle East. Fuel monitoring site Gaspy today showed the average price of 91 unleaded is $3.50.6. ASB expects unemployment to have peaked this year at 5.6%. Its latest quarterly forecast sees it staying in this range before easing lower in late 2027. Former AC/DC drummer Phil Rudd has been fined after driving over a planted roundabout and hitting a tree. RNZ News is reporting that the 72-year-old ex-rocker faced a charge of careless driving in the Tauranga District Court. In sport, a big test for the All Whites in Tokyo this evening, the final of football's Kirin Cup. They take on Asian powerhouse Japan from 11:30. Japan has a world ranking of 17. The All Whites come in at 86. And Black Caps all-rounder Michael Bracewell will shift to a casual contract with New Zealand cricket for the upcoming season. He has a Big Bash League opportunity. Left-handed batter Nick Kelly replaces Bracewell on the central contract list.
3: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari good brands bhi
1: hai. Night Cafe on Hum. A moment. Krishka Magic. Only on Hum.
5: गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन. मैं क्रिश आ गया हूँ आप सभी दोस्तों का साथ देने के लिए. आज मंडे है, 5th अक्टूबर है, नो लॉजिक मंडे. तो आज शुरू करेंगे बहुत ही जल्दी, लेकिन नाइट कैफे में आपका स्वागत है. 8 to midnight हमारा साथ रहेगा. इंटरेस्टिंग खबरें और प्यारे गाने आपके लिए रहेगा. म्यूजिकल जर्नी तो शुरू हो चुका है हमारे साथ. 24/7 दरअसल ये चलता है, लेकिन हमारे साथ अभी से लेकर 12 तक तो डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि गाने बहुत प्यारे मैं लेकर आया हूँ. फिलहाल शुरू करते हैं आपके लिए नो लॉजिक मंडे.
1: Takes a break.
3: No Logic Monday.
5: नो लॉजिक मंडे में आपका स्वागत है. मैं क्रिश बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि आज इंटरेस्टिंग खबरें मैं लेकर आया हूँ. कुछ ऐसे न्यूज़ जो शॉकिंग हो या फिर आश्चर्यचकित आपको कर देगा या फिर सोचने पर मजबूर कर देगा. और कुछ ऐसे न्यूज़ भी हम लेकर आए हैं जो सुनकर अच्छा लगता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, और दो गाने के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हमारे साथ. नो लॉजिक मंडे में आपका स्वागत है. वेलकम टू द शो.

0: No Logic Monday.
1: नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. वैसे 12 तक हमारा साथ रहेगा लेकिन 9 पीएम तक नो लॉजिक मंडे आपके लिए चलता रहेगा. शुरू करते हैं कुछ न्यूज़ का सिलसिला. एक बिजार ट्रेंड को देखा गया है जिसमें रशियन मैन अपने आईफोन्स को स्मैश करते हैं फॉर ए मैनलियर लुक. जुलाई 10th को पब्लिश किया गया है इसी साल की ये स्टोरी. अ स्ट्रेंज सोशल मीडिया ट्रेंड ने काफ़ी रशियन मैन को एनकरेज किया है टू डैमेज द एक्सपेंसिव आईफोन्स. और इसका जो मकसद है, इट इज़ अपेरेंटली टू मेक द फोन्स लुक टफ एंड मोर मैस्कुलिन. और पार्टिसिपेंट्स डेलिबरेटली अपने फोन्स को स्मैश करते हैं और डैमेज करते हैं अपने डिवाइसेस को. और ये ट्रेंड एक और एग्जांपल हो गया ऑफ बिजार ऑनलाइन आइडियाज जो रियल बिहेवियर को काफी हद तक इन्फ्लुएंस या प्रभावित करती है. नेचुरली एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही नुकसान की बात है, लेकिन ऐसा किया जाता है इस ट्रेंड को दिमाग में रख के. क्रिश का साथ है कुछ और गाने आपके लिए.

0: Night Cafe, where nonsense makes perfect sense. No Logic Monday.
1: नो लॉजिक मंडे आप सुनते रहो, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, इंटरेस्टिंग खबरें भी लेकर आता रहूंगा आपके लिए। एक ऑस्ट्रेलियन फार्मर स्पेंस 3 इज मेकिंग चेन मेल फॉर शीप। 22 जून की ये स्टोरी है ऑफ दिस ईयर। एक ऑस्ट्रियन फार्मा है जिन्होंने रिपोर्टेडली स्पेंड 3 ईयर्स डिवेलप करने में एक प्रोटेक्टिव चेन मेल फॉर शीप। और ये अनयूजुअल आमा जो है इससे लाइफ टॉक को प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम वुल्फ अटैक्स। और इन्वेंटर का मानना है कि ये मेटल कवरिंग जो वुल्फ को भगाएगा दूर और मतलब हार्म करने से रोकेगा शीप को। इट इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अमाउंट ऑफ एफर्ट जो अपने शीप के प्रोटेक्शन के लिए इसने बनाया है। और ये आइडिया मिडिवल साउंड करता है, लेकिन कहा गया है कि इट एड्रेसेस द वेरी प्रॉब्लम जो कि अभी मॉडर्न प्रॉब्लम है, लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है, इसका मानना है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ देर में एक आदमी ने AI वोटर गन को बनाया टू फाइट पिजन्स, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। सुनते रहो नाइट कैफे, और नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है।

0: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: ए वॉल्यूम कम कर पापा जब जाएगा.
3: Bhai Phu, Fugadi Phu, you like me and I like you too. Bhai Phu, Fugadi Phu, you like me and I like you too. Bhai Phu, Fugadi Phu, you like me.

लॉजिक मंडे आप सुनते रहो क्रिश के साथ है। इंटरेस्टिंग खबरें तो मैं लेकर आता रहूंगा 9 PM तक, ये आपके लिए चलेगा। एक आदमी ने जो पिजन्स कबूतरों से बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि इनका बैल्कनी पर बहुत गंदगी वो फैला रहे थे, तो इन्होंने एक ऑटोमेटेड वोटर गन टरेट बनाया टू डील विद द प्रॉब्लम। AI का इस्तेमाल इन्होंने किया इसमें, जहां पर AI अलाउ करता है सिस्टम टू आइडेंटिफाई पिजन्स बिफोर फायरिंग वोटर एट देम। ये डिवाइस को एसेंशियली बैल्कनी पर रखा गया है और इससे बैल्कनी पेस्ट कंट्रोल भी ये जो मकसद है ये पूरा हो रहा है। इनटू ए मिनिएचर डिफेंस सिस्टम भी ये बन चुका है और कहा गया है कि इट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड पिजन डिटरेंस एवर बिल्ड। तो शायद आगे चलकर होपफुली इस आइडिया को बाकी लोगों के लिए भी प्रस्तुत किया जाएगा थ्रू इन डिवाइस जो बनाया जाएगा आगे चलकर होपफुली, लेकिन इनके लिए तो अभी ये एक बहुत ही बड़ी समस्या का समाधान बन चुका है। मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम।

0: Night Cafe on Hum.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
4: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile, or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
5: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
6: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूँ गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
7: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800 564424।
8: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and this seat, and that seat.
9: James, this is a radio ad.
8: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
11: हम, Night Cafe on Hum, No Logic Monday.
12: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. No Logic Monday आपके लिए जारी है। रोबोट बेगर्स चाइना स्ट्रीट्स पर देखा गया है। आपको पता है कि चाइना काफ़ी रोबोट्स को तैयार कर रहे हैं और 19 जून को ये स्टोरी को पब्लिश किया गया है जहां पर ह्यूमेनॉइड्स रोबोट्स को रिपोर्टेडली देखा गया था बेगिंग इन सेवरल चाइनीज सिटीज़। और कुछ रोबोट्स ने तो साइंस कैरी किया था आस्किंग पीपल टू पे देयर इलेक्ट्रिसिटी ओ चार्जिंग बिल्स। QR कोड्स को भी डिस्प्ले किया गया था ताकि जो पासबाइज है दे कुड मेक पेमेंट्स। और ये स्ट्रेंज सीन्स काफ़ी बड़ा डिबेट खड़ी कर दी थी अबाउट वेदर दे आर जेन्युइन ओ आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस। आइदर वे रोबोट्स वर टेकिंग ह्यूमन बेगर्स जॉब्स और ये एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल हेडलाइन बन चुका था। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और गाने आपके लिए।

0: Ka Moment. Krish Ka Magic. Only on Hum.
1: नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। 37 ईयर ओल्ड महिला ने प्रिटेंड किया टू बी ए 12 ईयर ओल्ड गर्ल फॉर 14 मंथ्स, 14 महीनों के लिए उन्होंने ऐसा किया। 5 जून की स्टोरी है। ब्राजीलियन वुमन एलिजेडली पोज्ड एज ए 12 ईयर ओल्ड गर्ल ताकि ये पर्सुएड कर सके एक फैमिली को टू अडॉप्ट हर, और इन्होंने कहा कि ऑटिस्टिक चाइल्ड है जो अब्यूजिव होम से भाग निकली है, और इन्होंने ट्रस्ट भी जीता ऑफ अ लोकल चर्च बिफोर अप्रोचिंग द फैमिली। और इन्वेस्टिगेटर्स ने लेटर कवर किया कि शी हैड प्रीवियसली इम्पर्सनेटेड माइनर्स एल्सवेयर इन ब्राज़ील, और पुलिस ने डिस्क्राइब किया है दिस एज एन एक्सेप्शनली अनयूजुअल आइडेंटिटी फ्रॉड केस। एनीवे, आज के लिए बस इतना ही। नो लॉजिक मंडे में एक और कुछ और गाने आपको सुनाते हैं, और अगले घंटे पर फिर मुलाकात होती है।

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे में आपका स्वागत है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और ऐसे ही आपका साथ देता रहूँगा ऑल द वे टिल मिडनाइट। जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट की बातें करें तो ब्रेकफास्ट केचअप सुनना ना भूले, विजय और पूजा के साथ ये होता है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातें होगी, बियॉन्ड द डेट, व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मीन। विजय और पूजा डाइव इन टू हाउ सोसाइटी मेजर सक्सेस, फ्रॉम होम लोन्स टू मैरिज, और क्यू लिसनर्स रीडिफाइन कर रहे हैं व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू बी सेटल्ड। BF टेक्स्ट करें 5599 पर, फुल ऑडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, स्वागत है आपका, सुनते रहो हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना
0: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 8 years.
4: When you've got roads, rain and traffic, you get potholes.
5: Oh man, potholes are the worst.
4: Yes, we know. That's why we have the Auckland Council Pothole Promise.
5: Huh, how does it work?
4: Well, someone alerts us to a pothole via the website. Then our crews head out, spot the pothole, catch it and release it somewhere where it won't be a nuisance.
5: Really?
4: No. We fill them with an approved asphalt premix, usually within 24 hours. It's how we keep the city moving. Search Pothole Promise. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
6: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.

0: Cafe on Hum. You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: आपका रैप का नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. अगर आज आपका जन्मदिन है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे एवरीवन जिनका आज जन्मदिन है एंड दोज हु आर सेलिब्रेटिंग. आई एम श्योर आज बहुत कुछ घर पर किया गया है या फिर वीकेंड के लिए भी आपने प्लानिंग बनाकर रखा है, तो फिर टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश एवरीवन अ हैप्पी बर्थडे जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं. अगर आप आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड हो या फिर आउटसाइड ऑफ ओकलैंड हो, आप हमें रोवर के जरिए सुन रहे हैं तो बिग शाउट आउट टू ऑल आवर रोवर लिसनर्स, क्योंकि आपको हम हमेशा याद करते हैं. आप हमसे दूर होकर भी हमें अपने बहुत ही करीब रखते हैं थ्रू रोवर. तो आपके लिए अगला गाना सुनते रहो हम. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You are listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और प्यारे गानों के साथ साथ इंटरेस्टिंग खबरें. वैसे रोवा पर भी आप हम म्यूजिक स्टेशंस का मजा ले पाएंगे. हम रिवाइंड में आपको मिलेगा बॉलीवुड्स गोल्डन ईरा, 60s और 70s के हिट्स. 80s जुकबॉक्स में आपको मिलेंगे 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स. और फीजी भजन में आप वर्ल्ड्स फर्स्ट 24/7 फ्री फीजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर पाएंगे, जिसमें भजन फ्रॉम फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट एनी टाइम एनी वे आपको मिलेगा. चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, बैक टू बैक पंजाबी हिट्स ओनली ऑन रोवा. फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब हम फिजी कीर्तन संग्रह में आपको मिलेगा. ये भी हमारा एक हम म्यूजिक स्टेशन है ऑन रोवा. यहाँ पर न्यू पूल ऑफ कीर्तन को एड कर दिया गया है जो आप इंजॉय कर पाएंगे. राहत फतेह अली खान के गाने, लव ऑफ सूफी और कवालीज अगर है आपका तो फिर आप चेकआउट करें म्यूजिक स्टेशन ऑफ राहत फतेह अली खान. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hu. Election special jari hai, to aise mein unfiltered drive sunna na bhule. Podcast mein alag alag mundon par baatein hoti hai aur jabki election special jari hai, to aise mein Sunny Kaushal se baatein hongi. Cindy aur Rizbain se baatein karenge, jisme discussion hoga about the pressures facing Kiwi businesses from rising crime, repeat offenders to immigration, workforce shortages or cost of doing business. Aur ye share karenge what he believes the next government should prioritize, chahe whether politicians are truly listening to small businesses, aur kya wo ek sawal hai jo every business owner ko कैंडिडेट से पूछने चाहिए बिफोर कास्टिंग देयर वोट. याद रहे शनि कौशल से बातें होंगी. ये चेयरमैन है एंड सीईओ है इंडिया न्यूजीलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चेयरमैन है एथनिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ एथनिक कम्युनिटीज, चेयरमैन है डेयरी एंड बिजनेस ओनर्स ग्रुप और साथ में फॉर्मर चेयरमैन है मिनिस्टेरियल एडवाइजरी ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड फ्रॉम 2024 to 2026. ड्राइव टेक्स करें 5599 पर, फुल एपिसोड आपको मिल जाएगा. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
4: Do 8 Sudokus, save 3 people's lives. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products.
5: These are some things you can achieve in one blood or plasma donation appointment. Visit nzblood.co.nz to book.
6: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूँ गुरु केंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
7: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424।
8: Media Voice Complaints, how can I help?
9: Yeah, hello?
8: Hi.
9: Hi, yeah, can you guys take a radio jingle out of my brain?
8: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
9: Well, okay, well, what about something like a brain surgeon?
8: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
9: Great, sing it to me.
10: Advertise with
11: Media Works.
10: New Zealand listens to us.
12: The beat of Bollywood.
13: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
12: Night Cafe. आपका moment. Krish का magic. Only on Hum.
14: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून, इसके बारे में तो आपने सुना होगा। विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली विद हम। दिवाली बहुत ही करीब है तो ऐसे में बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका हमारे साथ होगा। ड्रॉ होगा 30 अक्टूबर को। तो पहला, अगर आप जीतना चाहते हैं $1,000 कैश, एक विनर को मिलेगा $1,000 कैश। फॉर्चून विद होल ग्रेन्स, एसेंशियल विटामिंस, फॉर्चून फ्यूल्स, एवरी विन बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्चून। तो ये लक आपका हो सकता है अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे। यू हैव टू बी इन इट टू विन इट। तो कीवर्ड फॉर्चून टेक्स्ट करें FORTUNE विद योर नेम और 5599 पर भेज दे टू बी इन द ड्रॉ टू विन $1,000 कैश, जीतने का मौका रहेगा। तो अभी आपके लिए मैं टाइम शुरू कर रहा हूँ। आप हमारे पास फॉर्चून लिखे अपने नाम के साथ और 5599 पर भेज दे। याद रहे, कुछ और भी प्राइजेस जीतने को है, इस पर भी जानकारी बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।
15: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू,

0: ka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है। कुछ समय पहले मैंने आपसे पूछा था फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून के दौरान कि आप फॉर्चून टेक्स्ट करें 5599 पर अपने नाम के साथ और आप ड्रो में शामिल होकर $1000 कैश जीत पाएंगे। एक ही विनर को मिलेगा $1000 कैश। तो अभी भी आपके पास समय है, यू नो काइंड रिमाइंडर कि अभी भी आप इसमें भाग ले सकते हैं। कुछ ही देर तक और हम ये कॉम्पिटिशन ओपन रखेंगे आपके लिए। कीवर्ड फॉर्चून के साथ अपना नाम लिखे और 5599 पर भेज दे। याद रहे फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून विन योर of $5,000 worth of prizes this Diwali with Hum aur terms and conditions rova.nz par aapko mil jayega. Main Krish aapke saath de raha hoon, sunte raho Hum.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz। दैट्स commonwealthvault.co.nz।
5: Time check.
6: Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
5: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
7: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. Petrol prices have hit their highest level since the start of the conflict in the Middle East. Finance Minister Nicola Willis saying she hasn't had advice on how high the price may go. The Greens say Auckland's regional deal should have included funding to replace level crossings on the Western train line. It's promising to fill the gap for the sake of safety and efficiency. University of Otago researchers have co-led a study that provides new recommendations for using genetics testing. Senior research fellow George Wiggins says it has the potential to help clinicians resolve uncertain test results and make more informed decisions about patients. In sport, an exciting challenge for the All Whites. It kicks off in an hour and a half. They take on Japan in the final of the Kirin Cup. It's not often the All Whites get to test themselves against a side ranked in the world top 20. They did at the World Cup, Belgium. That didn't go so well. And Rugby League with Machinery House in a league of their own. The Kiwis name their squad for the Rugby League World Cup tomorrow. The Aussies obviously feeling they can do without a player of the quality of Warriors co-captain Mitch Barnett.
5: News. Brought to you by Sona.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Festival of Fortune. Win your share of $5,000 worth of prizes with hum. This Diwali, 30th October, ko draw hone ja raha hai. To abhi ek aur competition aapke liye shuru karenge hum, taki aap jeet sake $1,000 worth of fuel voucher. One winner ko milega $1,000 of fuel voucher. Imagine kijiye, ye bahut hi shandar inaam jeetne ka mauka hai. You'll have $1,000 worth of fuel voucher to yourself. IH text kare apne naam ke saath 5599 par. Abhi aapke paas mauka hai. IH letter I aur letter H text kare apne naam ke saath 5599 par to be in the draw to win Indelible Homes, your building experts. Ye proudly aap तक लेकर आ रहे हैं ये प्राइज indelibleHomes.co.nz आप विजिट कर सकते हैं और भी जानकारी के लिए. तो याद रहे IH के साथ अपना नाम 5599 पर. ड्रो में शामिल होकर $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर जीतने का मौका है और ये किसी एक विजेता को मिलेगा, लकी विजेता को मिलेगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
5: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle कीजिए अपना home loan of 500,000 या उससे ज्यादा Finance World के साथ. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. हर eligible home loan of 500,000 या उससे ज्यादा automatically आपको draw में enter करता है. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
6: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Get there in Apex world-class comfort with Fiji Airways, where the luxuries start from the moment you book. Get fast-track security, extra baggage and priority check-in. Once you're there, enjoy even more time to relax with resort check-in. Complete your flight check-in from various Fiji resorts with your luggage transported securely to the airport. Travel in style with one of the world's top 10 airlines. Visit fijiairways.com.
7: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardo's is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
8: Zabardast hits.
9: Shuru ho jaye to rukte nahi.
8: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Hum.
8: Night Cafe on Hum.
11: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन अभी बातें हो रही है फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून, जबकि ड्रो 30 अक्टूबर को होने को है। बहुत टाइम नहीं रह गया है, अनदर 3 वीक्स टू गो। तो जितना हो सके उतना आप अपना लक आजमाएं, विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस। आपको बस भेजना है IH अपने नाम के साथ 5599 पर, लेटर आई और लेटर एच अपने नाम के साथ 5599 पर, टू विन $1,000 ऑफ फ्यूल वाउचर। एक विनर को मिलेगा, किसी एक लकी विजेता को मिलने जा रहा है $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर, थैंक्स टू इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स। विजिट करें www.indelibalehomes.co.nz। टर्म्स एंड कंडीशंस hum.rova.nz पर आपको मिलेगा। यहां पर आप जाकर टर्म्स एंड कंडीशंस भी एक्सेस कर पाएंगे। मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है एक बार फिर, कल आ जाएंगे आपके साथ, हम लेकर आएंगे कोक स्टूडियो रिलोडेड, जिसमें कोक स्टूडियो के ताज़ा तरीन खबरें और कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे। अपना बहुत ही ख्याल रखें, हैव अ वंडरफुल नाइट, रेस्ट ऑफ योर नाइट, एंड एंजॉय योर ट्यूजडे टुमारो, कल रात को मिलते हैं, गुड नाइट एवरीवन।

0: शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
2: ये गलत बोल दिया यार।
1: और पहनता भी नहीं है उसको।
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी, ब्रांड हो गया ना।
1: रुस्बे के बाल लगे उस।
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years. Night Flight.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz। दैट्स commonwealthvault.co.nz।
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। Night Fly.

0: यार याद आ गई अपने दोस्तों की,
1: वो बचपन के दोस्त।
0: अजाने क्यों ये दूरियां बढ़ गई।
1: कई बार आपको लगता है कि मेरी गलती थी ही नहीं, उसी की गलती थी।
2: सच बताऊं, सही लगता है, उसी की ही तो गलती थी
0: काफी हद तक, लेकिन थोड़ी गलती तो आपकी भी थी।
1: तो इसीलिए फोन उठाओ
2: और अभी इसी वक्त उनसे बात करो,
0: वरना कहते रह जाओगे।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
3: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800 4NZPMI।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
3: अब हमारा क्या होगा?
4: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
2: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
6: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
7: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Put your head to Gandhi.
7: Night Flight.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: नसीला नसीला तेरा नैना तू रही ले हमरा

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुनें।
1: हम इंडिया आ रहा है ऑकलैंड एंड द ब्लू टाइगर्स नीड योर वॉइस बिहाइंड देम। देखिए इंडिया को ऑल व्हाइट्स के अगेंस्ट गो मीडिया स्टेडियम थर्सडे 12 नवंबर को, एक रेयर चांस अपनी नेशनल टीम को न्यूजीलैंड की जमीन पर लाइव देखने का। ब्रिंग द फैमिली, वेयर योर कलर्स एंड फिल द स्टेडियम विद प्राइड। अडल्ट टिकट सिर्फ $20 से शुरू, किड्स $10 से, प्लस बुकिंग फीस। बुक नाउ एट टिकटेक एंड बी देयर फॉर अ हिस्टोरिक नाइट।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
9: Night flying.

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
0: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
3: हम

0: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
2: ये गलत बोल दिया यार।
1: और पहनता भी नहीं उसको।
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए। कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी। ब्रांड हो गया ना।
1: रुस्बे के बाल लगे उस।
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J. Crew.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
5: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
6: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए। Playing Bollywood's biggest hits.

सुंदर शिक्षा दी गई और इस भजन को सुनने का आनंद तभी है, तभी कोई अर्थ है। इसमें दी गई शिक्षाओं पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए।

तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है पांच लुटेरे जो दिन रात हम सबकी वास्तविक संपत्ति को लूटा करते हैं? इन पांचों लुटेरों को हम अपने साथ रखते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं, इनको प्रसन्न रखते हैं और ये हमें लूटा करते हैं। इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे एक दिन।

0: दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: कमाल की बात ये है कि जब भी जुबिन नौटियाल आजकल ये आवाज सुनते हैं तो बड़ा ही अलग सा रोमांटिक यू नो सूदिंग गाना जो है ये जहन में आता है. बट दिस वाज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो जुबिन नौटियाल ने गाया था विद सुकृति ककरनिका और फिल्म अमावस 2019 में ये फिल्म आई थी उसी का ये ट्रैक आज सुबह सुबह आपको हम सुना रहे थे. नाउ गुड मॉर्निंग के कई मैसेजेस आपने भेजे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच और आपको याद करते हुए अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको हम विश कर रहे हैं. सबसे पहले तो आज हमारे पास गुड मॉर्निंग मैसेज मिस्टर माटा माटा का आया. इन्होंने अराउंड 10:03 AM अपना मैसेज जो है ये सेंड किया. राम राम जय श्री कृष्णा हैप्पी ट्यूजडे एवरीवन हैव अ ग्रेट डे. तो लगता है वापसी हो चुकी है इनकी क्योंकि आज नहीं बताया ना कि कहाँ से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं.
1: So, माटा माटा.
0: जी कल क्योंकि ये नंदी फीजी से सुन रहे थे तो मुझे लगता है आज वापसी हो गई है. थैंक यू सो मच मिस्टर माटा माटा.
1: वही हवाई अड्डा है ना.
0: सुबह सुबह याद करने के लिए हमें. और जय सीताराम गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय बजरंग बली के आशीर्वाद से आज का दिन मंगलमय हो. जय श्री राम जय हनुमान. ये बॉबी मान जी ने हमारे पास अपना गुड मॉर्निंग मैसेज जो है अपने अंदाज में भेजा है तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमें याद करने के लिए और गुड मॉर्निंग जो है ये विश करने के लिए.
1: सो थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए. सुबह सुबह आज तमाम चीज़ें हो रही हैं एंड थोड़ी ही देर में न्यूज़ हेडलाइंस तुम लेकर आएंगे ही लेकिन मत भूले फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून जिसमें आप अपना हिस्सा जीत सकते हैं आउट ऑफ द $5,000 प्राइजेस जो इस दिवाली के मौके पर हम दे रहे हैं आपको. कैसे कब क्या कुछ जानने के लिए हमारे साथ ही आप रहें.
0: Coming up next, Global Headlines. The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Hey, dekho maa gaye.
2: Ladies and gentlemen.
3: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco. Global Headlines.
3: आज सुबह के मुख्य समाचारों में सबसे पहले अगर देखें तो फ्लाइट दुबई के फ्लाइट के अलेज्ड हाईजेकर और को पायलट हमाम अल हमामी का मेन टारगेट इसराइल का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की आशंका है। कैप्टन और यात्रियों के ब्रेव एक्शन से हाईजेकर को ओवरपावर करके प्लेन का कंट्रोल वापस लिया गया और बड़ी तबाही जो है ये टली थी। इसराइली ऑफिशियल्स के मुताबिक एमिरेटी अथॉरिटीज से मामले की अपडेट्स ली जा रही है और इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती दौर में है। फिलहाल लंदन से शिकागो जा रही ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट एक फ्लाइट ने आयरलैंड के ऊपर जनरल इमरजेंसी डिक्लेयर की और वापस लंदन डाइवर्ट हो गई। बोइंग 777 एयरक्राफ्ट अचानक 9000 फीट की ऊंचाई पर नीचे आया और टेक ऑफ के लगभग 5 घंटे बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पर सेफली लैंड हुआ। आपातकाल का पक्का कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसे रैपिड डिसेंट आमतौर पर केबिन डिप्रेसराइजेशन की वजह से होती है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में यूनाइटेड नेशंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल ग्रिड लॉक्ड है और ग्लोबल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स 51 से बढ़कर 4 गुना हो चुके हैं, लेकिन कुछ देश रिफॉर्म्स रोकने के लिए अफ्रीका के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जयशंकर ने साफ किया कि यूनाइटेड नेशंस को खत्म नहीं बल्कि इसे फिक्स करके एक बेटर यूनाइटेड नेशंस बनाने की जरूरत है ताकि ये फिर से रेलेवेंट हो सके। फिजी में सरकार ने 9 दिसंबर 2026 को नेशनल रेफरेंडम की डेट अनाउंस की है, जिसके लिए इलेक्ट्रल कमीशन और फिजी इलेक्शंस ऑफिस ने जनरल इलेक्शंस के साथ साथ तैयारियां शुरू कर दी है। इलेक्ट्रल कमीशन अभी रेफरेंडम कैंपेन पीरियड और जनरल इलेक्शन कैंपेनिंग को सस्पेंड करने के प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट पर फैसला लेने पर विचार कर रहा है। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी एंड डायलॉग ने इस सस्पेंशन का विरोध किया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अभी तक पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, इसीलिए ये कानूनी रूप से सही नहीं है। अगर 2 नवंबर को पार्लियामेंट में 66% एमपीज का सपोर्ट मिलता है तो रेफरेंडम 9 दिसंबर को होगा, जबकि जनरल इलेक्शंस 6 फरवरी 2027 से पहले करवाए जाएंगे। फिजी में आज से कोर्ट्स आईडीसी जो है ये शुरू होगा। आज दिन में 11 बजे से मैचेस शुरू हो जाएंगे। एचएफसी बैंक स्टेडियम सुबह में दिन में 11 बजे प्रीमियर डिवीजन पूल ए का एक मैच सेंगांगा और किरीबास के बीच खेला जाएगा। 1:30 बजे प्रीमियर डिवीजन का दूसरा सुपर प्रीमियर डिवीजन का पहला मैच नावुआ और नांदी के बीच खेला जाएगा। 3:30 बजे नसीनू रेवा से खेलेगा। 5:30 बजे बा की भिड़ंत लौटोका से होगी। 7:30 बजे ऑफिशियल ओपनिंग के बाद रात 8 बजे आज का अंतिम सुपर प्रीमियर डिवीजन का जो मैच है ये सुवा और लंबासा के बीच खेला जाएगा। उधर बेकर्स पार्क पर दिन में 11 बजे तालेवु नई तसीरी तावुआ का सामना करेगा। 1 बजे तव्यूनी सावुसावु से खेलेगा। 3 बजे नॉर्थलैंड तालेवु और मबुआ का मैच होगा। फीजीएफए एकेडमी ग्राउंड्स में दिन में 11 बजे सीनियर डिवीजन पूल बी का मैच राकी राकी और नंदोंगो के बीच होगा, जबकि 1 बजे ड्रकेती और लामी का मैच खेला जाएगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
4: सीधा अंदर आऊं
5: मैं लाऊं अपना ए गेम।
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: तो आज सुबह सुबह आपके लिए गुरु रंधावा के साथ साथ पिटबुल, इनका ये जो कोलैबोरेशन रहा आपके लिए हम पेश कर रहे थे. इट वाज अ सिंगल रिलीज बट 2019 में ये गाना काफ़ी चला था. आज चार्ट बस्टर में आपके नाम हमने इसे शामिल किया. फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, इट्स 30 मिनट्स आफ्टर 6 नाउ और ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा. आज जो खबर आपके लिए लेकर आए हैं, इट्स फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम बॉलीवुड, लेकिन खबर जो है ये मिली है दैट पति पत्नी और पंगा, इसका एक नया सीज़न जो है ये शुरू होने वाला है. कलर्स का एक रियलिटी शो है जहाँ पर रियल लाइफ जो पार्टनर्स होते हैं या हस्बैंड वाइफ्स होते हैं ये इस शो में हिस्सा लेते हैं एंड उनके साथ कुछ चैलेंजेस किए जाते हैं, फन चैलेंजेस इन फैक्ट टू कीप इट एंटरटेनिंग. मुनावर फारूकी और सोनाली बेंद्रे, काफ़ी अलग सा कॉम्बिनेशन है बट दीज आर द टू होस्ट ऑफ द शो. अपेरेंटली जस्ट फ्यू आवर्स अगो ये खबर आई है कि पति पति और पंगा के सीज़न 2 के सेट्स पर एक बहुत बड़ी आग जो है ये लगी लेकिन समय रहते इसे काबू में कर लिया गया. सो नो वन गॉट हर्ट, लेकिन काफ़ी बर्बादी जो है ये हुई है सेट्स पर.
1: ओके, दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस के कुछ परिणाम आपको दे दें, रिजल्ट्स दे दें आपको कि क्या कुछ हो रहा है. दृश्यम द कंक्लूजन, इनका जो रिकॉर्ड है या करियर रिकॉर्ड जो है ये बनाया है अजय देवगन की इस नए थ्रिलर ने फॉर हिज बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड.
0: ओके,
1: 272 करोड़ वर्ल्ड वाइड.
0: वाओ,
1: दैट्स ये जो 272
0: अजय देवगन के करियर की बिगेस्ट ओपनिंग.
1: हाँ,
0: अच्छा, मतलब जितनी फिल्मों में उन्होंने अभी तक काम किया है उन सभी फिल्मों में से ये फिल्म की पहली ऐसी फिल्म है जिसकी इतनी बड़ी ओपनिंग रही है.
1: इतनी बड़ी ओपनिंग जो है ये मिली, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो लिखा तो वही है
0: जी.
1: एंड आई थिंक ये जो दृश्यम द कंक्लूजन है, आई वाज रीडिंग ए रिव्यू बाय सुनंदो.
0: ओके,
1: सुनंदो जो है शायद गए थे इस फिल्म को देखने के लिए. उन्होंने कहा कि जनरली क्या होता था कि अगर साउथ से कोई फिल्म एडेप्ट करके बनाई जाती है
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड फेल हो जाता है.
0: हाँ,
1: फिल्में अच्छी होती हैं लेकिन लेकिन दिस टाइम अराउंड उन्होंने कहा है कि दृश्यम द कंक्लूजन इज above and beyond what
0: Mohanlal ji ki jo Drishyam thi.
1: Yeah.
0: But another thing that I read about the movie was ki there is no comparison. Mohanlal,
1: comparison nahi hai.
0: Nahi, let me complete first. Ki Mohanlal ji ne jo Drishyam 3 ki thi aur jo Ajay Devgan wali Drishyam 3 hai, inka koi connection nahi hai ki kahani is different.
1: Yeah.
0: There is a totally different story and this is a totally different story. That's why.
1: Bilkul sahi. Story different hai. I think Ajay Devgan ne bhi
0: ise clarify kiya tha. Yes,
1: but at the same time उन्होंने जब जाकर देखा तो मैं भी जिस तरह से फिल्में जो बनाई गई हैं साउथ और बॉलीवुड में उनको उन्होंने देखकर कहा होगा कि यू नो
0: एग्जीक्यूशन बिट को लेकर.
1: हाँ,
0: कि
1: अजय देवगन और बॉलीवुड हैज एक्चुअली यू नो फाइनली मैनेज टू डू दैट. सो 272 करोड़, न्यूजीलैंड $50.6 million.
0: वाओ, नाइस यार.
1: हनुमान अंश क्यूमुलेटिव वर्ल्ड वाइड जो है इसका इनकम 419 करोड़ इंडियन रुपीज हो चुका है.
0: वाओ,
1: दैट्स 77.8 न्यूजीलैंड मिलियन डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स न्यूजीलैंड.
0: ओके,
1: और तो ये कुछ खबरें जो है बॉक्स ऑफिस की आ रही हैं. वहीं पर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल, इनकी फिल्म तू है मेरी किरण, इसका ऑफिशियल ट्रेलर जो है ये आज प्रीमियर होने को है.
0: वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा है, कमाल का है कि इतने अच्छी बिजनेस जो ये फिल्में कर रही हैं, पीपल अप्रिशिएटिंग इट एंड ऑफ कोर्स व्हाटएवर द एक्सपीरियंस हैज़ बीन सो फार, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कभी कभी फिल्म जो है इसमें बड़े स्टार्स का होना, कहानी का बड़ा होना, या फिर यू कह सकते हैं कि ग्रैंड मूवी जो है व्हेन द ट्रेलर लॉन्चेस, उस तरह का फील ज़रूरी नहीं है बिकॉज सर्टन मूवीज़ जो है वर्ड बाय माउथ से भी काफ़ी बढ़िया काम करती है एंड हनुमान अंश इज़ वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनारियो. तो चलिए इधर और भी कुछ डिटेल्स आपके साथ हम ज़रूर शेयर करते हुए चलेंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा. पर फिलहाल के लिए आपको ये हम याद दिला दें कि ऑन द ब्रेकफास्ट शो थोड़ी देर बाद आज यानी कि 6th of October इसके बारे में बातें करेंगे, क्या कुछ स्पेशल आज के दिन मार्क किया जा रहा है.
2: Fragrance and cosmetics clearance sale.
3: A high of 19, fine spells on a mostly cloudy day. Southwestern motorway, if you're travelling southbound, we've got a crash just after Wormsley Road, off-ramp blocking the right lane in that area. Quite heavy there. But otherwise, the motorway's looking okay. Southern, just building south of Manukau, slow Takanini to Manurewa, 22 minutes Manukau to town. Northwestern, 18 in from Massey, it's fine. And Northern, mostly okay, just starting to slow.
2: Clearance sale this Saturday. Sacred Heart College, Glendowie, from 9 a.m. while stocks last.
4: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
5: No, particularly justice to you.
6: Mujhe justice nahi, badla chahiye.
4: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
7: Is baar khatra kab, kaise aur kahan se aayega, batana mushkil hai.
4: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
7: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
8: With BNZ Rapid Save, your money gets the salary it deserves. In the past year, Rapid Save paid out more interest per dollar saved than any other major bank. So give your money a pay rise, make it go to work. Because if your money's not collecting more interest, it's collecting less. Open a BNZ Rapid Save account today. Bank of New Zealand. Let's find a way. Based on advertised rates for personal savings accounts available to customers age 18 years and over with the other major NZ banks. T's and C's and fees apply.

0: When you've got roads, rain and traffic, you get potholes.
1: Oh man, potholes are the worst.
0: Yes, we know. That's why we have the Auckland Council Pothole Promise.
1: Huh, how does it work?
0: Well, someone alerts us to a pothole via the website. Then our crews head out, spot the pothole, catch it and release it somewhere where it won't be a nuisance.
1: Really?
0: No. We fill them with an approved asphalt premix, usually within 24 hours. It's how we keep the city moving. Search Pothole Promise. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
2: Bollywood ke sabse bade hit gaane. Azara le le tum
3: aza. Hum, playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja, jahan par abhi 24 minutes away from 7 AM we are. Right now, breakfast ketchup aapke liye likhe aa rahe hain. Maine kaha tha na ki aaj karenge ketchup 6th of October ke saath. Kya kuch aaj mark kiya ja raha hai? What's so special about today? Ye charcha aapke saath hum zarur karenge.
6: सबसे पहले आज अगर देखें कुछ important days जो mark किए जा रहे हैं ये अगर देखें तो USA में और उसके साथ मेक्सिको में आज क्या बोलते हैं उसको टाको डे
5: टाको हाँ
6: हाँ टाको डे मार्क किया जा रहा है कई एशियन कंट्रीज में आज नेशनल नूडल्स डे ये सेलिब्रेट किया जा रहा है
5: नाइस
6: एंड वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे ये आज मार्क किया जा रहा है और इसके अलावा आज है ट्रांसफर मनी टू योर डॉटर डे
5: ओह व्हाई बट Is yeah. it like just ऐसे ही randomly?
6: हाँ ऐसे ही.
5: Okay, that's interesting.
6: And United Kingdom में interestingly आज Beja Day ये mark किया जाता
5: Beja
6: है.
5: Beja क्या होता है?
6: Beja is an animal ना.
5: Oh, okay.
6: Have you seen Beja?
5: नहीं.
6: I think अभी हाल ही में मैं इनके बारे में National Geographic Channel पर देख रहा था.
5: That's how you know.
6: Yeah, and I didn't know a lot of things कि कितने खतरनाक है ये
5: oh, really?
6: ये कभी हार नहीं मानते ये कभी पीछे नहीं हटते
5: ये तो नेवले जैसे दिख रहे हैं बट उनका स्किन कलर थोड़े डिफरेंट
6: है हाँ
5: बट लुक्स लाइक अ नेवला
6: या एंड इवन चाहे शेर हो चीता हो कोई भी हो दे डोंट रिट्रैक्ट
5: सो दैट्स द गुड क्वालिटी अबाउट देम मतलब वो किसी से डरते नहीं है
6: बिल्कुल नहीं डरते
5: दैट्स नाइस या
6: हां आज है फ्रूट एट वर्क डे हैव सम फ्रूट्स
5: Nice.
6: Today, ये सारी चीजें मार्क की जा रही हैं और आपको तो पता ही है कि ये जो वीक है वर्ल्ड एनिमल वीक मार्क किया जा रहा है और इसके अलावा इंटरनेशनल प्लाज्मा अवेयरनेस वीक और मेंटल इलनेस अवेयरनेस वीक ये सारी चीजें जो है ये भी मार्क की जा रही हैं बर्थडे क्यों अगर देखिए आज के दिन जन्म हुआ था म्यांग चेंग और इसके अलावा संजय मिश्रा
5: इनका भी बर्थडे आज ओह नाइस
6: और आज के दिन जन्म हुआ था विनोद खन्ना जी का भी
5: ओके सो देयर यू गो इनके साथ अगर आज आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं डू लेट अस नो आपको बस हमारे पास अपनी बर्थडे ग्रीटिंग्स टेक्स्ट करने हैं और सेंड करना है 5599 पर एंड अगले घंटे आपको हैप्पी बर्थडे हम जरूर विश करेंगे फिलहाल चलिए बारी है कि आज आपके लिए हम लेकर आया हमारा पहला सवाल जिसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं और हमें बता सकते हैं व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू जवाब देने के लिए सिर्फ 4 मिनटों का समय आपको मिलेगा द क्वेश्चन इज आज एक एक्ट्रेस का नाम बताएंगे और आपको बताएंगे कि एक पर्टिकुलर मूवी में इन्होंने एक टाइप ऑफ कैरेक्टर जो ये प्ले किया था फ्रॉम अ प्रोफेशन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन शी प्लेड ओ ही प्लेड और उस हिसाब से आपको हमें बताना है फिल्म का नाम जैसे रिमेम्बर हमने एक बार किया था करीना कपूर एज अ डॉक्टर एंड देयर वर सो मेनी आंसर्स टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन तो उसी तरह से आज आपको एक ऐसी फिल्म का नाम हमें बताना है जिसमें कैटरीना कैफ नजर आई थी एज अ पॉलिटिशियन कैटरीना कैफ एज अ पॉलिटिशियन लेट्स सी
6: आई थिंक आई हैव सीन दिस मूवी बस नाम नहीं याद आ रहा है
5: आई थिंक कि काफी लोगों को पता होना चाहिए बिकॉज व्हेन दिस पर्टिकुलर मूवी रिलीज्ड तो पॉपुलर बहुत हुई थी एंड ऑफ कोर्स फिल्म के कॉन्टेंट की वजह से भी और कैटरीना कैफ और साथ में एक उनके को एक्टर थे इस फिल्म में उनके वजह से भी फिलहाल अपने आंसर्स आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं BF लिखे सबसे पहले फिर आंसर फिर नाम और सेंड कर दे 5599 पर कैटरीना कैफ एज अ पॉलिटिशियन कौन सी फिल्म ये हो सकती है
2: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Traffic. Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
2: Sunny patches today, plenty of cloud to a high of 19 degrees. Southwestern Motorway southbound got a crash just after Walmsley Road off-ramp, blocking the right lane. Quite heavy at the moment southbound from Queenstown Road to Mangere Bridge. Southern, 28 minutes, Manukau to town, slow on and off, Papakura to Mount Wellington. The northwestern, 24 in from Massey, slow St Luke's to the city. And northern 18 from Constellation, slow there to Waito Valley.
1: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
3: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
4: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
5: Nolemi's massive sellout is in its final days. Massive deals on thousands of products from leading brands. TVs, whiteware, computers, smartphones, small appliances, plus loads more priced to sell out. Big brands, hot prices, end to end stay. Conditions apply, only at Nolemi.
6: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2. 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
7: Get in the loop with ANZ to earn cash back. So when you update your wardrobe,
8: gorgeous,
7: money loops back.
8: Gorgeous.
7: Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
9: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
9: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
11: अभी देखिए 12 मिनट रह गए हैं 7 बजे में ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और आप में से कुछ लोगों ने अपने आंसर्स जो हैं ये भेजे हैं हमारे पास इसके लिए थैंक यू सो मच रोनल्ड हैं साथ में कृणाल हरमिलाप अनमोल सनी हैं और इसके अलावा योगी हैं जीनत जैस और राहुल और बॉबी मान
12: हाँ थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए और इधर हमने कहा था ना कि आज हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे आपको बिकॉज एज यू नो देर आर द अदर थिंग्स गोइंग ऑन एज वेल एंड अपॉर्चुनिटी आपके पास भर भर कर है कि आप भी हमारे साथ विजेता बने एंड $5,000 में से अपना शेयर ऑफ प्राइस जो है ये आप जीत सके क्योंकि दिस दिवाली वी आर ब्रिंगिंग टू यू फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून
11: जिसमें जैसे आपने कहा टोटल ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस जो है ये जीतने की अपॉर्चुनिटी है आपके पास 5 लकी विनर्स होंगे ऑन द 30th ऑफ अक्टूबर जिनका नाम जो है ये ड्रॉ किया जाएगा और ये जो 5 इनाम हैं उनमें अगर देखें तो कई चीज़ें जो हैं ये आप जीत सकते हैं $1,000 कैश फॉर्च्यून की ओर से आप जीत सकते हैं और इसके अलावा बाकी के जो इनाम हैं उनकी उनके बारे में अगर हम जल्दी से आपको बताएं तो $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर इनडेलिबल होम्स की ओर से
12: राइट
11: $1,000 होम डेको या फर्नीचर वाउचर हैरिंगटन लिविंग की ओर से
12: ओके
11: एनजेड पीएमआई की ओर से $1,000 माइटर 10 के वाउचर्स आप जीत सकते हैं और लॉजिक फाइनेंस की ओर से $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर्स सो कैश ग्रोसरीज,
12: फ्यूल,
11: फ्यूल, होम एंड लिविंग या फर्नीचर जो आप कहना चाहें, और साथ में DIY या फिर जो कुछ
12: गार्डन सप्लाईज वगैरह जो माइटी 10 में तो बहुत सी चीजें मिलती है.
11: सो सब कुछ हमने आपके सोर्ट आपके लिए सोर्ट आउट कर दिया है. ऑल यू गॉट टू डू इज
12: Listen. सबसे जरूरी चीज तो आपको ही करना है, बिकॉज वेन यू लिसन देन यू नो कि कब क्या कैसे करते हुए आप कॉम्पिटिशन में पार्ट लेकर अपने लिए मौका पा सकते हैं टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली, ओनली ऑन हम 104.2 FM एंड ऑफ कोर्स अगर रोवा के जरिए आप हमारे साथ जुड़े हैं तो. फिलहाल चलिए आज हमारे साथ ऑन द ब्रेकफास्ट शो क्या कुछ जीतने का मौका रहेगा ये हम आपको बताएंगे जरूर, बट फॉर नाउ ये अपॉर्चुनिटी आपको हम दे रहे हैं और इसके तहत हमने कहा कि हमें बताइए एक ऐसी फिल्म का नाम जिसमें कैटरीना कैफ ने किरदार प्ले किया था ऑफ अ पॉलिटिशियन, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू गॉट इट करेक्ट. आरक्षण फिल्म में कैटरीना कैफ नहीं थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन बाकी जो जितने लोगों ने हमारे पास अपने आंसर्स भेजे हैं इज राजनीति, दैट इज द करेक्ट आंसर दैट वी वर लुकिंग फॉर. राजनीति ये जो फिल्म है ये मेरे ख्याल से आई थी 2010 में. देर वर लॉट ऑफ एक्टर्स जिन्होंने इस फिल्म में काम किया था, फ्रॉम अजय देवगन टू नाना पाटेकर टू रणबीर कपूर, मनोज बाजपेयी, सैरा थॉम्पसन, नसीरुद्दीन शाह, अर्जुन रामपाल एंड ऑफकोर्स कैटरीना कैफ एज वेल. तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये मूवी, आप ज़रूर इसे चेकआउट कर सकते हैं. 2010 में आई थी, मतलब अभी से करीबन
11: 16 साल पहले.
12: थैंक यू. चले अब बारी है आज के हमारे पहले थ्रोबैक की, इसका मजा उठाते हैं और साथ ही साथ याद दिलाते हैं कि सुनते रहिएगा कब और कैसे आपको पार्ट लेना है फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में.

0: finance experience, call 0800-634-234.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
3: Good morning, kia ora, namaste, and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. This is the Breakfast Show with Vijay and Pooja. Morning Madness, aapke liye hum shuru karne ja rahe hain. Ab, jitne bhi log hamare saath abhi bhi shamil hue hain, once again, a very good morning. Aap sabhi ka special swagat hai, welcome hai, aaj ke hamare is safar mein.
4: इस सफ़र में तमाम चीज़ें जो है ये होती हैं और कभी कभी यू नो यू सिट डाउन एंड थिंक या फिर ऐसे ही मन में एक ख्याल आ जाता है कि जो हम करने आए थे क्या आज वो हुआ.
3: एक्चुअली ये सोचना भी ज़रूरी है. हाँ. क्योंकि अगर आप ये सोचोगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि आप अपनी मंजिल के कितने करीब हो और कितना मेहनत आपको करना है, कितने एफर्ट्स और डालने हैं.
4: तो उन सभी चीजों पर गौर करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. आइए इस घंटे की शुरुआत बातें करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम से बहुत सारे लोगों को काफी पसंद है. यू नो अपने मील्स में हम इसे इंक्लूड करते हैं. अच्छा? कई लोग ब्रेकफास्ट में, कई लंच में, कई ऐसे ही सैलेड के साथ, बड़े वाइट में भी. एंड इट्स एवोकाडो.
3: ओके,
4: एवोकाडो को हिंदी में क्या कहते हैं?
3: मुझे नहीं पता. I have no idea. ये एवोकाडो हिंदी जैसा साउंड नहीं करता ना, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ हिंदी वर्ड. लेकिन ऐसा कोई शब्द जैसे जहन में आता भी नहीं कि एवोकाडो का हिंदी का नाम भी होगा.
4: तो बताओ ढूंढ के.
3: अच्छा, मैं गूगल कर सकती हूँ.
4: नहीं, बाकी लोग भी बता सकते हैं, कोई हेल्प कर सकता है. आपको गूगल नहीं करना है. यू आर नॉट अलाउड.
3: नहीं, मैं फिर भी गूगल करूंगी, बट मैं किसी को बताऊंगी नहीं कि क्या है. ठीक है,
4: एवोकाडो को हिंदी में क्या कहते हैं ये आप हमें बताइए. एंड आपको पता है कि दुनिया में वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज्यादा एवोकाडो जो है ये कंज्यूम किया जाता है?
3: नो, मैक्सिको.
4: नो, मैक्सिको.
3: नहीं नहीं, मैंने पहले नो इसीलिए बोला बिकॉज एवोकाडो यू नो काफी जगह पर वर्ल्ड वाइड फेमस है. बट मैक्सिको आई थिंक व्हाई, बिकॉज मैक्सिको से ग्वाकामोली की शुरुआत हुई थी ना.
4: तो दैट डजंट मीन कि मैक्सिको सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है.
3: मैं गलत हो सकती हूँ, पर आई डोंट नो, मैं तो ग्वाकामोली के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ. बताइए क्या, कौन सी कंट्री है?
4: अगर आप कह रही हैं मैक्सिको तो वो आंसर इनकरेक्ट नहीं है.
3: अच्छा, सी,
4: मैक्सिको इज द लार्जेस्ट consumer of avocados in this country, in this world. Mexico jo hai 2024 global market data ke mutabik Mexico ne 1.6 million tons of avocado consume kiye the.
3: Whoa. 1.6 million tons of avocado ek saal mein. That is interesting yaar.
4: United States second spot par 1.3 million tons.
3: Very nice.
4: And third कौन सी country होगी?
3: Third? I have no idea.

0: नहीं भी खाते. Sometimes you get avocados quite cheap, लेकिन sometimes they're very expensive. और avocados से एक परेशानी भी है, उनको खरीदने जाओ ना तो जब आप लेने जाते हो आपको लगता है अच्छा अभी सही है ले लेंगे खा लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलता, आप लेकर जाकर घर पर रखते हो शायद एक दिन निकल जाता है और वो इतना पिलपिला सा हो जाता है खाने का दिल नहीं करता. बट एवोकाडोस को खरीदने का एक ट्रिक है, आई डोंट नो वे आई लर्न इट फ्रॉम, बट जब भी आप एवोकाडोस लेने जाते हो उनको आप ऐसे दबा दबा कर मत चेक करो, यू आर स्पॉइलिंग द एवोकाडोस. वैसे भी द अदर वे दैट यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि एवोकाडोस आपके लिए अच्छे हैं या नहीं is when you hold it and वो आपको soft feel हो, don't मतलब उसको क्या बोलते हैं
1: दबाओ मत
0: don't दबाओ it just hold it and आप पता चल जाएगा आपको कि वो soft है enough कि नहीं. and the other thing is कि जब आप उसका top देखोगे head part देखोगे तो जब वो उसे हम tree से pluck करते हैं तो एक छोटा सा उसके ऊपर वो crown रहा रह जाता है उसका. so वो अगर आप remove करोगे you'll see it कि actually में अंदर avocado का हाल क्या है. if it's dark and rotten तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे like उसका color जो है grey dark हो जाए या फिर something rotten जैसा दिखे आपको brown हो जाए तो वो खराब हो, like it's खराब है.
1: It's dark खराब है.
0: हाँ, वो मत लेना. लेकिन अगर आप वो crown remove करते हैं you see it's green and nice, it looks fresh ऊपर, तो you know कि avocado अच्छा है अंदर and then you buy that one. that's how I buy my avocados.
1: okay. So avocado, how do you like your avocados?
0: Just like that. मेरे को उस पे कुछ नहीं चाहिए. Like नमक कभी कभी, otherwise just plain avocado.
1: Okay. Nice.
0: मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे.
1: आप बताइए कि avocado को हिंदी में क्या कहते हैं? And how do you? कई कुछ लोगों को पसंद नहीं है ना क्योंकि.
0: मुझे शुरू में नहीं पसंद था. But then I don't know, I started liking it slowly.
1: Yeah, मुझे भी शुरू में पसंद नहीं था. शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था एवोकाडो के बारे में.
0: मुझे भी नहीं पता था.
1: And after I tasted
0: guacamole. Then आपको अच्छा लगा. फिर उसकी चटनी भी खा ली हमने तो.
1: That's also very nice.
0: Yeah, Indians are very talented ना. किसी भी चीज की चटनी बना देते हैं. But anyways, आप भी अपने messages.
1: इंसान की चटनी बना देते हैं. ये तो एवोकाडो है.
0: आप भी अपने messages जरूर हमारे पास भेजिए. मुझे तो पता चल गया कि एवोकाडो को हिंदी में क्या कहते हैं. But have you got any ideas? If yes, 5599 पे text करें. थोड़ी देर बाद आज के राशि vibes आपके लिए हम लेकर आएंगे.

0: 4234.
1: Rashi Vibes.
2: सबसे पहले मैं यानी एरीज, आज जो गाइडेंस आपको आपके काम में मिलेगा उससे फायदा होगा। बिजनेस थोड़ा स्लो हो सकता है और फैमिली में बड़ों के आशीर्वाद से आपके रुके हुए काम जो है ये बनेंगे।
3: उसके बाद वृषणी टोरस, आपके लिए कहा गया है कि टुडे कॉल्स फॉर अ लिटिल पेशेंस, और किसी की भी अर्जेंसी जो है ऐसी ना हो कि आपको अपनी चीजों को पीछे रखना पड़े, अपने कामों को बाद में करना पड़े, इसीलिए पेशेंस से काम लीजिए और खुद पर ध्यान दीजिए।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज कोलीग्स ऑफिस में आपको काफी सपोर्ट देंगे और बिजनेस में आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ेंगे एंड यू विल बी गेटिंग गुड रिटर्न्स। फैमिली एनवायरनमेंट काफी अच्छा रहेगा और अचानक रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है।
3: कर्क ने कैंसर, आपके लिए बताया जा रहा है कि नौकरी के मामले में आपकी जो काम करने के तरीके हैं इनके काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको हासिल होंगे इनकी वजह से, और आपकी तारीफ भी होगी। बिजनेस के मामले में देखा जाए तो आज कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। आज आपके लिए कहा गया है कि आर्थिक मामलों में यानी फाइनेंशियल मैटर्स में समस्या से बेहतर आपको या किसी भी समस्या का बेहतर सोल्यूशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि आज का जो ये दिन है फाइनेंशियली यूड बी वेरी नॉलेज्ड, और क्या बोलते हैं उसको,
2: मुझे क्या पता भाई, आप बता रही हो,
3: अवेयर दैट वर्ड, हाँ, तो आप काफी अवेयर रहेंगे अपने एनवायरनमेंट से कि आपके आसपास क्या हो रहा है, जिसकी वजह से यू विल बी मेकिंग दीस वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट फाइनेंशियल डिसीजंस।
2: सिंह यानी लियो, आज झगड़ा झंझट से, बहस से दूर ही रहना समझदारी है। बिजनेस डील्स में रश ना करें, अच्छी तरह से इवेलुएट करें, पढ़े समझे सारी चीजों को, घर की छोटी बातों पर तूल ना दे, पीस मेंटेन करें, और अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो है इन पर कंट्रोल बहुत जरूरी होगा,
3: और साथ में हो गया ना आपका। कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि आपके जो आइडियाज हैं, जिस तरीके से आप काम करते हैं, इसकी वजह से आपका जो वर्क प्लेस है, जो वर्क एनवायरनमेंट है, यहाँ पर जो बाधाएं आपके लिए खड़ी भी होंगी, इन्हें बड़ी आसानी से आप दूर कर पाएंगे। आपके लिए बताया जा रहा है कि ये जो समय है अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान दें, इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, और इसकी वजह से राइट डिसीजंस आप लेते हुए अपनी तबीयत को जरूर सुधार सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं।
2: तुला यानी लिब्रा, आज आप बड़े मिलनसार हैं, तो आज ऑफिस में आपकी इस मिलनसारिता को, आपकी बिहेवियर को काफी प्रेज किया जाएगा।
3: मिलनसारिता,
2: हाँ,
3: वाह वाह।
2: बिजनेस में काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आप देखेंगे, मुनाफा होगा, परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा।
3: वृश्चिक ने स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि आज कुछ निजी संबंधों के मामले में यानी कुछ पर्सनल रिलेशनशिप्स के मामले में आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस जो है ये आ रहा है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स बोथ ऑफ यू हैव बीन पुटिंग इन। और साथ में आपके लिए ये भी कहा गया है कि पैसे के मामले में रास्ते खुल चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको आज जरूर मिलेंगी, जस्ट कीप योर आईज ओपन ताकि इन अपॉर्चुनिटीज का भरपूर फायदा आप उठा सके।
2: यानी सजिटेरियस, ऑफिस में आज केयरफुल रहें, अपने जो प्लान्स हैं उनको अंडर लॉक एंड की ही रखें तो अच्छा होगा, यानी इसे सीक्रेट बनाए रखें। बिजनेस एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करें, और आज आंखों में कुछ परेशानी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
3: और इसके बाद देखा जाए तो मकर यानी कैप्रिकॉर्न, नौकरी में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आप खुश रहेंगे रिजल्ट से, इनफैक्ट दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा, जिसकी वजह से यू'ड बी वेरी हैप्पी टुडे।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, आज बिजनेस सेक्टर में गवर्नमेंट से कुछ फायदा हो सकता है, फाइनेंशियली दिन मजबूत होगा, पैसे मिलेंगे, हेल्थ भी बढ़िया रहेगा।
3: और इसके बाद अगर देखा जाए तो फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है धार्मिक कामों में आज आपका मन बहुत लगेगा, और साथ में आप जो भी काम करेंगे इसमें सफलता हासिल करेंगे, इट फील लाइक की किस्मत आज आपके साथ साथ चल रही है। सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ आज आपने सवाल किया था, अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, लेकिन एडन ने पापाकुरा से मैसेज जरूर किया है कि ये अपने एवोकाडोस का मिल्कशेक बनाकर एंजॉय करते हैं, और एवोकाडोस को हिंदी में क्या कहते हैं आपने पूछा था, तो सही आंसर वुड बी माखन फल यानी बटरफ्रूट।
2: नाइस,
3: या सो देयर यू गो. आज कुछ और भी इंटरेस्टिंग जो डिटेल्स है ये आपके नाम हम करेंगे. इनफैक्ट आज आपको बताने वाले फ्यूल प्राइसेस के बारे में कुछ, और एक ऐसी मूवी के बारे में विच केम मेनी इयर्स अगो और बहुत ज्यादा चली थी ये फिल्म. इसका अब पार्ट टू भी अनाउंस हुआ है. इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, डिटेल्स आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे. बट डोंट फॉरगेट, दिस इज दैट आवर जहां पर आपको मौका देंगे हमारे साथ आज पार्ट लेने का फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में. और साथ ही साथ कमिंग अप नेक्स्ट सेलिब्रिटी अलार्म.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
4: Hey, ChatGPT. दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
5: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
4: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
5: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
4: बस इतना ही.
5: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा.
1: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्च्यून, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून.
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
7: Media Works complaints. How can I help?
8: Yeah. Hello.
7: Hi.
8: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
7: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
8: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
7: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
8: Great. Sing it to me.
9: Advertise with
10: Media Works.
9: New Zealand listens to us.
11: What could I be? A teacher? A scientist? A builder? But first I need a chance. A chance to feel safe. To learn. To believe in myself. That's why Barnardo's is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because their returns last a lifetime.
12: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuko.
1: Celebrity alarm.
3: 25 minutes after 7 और on the breakfast show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं morning madness. Celebrity alarm की बारी है आज. I'm quite excited for this celebrity's voice जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, और let's see क्या आप इनकी आवाज पहचान पाते हैं कि नहीं. Here we go.
14: ये तो होगा माया का दूर का रिश्तेदार जिसे माया आज तक नहीं मिली. कोई डिलक्स सेट का चिपकू, लेकिन ढूंढू कहाँ. हमारी फैमिली आर्कियोलॉजिस्ट ईला बेन को पूछता हूँ.
3: तो ये आवाज किसकी है आपको ये अनुमान लगाना है. आपको पता चला कौन है?
2: हाँ, फिर से सुनाइए।
3: अच्छा मैं फिर से सुनाऊंगी तभी पता चलेगा।
2: हाँ, हाँ।
3: और मैंने अभी जो सुनाया उसमें कोई आइडिया नहीं चला आपको?
2: नहीं।
3: दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए आपको सुनाते एक बार फिर से ये आवाज। लेट्स सी इफ यू कैन फिगर इट आउट कि ये आवाज किसकी है।
10: मुझे चार पांच जुला
3: नॉट दिस वन।
14: कोई तो होगा माया का दूर का रिश्तेदार जिसे माया आज तक नहीं मिली। कोई डिलक्स सेट का चिपकू, लेकिन ढूंढू कहाँ। हमारी फैमिली आर्कियोलॉजिस्ट ईला बेन को पूछता हूँ।
3: तो चलिए
2: ईला बेन तो भी घर पे हो गई ना।
3: नहीं नहीं, हमारी ईला बेन से नहीं पूछना है, ये कुछ और बोल रहे हैं। तो क्या आपने ये आवाज पहचानी? अगर हाँ, तो आप जल्दी से अपना आंसर हमारे पास सेंड कीजिए ना।
2: आप लिखें BF उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम और उसे हमारे पास भेज दें। आज देखें कितने लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं।
3: आई थिंक इट्स अ वेरी इजी वॉइस टू रिकॉग्नाइज।
2: आई डोंट थिंक सो।
3: है यार?
2: नहीं यार,
3: ये बहुत जाने माने हैं।
2: वो तो मुझे पता है जाने और माने हैं।
3: हाँ, और फिर ये जो जो कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था जिसका डायलॉग मैंने आपको सुना है ना, वे दिस कैरेक्टर वाज आल्सो क्वाइट पॉपुलर। डिपेंड्स हाँ कौन से लोग इस पर्टिकुलर शो को फॉलो करते थे, वो अलग बात है
2: जी।
3: एक बार फिर से सुनना है कि ऑल गुड?
2: अभी तो ऑल गुड।
3: ओके, तो चलिए आपको दे रहे हैं हम अनदर 4 मिनट्स और आपको अपने आंसर्स हमारे पास टेक्स्ट करने हैं। BF लिखना है सबसे पहले, फिर आंसर, फिर नाम, सेंड कर देना है 5599 पर। कमाल की बात यह है कि जब भी हम किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज सेलिब्रिटी अलार्म में प्ले करते हैं, नॉर्मली एक दो मैसेजेस तो आ ही जाते हैं, अभी तक एक भी नहीं आया। देखते हैं आज क्या होगा हमारी सेलिब्रिटी अलार्म का हाल।
15: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
16: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
17: मैं लाऊं अपना ए गेम।
15: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: 1-800-634-234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, फ्यूल मॉनिटर गेस्पाई के मुताबिक न्यूजीलैंड में 91 ऑक्टेन पेट्रोल की एवरेज कीमत $3.50 पर लीटर का पुराना रिकॉर्ड तोड़कर अब तक के सबसे ऊंचले स्तर पर पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 पर बैरल से ऊपर रहने और यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद से आई तेजी के कारण ऑकलैंड, वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च समेत पूरे देश में दाम बढ़े हैं। ISB बैंक के इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के साथ साथ न्यूजीलैंड डॉलर की कमजोरी के कारण फ्यूल इंपोर्ट करना और महंगा हो गया है। RNZ रीड रिसर्च पोल के मुताबिक 2020 के बाद नेशनल पार्टी गिरावट के साथ 25.9% पर पहुंच चुकी है, जबकि ग्रीन पार्टी 14.8% सपोर्ट के साथ काफी आगे आ रही है। लेबर पार्टी को भी नुकसान हुआ है और यह 30.8% पर आ गई है, जिससे अपॉर्चुनिटी पार्टी 5.5% के साथ दोनों ब्लॉक्स के लिए किंग मेकर की पोजीशन में उभर कर सामने आई है। प्रीफर्ड प्राइम मिनिस्टर की रेस में क्रिस हिपकिंस 21.9% ने क्रिस्टोफर लक्सन को 17.1% पर पीछे छोड़ा, जिनका नेट परफॉर्मेंस रेटिंग गिरकर नेगेटिव 23.7% हो गया है। पोल के तहत 53% से ज्यादा लोगों का मानना है कि देश गलत दिशा में जा रहा है, जिससे आने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए किसी भी ब्लॉक को स्पष्ट मेजोरिटी मिलना मुश्किल लग रहा है। किरिन कप के फाइनल में ऑल वाइट्स की हार कल रात जापान के खिलाफ टोक्यो में हुई। इस कंपटीशन में जापान की जीत न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-1 से हुई। न्यूजीलैंड की ओर से 32nd मिनट में बेन ओल द्वारा गोल बनाया गया था। इसके अलावा ODI सीरीज जीतने के बाद अब इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ कल से T20 सीरीज की शुरुआत करने जा रही है। पहला मैच कल सुबह 2:30 खेला जाएगा, जिस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। UEFA नेशंस लीग के जो मैचेस खेले जा रहे हैं, उसके तहत आज सुबह साइप्रस की जीत लेटविया के खिलाफ 2-1 से हुई। अभी थोड़ी देर बाद इटली टर्की से खेलेगा, रोमानिया वर्सेस स्वीडन, बोस्निया हर्जेगोविना वर्सेस पोलैंड, फ्रांस वर्सेस बेल्जियम, मोंटेनेग्रो वर्सेस अर्मेनिया, यूक्रेन वर्सेस हंगरी और नॉर्दर्न आयरलैंड का मुकाबला जॉर्जिया से होगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco. Hum. Accurate traffic.
5: Century Batteries. New Zealand's trusted battery.
6: Fine and cloudy today with a high of 19. Southern Motorway coming in. A crash block in the right lane after Takanini. Heavy there in Manurewa. Then slow from Monaco to the city. 35 minutes in from Monaco. Hour from Drury. Southwestern, a crash southbound after Wormsley has been sorted, but still heavy there. Northwestern, 35 in from Massey, heavy patches on and off from Te Aratu South. Northern, 22 from Constellation, slow there to the bridge.
5: From the school run to the weekend getaway, insist on Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: The shelves are filling up at Bunnings with brand new Bunnings rewards. Whether you're just popping in or stocking up for a project, a trip to Bunnings can make you feel more rewarded. Every tap, tape, bolt, barbecue, shrub, drill, door, paint or mop can all earn you Bunnings rewards. It's easy to keep track of. Simply download the Bunnings app, scan your Bunnings card and see your points stack. T's and C's and exclusions apply. Join Bunnings Rewards today.
11: Bunnings Warehouse.
5: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products.
12: These are some things you can achieve in one blood or plasma donation appointment. Visit nzblood.co.nz to book.
0: Commonwealth Vault aapke precious belongings ko rakhta hai safe aur secure. Gold, bullion aur precious metals ki value jab all time high pe hai, tab ye pehle se kahin zyada zaruri hai ki aapke assets theft aur natural disaster se protected rahein. Jab aap apne valuables Commonwealth Vault ko entrust karte hain to aapko milta hai peace of mind. Ye jante hue ki wo safe, secure aur protected rahenge. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
3: The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari koi branch nahi hai.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
3: Birthday greetings.
14: Iska birthday bhai?
15: Mera hi birthday hai, chalo line mein aa jao.
14: Happy birthday to you.
16: A very very happy birthday. आज यानी 6th of October को जितने भी लोग अपना birthday जहाँ के भी celebrate कर रहे हैं, हमारी ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं. Happy birthday, many many happy returns of the day जो है ये हम आपको wish करना चाहते हैं.
2: इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आज के इस स्पेशल डे पर आर्यन आज आप अपनी सालगिरह मना रहे हैं. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. 17 साल के आप हो रहे हैं. खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. अ वेरी हैप्पी बर्थडे. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.

0: 1-800-634-234.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. This is Morning Madness. और इधर चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं you know the result as to what has happened to आज का हमारा celebrity alarm. I actually thought कि easy होगा but जिस तरह के messages आए हैं उससे पता चलता है कि इतना easy नहीं है. रोविन ने वैसे रवि किशन कहा था आवाज सुनते हुए but वो सही जवाब नहीं है.
2: okay.
1: स्मृति ने इसके अलावा जवाब दिया है और साथ में गुंजन. बस तीन लोगों के answers आए हैं. I didn't think it would be this difficult कि सिर्फ तीन लोग ही कोशिश करेंगे but ऐसे करते हैं मैं एक बार फिर से आपको आवाज सुनाती हूँ फिर कुछ क्लूज भी देंगे. ठीक है. सो हियर वी गो. लिसन टू दिस पर्टिकुलर ऑडियो वेरी केयरफुली.
3: कोई तो होगा माया का दूर का रिश्तेदार जिसे माया आज तक नहीं मिली. कोई डिलक्स सेट का चिपकू लेकिन ढूंढू कहाँ. हमारी फैमिली आर्कियोलॉजिस्ट ईला बेन को पूछता हूँ.
1: तो ये कौन है जिनकी आवाज अभी भी हमने आपको सुनाई. इतना आपको बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑडियो है ये एक बहुत ही पॉपुलर शो से हमने लिया और टेलीविजन पर ये आता था आई थिंक अर्ली 2000s में और उस टाइम पर काफी चला था. इसका सीजन 2 भी आया. डिडंट डू दैट वेल एज द सीजन 1 डिड बट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर गॉट क्वाइट पॉपुलर. लेकिन जो शख्स जिनकी आवाज हमने आपको सुनाई अगर इनके बारे में आपको हम बताएं तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये दरअसल 90s, 80s के ज़माने से या लेट 70s के ज़माने से ये फिल्मों में नज़र आए हैं. और उसके बाद चलकर इन्होंने कई सारे किरदार जो है ये प्ले किए. दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसका डायलॉग हमने सुनाया बीइंग वन ऑफ दोज लव्ड कैरेक्टर्स एक टेलीविजन शो के लिए इन्होंने बनाया था. और उसके साथ साथ इसके अलावा आपको बताया कि इनके बारे में देयर वाज दिस अदर कैरेक्टर जो इन्होंने एक फिल्म में प्ले किया था. और उस फिल्म में फराह खान ने इनको डायरेक्ट किया था. शाहरुख खान के साथ इनके कई इंटरेस्टिंग सीन्स थे और उस फिल्म में भी इनको काफ़ी पसंद किया गया था फॉर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर दैट ही हैड अपेरेंटली प्लेड. इनके बारे में एक और ही चीज़ आपको बताना चाहेंगे. इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट बट ये अब हमारे बीच नहीं है. और इनके इनका जो देहांत है ये अक्टूबर महीने में ही हुआ 2025 में. 25th ऑफ अक्टूबर को इनकी मृत्यु जो है ये हुई थी.
2: तो अब कोशिश करें बताएं कि ये कौन हो सकते हैं. BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आपको हमारे पास भेजना है और बस अगले गाने तक का ही टाइम है आपके पास.
1: बिल्कुल. तो जिस इस गाने के ठीक बाद अगर किसी ने सही जवाब दिया ऑल गुड नहीं दे पाए तो फिर रिवील ही कर देंगे हम.
4: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: और एक स्पेशल चाय.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Accurate traffic.
3: Ribble Sports Boot Drive.
4: High of 19, fine and cloudy today. Southwestern, a crash southbound after Wormsley sorted, but slow going southbound at Mount Roskill and northbound at Whitty. Southern, a crash after Takanini shifted clear of lanes, but it's heavy at Papakura to Manurewa, slow Papatoetoe to the city, 40 minutes in from Monaco. Northwestern, 40 from Massey, heavy on and off from Te Aratu. Northern, 22 from Constellation, slow there to the bridge.
3: Donate your pre-loved boots in store and get 20% off a new pair of shoes at Ribble Sport.
5: Coffee? The usual?
6: How about the unusual?
7: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
8: At Bunnings, there's now a rewards program for everyone. When you shop for your home, earn points with Bunnings Rewards. Or you can turn your eligible business spend into rewards with PowerPass Pro Rewards. So join today and get rewarded however you shop at Bunnings. T's and C's and eligibility applies.
9: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और professional, confidential और free emotional support देते हैं. Call Asian Helpline Free on 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला danger में है, तो 111 पर call करें.
10: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं, उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं.
11: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, व्हिच इज 0800-564-424.
1: For show with Vijay and Pooja.
12: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी cute है.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
13: तो चलिए आज का हमारा सेलेब्रिटी अलार्म जो है, कुछ लोगों ने और अपनी मैसेजेस हमारे पास भेजे, बट आई थिंक व्हाट आई एक्सपेक्टेड वैसा रिजल्ट तो खैर आज नहीं मिला, बट नेवरदलेस चलिए आज हमारी जो सेलेब्रिटी रहे इन सेलेब्रिटी अलार्म, इनके बारे में आपको हमने बताना है. सो द करेक्ट आंसर टू आज का हमारा क्वेश्चन वॉज सतीश शाह, निशा, सोम और साथ में ज्योतिका एंड गुंजन और स्मृति. सिर्फ इन लोगों ने सही आंसर्स दिए, दो तीन गलत आंसर्स जो है हमारे पास ज़रूर आए, बट शुक्रिया हमारे साथ पार्ट लेने के लिए आज के हमारे इस कंपटीशन में.
14: और साथ में ज्योतिका, अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए. एंड अभी वक्त हो रहा है ना,
13: हाँ, कि आपको हम पहला अपॉर्चुनिटी आज दे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हमारे साथ शामिल होकर इनाम जीतने का फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में,
14: जिसमें टोटल ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस हैं जो इस दिवाली आप जीत सकते हैं. उसमें आपका हिस्सा $1,000 लागत का इनाम हो सकता है. और आज सबसे पहले क्या आप जीत सकते हैं? आपको हम दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी टू विन $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 वाउचर्स, ऑल थैंक्स टू NZPMI. अपने प्रॉपर्टी के ट्रू वैल्यू को आप अनलॉक करें NZPMI के साथ, जो आपके लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं. फ्री साइट असेसमेंट के लिए उन्हें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0800-4NZPMI पर, या फिर www.nzpmi.co.nz विजिट कर सकते हैं. तो उनकी ओर से $1,000 वर्थ ऑफ माइटा 10 वाउचर्स आपको चाहिए. दैट अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट आपके घर पर, जो डेक बाकी रह गया था उस पर आपने पेगोला नहीं डाला था, या फिर घर के अंदर पेंटिंग जो है ये बाकी थी, व्हाटएवर इट मे बी,
13: फिर गार्डन रेडी करने के लिए भी आपको सामान अगर चाहिए, प्लांट्स लाने हैं, और फिर आपको भी अपना जो यू नो फ्लावर गार्डन है ये रेडी करना है, कुछ भी हो सकता है that you need it for, तो वो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
14: मुझे गिफ्ट करना है,
13: ये आपका डिसीजन है कि आप कैसे स्पेंड करोगे, बट अगर वो डिसीजन बनाना है आपको तो ये जीतना पड़ेगा, और जीतने के लिए आपको एटलीस्ट पार्ट लेना होगा. तो आज का हमारा सबसे पहला
14: You just didn't hear what I said, ना?
13: क्या?
14: You didn't hear.
13: आपको कि किसी को गिफ्ट करना है?
14: नहीं.
13: Then?
14: I said मुझे गिफ्ट करना है.
13: Oh, you said मुझे? मुझे लगा आपको आपने कहा कि अगर किसी को गिफ्ट करना है. सुनाई नहीं दिया तो क्या ही बोलूं? But right now अब आपको हम दे रहे हैं 5 minutes का time and your time starts now. What you need to do is हमारे पास आपको text करना है NZPMI लिखकर. सबसे पहले ये याद रखे NZPMI ये आप टाइप करें. देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन दीज लेटर्स. एक साथ इन सभी लेटर्स को आप टाइप करें, देन स्पेस दीजिए और फिर अपना नाम लिखिए और हमारे पास सेंड करें. रिमेंबर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, जिसके लिए आप hum.over.nz विजिट कर सकते हैं. और ये याद रखें कि जब भी आप हमारे पास अपनी एंट्री सेंड करते टेक्स्ट करते स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स ऑल्सो अप्लाई. सो रिमेंबर अगर आप माइटर 10 के जो वाउचर्स है वो $1,000 ये जीतना चाहते हैं ऑल थैंक्स टू NZPMI, अब आप हमारे पास अपनी एंट्री सेंड कर सकते हैं. इन फॉर दैट NZPMI सबसे पहले लिखे, दैट्स द कीवर्ड, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और 5599 पर सेंड कर दीजिए इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में याद रहे आज के मौसम के बारे में कहा गया है कि क्लाउडी पीरियड्स तो रहेंगे ही और साथ ही साथ लिटिल बिट ऑफ शावर्स के भी चांसेस है। आज का सनसेट 7:30 PM पर होगा। टेम्परेचर राइट नाउ 10.3 डिग्रीज तक है। ओवरनाइट 7 डिग्रीज एंड हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है लेटर टुडे।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको। बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: तो इस दौरान आपके लिए हम लेकर आते हैं वो जानकारी जहां पर वी टॉक अबाउट समथिंग दैट्स ट्रेंडिंग और इससे डिटेल्स या इससे जुड़ी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो आज जो चीज़ ट्रेंड कर रही है इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, अपेरेंटली एक लिस्ट जो है ये सामने आई है और ये लिस्ट है ऑफ द एयरपोर्ट लाउंजेस जहाँ पर इन्हें रेट किया गया है। वर्ल्ड के टॉप 20 एयरपोर्ट लाउंजेस जो है इन्हें नेम किया गया है, रेट किया गया है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑकलैंड एयरपोर्ट का एक जो लाउंज है इट हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द टॉप 20 में से एक ऑन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। अगर हम आपके साथ जो पोजिशन शेयर करें जो इस पर्टिकुलर लाउंज को मिला है, वेल इट इज़ द 20th पोजिशन, बट इट इज़ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट जहाँ पर स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड बेस्ट इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट लाउंजेस 2026 में इसका नाम शामिल हुआ है। एंड इफ यू सी दैट तो ऑकलैंड में Sirata Lounge, if that's how it's pronounced, ये number 20 पर है।
3: Okay.
1: And this is the only airport lounge जो न्यूजीलैंड का अगर देखा जाए ये इस लिस्ट का हिस्सा बना है ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट लाउंजेस में से। So Sirata Lounge, it's quite trending right now after it has been part of this particular list. And top में अगर देखा जाए so I don't really know कि ये particular lounge जो है ये कहाँ पे है, but I'm trying to find out the details before I tell you कि exactly किस country में, किस city में है। और ये जो lounge है इसके बारे में मैं आपको बताएं, this is basically the Chase Sapphire Lounge by the club at LaGuardia Airport. Where is this airport?
3: मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं गया।
1: हाँ, ये काफ़ी interesting है। तो ये लाउंज जो है इस लिस्ट का नंबर वन है, इस लिस्ट में सबसे सबसे बेहतरीन लाउंज अगर किसी को माना जाता है तो, कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट जिस तरह से इसे लिस्ट किए गए हैं।
3: समझ गया।
1: तो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ऑकलैंड एयरपोर्ट का ये पर्टिकुलर लाउंज इस लिस्ट का हिस्सा बना है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट एक्सेस टू इट या फिर कभी आपने इसे अगर एक्सपीरियंस किया है तो। और इधर USA में इनफैक्ट दिस LaGuardia एयरपोर्ट जो है ये है और वहाँ पर इनफैक्ट क्वींस न्यूयॉर्क सिटी में ये एयरपोर्ट है और इसके चलते इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट लाउंज को नंबर वन पोजीशन जो है ये दिया गया है। सो राइट नाउ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है ये सामने आ रही है। थिंग्स आर ट्रेंडिंग ऑनलाइन एंड ऑफ कोर्स आपके लिए ट्रेंड पेट्रोल में डिटेल्स हम जरूर शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ द रश आवर और रश आवर में आज थोड़ी देर बाद आज का हमारा जो व्हाट्सएप टेक टॉपिक ये तो रहेगा ही, बट ये याद रखें कि मौका अभी भी आपके पास है हमारे साथ पार्ट लेने का।
3: किस में?
1: फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में। अभी हमने एक अपॉर्चुनिटी दी है ना,
3: अगली अपॉर्चुनिटी का आपको इंतजार करना है। सुनते रहना है 104.2 FM या फिर रोवा पर, क्योंकि किसी भी टाइम पर ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम आपको दे सकते हैं।
1: राइट, एंड बिफोर वी मूव ऑन याद दिला दे, दिवाली इज हियर एंड ब्रिंगिंग जॉय एंड एक्साइटिंग ऑफर्स। यू कैन सेलिब्रेट दिस दिवाली विद अ स्पेशल ऑफर फ्रॉम PFSL। Settle an eligible loan of $400,000 or more and take home a $250 worth of gift card. Plus, you go into a draw to win 50-inch TV. Make your dream home a reality with PFSL.

0: Future.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
3: MediaWorks complaints. How can I help?
4: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
3: Nice.
4: And you talked me into creating this funny character.
3: Great.
4: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
3: Are you?
4: Yes.
3: Are you Bobby the Baker?
4: Yes.
3: What's that thing you do again?
4: Stop it.
3: You bring the mouse.
4: Stop it.
3: I'll bring the pie.
4: Stop it, please.
3: Okay.
4: Yeah, sure. I might have three stores now, but Bobby's more famous than me.
3: So what's the problem?
4: My name's Bruce.
5: Advertise with MediaWorks.
3: New Zealand listens to us.
6: Bonjour, I'm Fun. You might remember me from the backpackers in Paddy. Look, we've had all kinds of fun over the years, right? Good, clean, harmless, kinky. But ever since you got a mortgage, you've ghosted me. That's why you need to talk to NZHL. Because we used to spend a whole paycheck buying festival tickets, and now you're using your holiday fun to paint the back fence. NZHL helps you to get ahead without giving up fun. Have a mortgage and a life with NZHL. Au revoir.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
2: What's your take?
3: चलिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. एंड व्हाट्स योर टेक टॉपिक में अगर देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमेशा हम लेकर आने की कोशिश करते हैं. बट टुडे आई केम अक्रॉस दिस वेरी इंटरेस्टिंग पोस्ट ऑन सोशल मीडिया और फिर मैंने सोचा कि अच्छा इसके बारे में कुछ पता करते हैं. लाइक इज़ इट जस्ट अ क्लेम और इज़ इट समथिंग जो हम एक सर्वे या रिसर्च के जरिए भी बैकअप कर सकते हैं. सो अपेरेंटली आई केम अक्रॉस दिस वेरी इंटरेस्टिंग पोस्ट विच रेड एज कि मेन जो होते हैं यानी कि आदमी जो होते हैं ये अक्सर दो बार सोचेंगे अगर उनको खुद के ऊपर पैसे स्पेंड करने होते हैं तो. लेकिन अगर किसी और के लिए जिनसे वो बहुत प्यार कर सकते करते हैं, प्रोबेबली उनके माता पिता हो, उनकी पत्नी हो, उनकी गर्लफ्रेंड हो या फिर उनके बच्चे हो, उनके ऊपर पैसे खर्च करने से पहले वो ज़रा भी नहीं सोचते. एंड अगर खुद के बारे में बातें करनी हो, जैसे कि कोई नया शर्ट हो जिसकी ज़रूरत हो उनको, या फिर कोई एक्सपेंसिव डिनर पर वो भी वंस इन अ वाइल जाना चाहते हैं, बट दे वुड नॉट डू दैट. इंस्टेड दे यूज़ दैट सेम मनी टू मेक समवन दे लव मोर हैप्पी. एंड जब मैंने ये पढ़ा आई कुड रिलेट टू इट बिकॉज आई वेंट बैक टू द फैक्ट जब मैं यू नो आई वॉज लिविंग विद माई फादर. तो मुझे पता है कि माई डैड यूज टू डू दैट अलॉट. देर वुड बी सो मैनी थिंग्स जिस मामले में शायद उनके भी शायद क्या ऑफकोर्स उनकी भी इच्छाएं थी, बट वो सारी चीज़ें वो पीछे रख कर ही वुड मेक श्योर कि हमारे उनके बच्चों के जो ज़रूरतें हैं या उनके जो वांट्स हैं विशेज़ हैं ये पूरे हो. सो आई सेड येस दैट इज़ ट्रू. आई हैव सीन इट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड देन आई गॉट मैरिड एंड देन आई सॉ द सेम पर्सन जिनके साथ मैं अभी हूँ कि वो भी ऐसा ही करते हैं यू नो कि लाइक उनकी कुछ चीज़ें हों, मतलब आपकी बातें करी मैं आपकी कुछ ज़रूरतें हों या फिर समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी यू विल पुट इट बैक बट यू वुड एक्चुअली मेक श्योर कि बाकियों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए. एंड अपने आप को आप लास्ट में रखोगे व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग मनी ऑन सर्टेन थिंग्स जो आपको चाहिए पर वो आप पहले नहीं करोगे. एंड लाइक वाइज आई हैव सीन माय डैड डू दैट अ लॉट. तो मुझे ये कहीं ना कहीं बहुत सच लगा, बहुत रिलेटेबल लगा. बट देन आई वेंट एंड आई डिड अ रिसर्च कि अगर कोई ऐसा कोई स्टडी या रिसर्च हो जिससे ये क्लेम बैक किया जा सके बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस. तो मैंने पढ़ा 2026 में एक एनालिसिस किया गया था नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के मेडल स्पेकल रिसर्च सेंटर द्वारा और इस डाटा में ये पता चला कि 83.2% ऑफ मेन दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय गिफ्ट्स फॉर देयर सिग्निफिकेंट अदर या फिर उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं. एंड कंसिडरेबली वो अपने ऊपर कम पैसे खर्चे करते हैं रादर देन दैट दे स्पेंड इट ऑन देयर फ्रेंड्स और ऑन देयर लव्ड वंस. ऐसा इस पर्टिकुलर रिसर्च में जो ये पता चला 83.2% मेन. तो मैंने सोचा कि चलो आज आपसे आपकी राय भी जान लेते हैं. अब आप हमें ये बताइए, एक सिनारियो है आपके सामने एंड आपको बताना है वुड यू रादर बाय योरसेल्फ दैट वन थिंग दैट यू हैव बीन वांटिंग फॉर मंथ्स और यूज द सेम मनी टू सरप्राइज समवन यू लव और बाय समथिंग फॉर समवन यू लव. व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई. तो आज आपको ये बताना है कि अगर आप इस सिचुएशन में हो because we know ki it's not just men's we are inviting to have a conversation with we are inviting everyone. agar aap is situation mein honge ki aapko koi cheez chahiye thi bahut mahino se, kya aap wo apne liye khareedoge ya fir aap wo paise kisi aise shakhs ke upar spend karoge jinse aap bahut pyar karte. it could be anyone, your parents, your kids, your friends, anyone. good morning hum.
4: Pooja ji namaste. Vijay ji namaste.
5: namaste sir, kaise hain aap?
4: एकदम फर्स्ट क्लास. आप दोनों बताइए.
5: हम भी
3: फर्स्ट क्लास.
4: पूजा जी आपने जो अभी एक अपना एक्सपीरियंस बताया ना
3: जी.
4: आपके पापा के बारे में
3: जी,
4: वो एक्चुअली मेरे साथ भी सेम ही है. मेरे ख्याल से बहुत लोगों के साथ सेम होगा
3: या
4: कि अपने माँ बाप, खास करके आप आज पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं तो या मेरी मेल की बात कर रहे हैं तो मैं मेरे ख्याल से पिताजी की बात करूंगा कि पिताजी ने बहुत सी बातें हमारे लिए की अपना सब छोड़ के. तो ये सही है. और आज जब मैं पिता बन चुका हूँ तो थोड़ा सा वो फील होता है मुझे कि जैसे माँ भी करती है सब कुछ, माँ तो
3: obviously, yes.
4: लेकिन जो आप आज अपने विषय जो किया है वो मैं जानता हूँ. अभी आपके प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि जरूर मैं मेरी पत्नी या मेरे बच्चे के लिए कुछ करना चाहूंगा रादर देन मैरिज, क्योंकि उनकी खुशी एक्चुअली बहुत मैटर करती है जी. तो ये होने लग गया, मतलब इट्स नॉट दैट वी डू इट डेलिबरेटली, लेकिन ये अंदर से फीलिंग होता रहता है कि यार हम क्या अच्छा करें उनके लिए कि वो खुश हो. जिससे मतलब आदमी स्वार्थी होता है, उसको स्वार्थ यही है कि दोनों खुश रहे और उनके चेहरे पे वो हंसी बरकरार रहे. तो वो बात है.
2: ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू जी, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे. अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत बहुत शुक्रिया.
2: गुड मॉर्निंग. हेलो,
5: गुड मॉर्निंग विजय पूजा, हाउ आर यू?
3: वी आर गुड, आप कैसी हो?
5: बिल्कुल ठीक, बस काम पे पहुंचे हैं
3: जी,
5: तो लग जाएंगे
3: मजदूरी में.
5: मजदूरी में हम कहते हैं गधा मजदूरी.
3: गधा मजदूरी,
5: गधा मजदूरी, हम गधे होते हैं, काम ही करते हैं बस. मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज वेरी ट्रू जो आपने अभी कहा. I still remember until I was 16, जब मैं इंडिया में रहती थी, मेरे डैड ने हमेशा जो मांगा मैंने और मेरे भाई ने हमेशा दिया. रोल रिवर्स्ड हो गए आफ्टर 17, 18, क्योंकि मेरे डैड का बिजनेस थोड़ा बंद हो गया. देन आई बिकेम दैट पर्सन जो अपना छोड़कर डैड के लिए, मॉम के लिए और भाई की स्टडीज के लिए करती थी. दोज रोल्स गॉट रिवर्स. नाउ कट टू आई एम मैरिड नाउ. Every time I've asked my husband, he has never said no. He's like, मैंने कभी मना करा, जो मर्जी खरीदो. Then now kids are here. मेरा तो चलो अभी है ही है, अब kids का बहुत है. It is as simple कि उनको चाहिए लेके दो, जैसे मर्जी करो. हम अपना कम कर लेंगे, हम एक दिन कॉफी बाहर कम पी लेंगे या एक दिन डिनर बाहर कम कर लेंगे, उनको जो चाहिए कर दो, जो क्लासेस ज्वाइन करनी है कराओ. इट इज एक्चुअली वेरी ट्रू, और इसको स्टडी की भी कोई जरूरत ही नहीं थी. आई गिव यू अनदर एग्जांपल. मी माय हस्बैंड एंड माय डॉटर वी वेंट फॉर अ वॉक. उसको जूस चाहिए था और मेरे पास कार्ड नहीं था, एंड आई जस्ट हैड लाइक मे बी $5 इन माय पॉकेट. He's like, and I was keeping it ki chalo, I'll have a coffee on the way. You know, me and my husband will share a coffee. Meri beti ne kaha mujhe juice chahiye. Ab usko mana kaise kare? Humne usko juice leke diya. Humne kaha chal coffee ghar pe pi lenge, yaar kitna hi farak pad jayega. It's only coffee. So it's not just male, it's women also. It's brothers. Meri beti ne brownie ka hissa kara, usko zyada diya, khud kam liya. So it's every other figure that does it.
3: Yes.
5: Some way or the other. Whether it's a brother, sister, mother, father, anything.
2: Okay.
5: So that's how life is.
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी कॉल के लिए. तो 0800 हम 0800-004-866 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आज अपना अपना टेक शेयर कर सकते हैं टॉपिक के बारे में. अगर आप हमारे साथ अभी भी शामिल हुए हैं तो आपको बता दें कि आज का हमारा व्हाट्स यू टेक टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग पोस्ट आई केम अक्रॉस, जहां पर बातें, आई मीन मैंने पढ़ा कि मेन हेजिटेट टू स्पेंड मनी ऑन देमसेल्व्स, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू नो सरप्राइजिंग और गिविंग समथिंग टू देयर लव्ड वंस, गिफ्टिंग समथिंग टू देयर लव्ड वंस, वो एक बार भी नहीं सोचते. और ख़ुद के ऊपर पैसे स्पेंड करने हो तो दो बार ज़रूर सोचेंगे, अपनी ज़रूरतों को पीछे रखेंगे और अपने जो घर परिवार में हैं, दोस्त हैं, माँ बाप है, बच्चे हैं, बीवी है, इन सबको उनकी ज़रूरतें पूरे करने में वो ज़रूर आगे लग जाएंगे. और फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, जहाँ पर आई सेड कि आई कुड रिलेट टू दिस पोस्ट बिकॉज आई हैव सीन ग्रोइंग अप माई डैड डू द सेम थिंग. कितनी बार जब बड़े हुए, आई गेस दैट्स हाउ वी रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं माय फादर वुड बेसिकली यू नो हैव गॉन थ्रू सो मच हमें प्रोवाइड करने के लिए.
2: ओके,
3: और उस सिचुएशन में ऐसा फील हुआ कि यार कितनी सारी चीज़ों में, कितने मामलों में उन्होंने अपना मन मारा होगा टू प्रोवाइड फॉर अस. एंड व्हेन वी बिकेम एडल्ट्स एंड वी केम इनटू अ सिचुएशन जहाँ पर वी हैव अ फैमिली नाउ. इनफैक्ट अभी एक कॉलर ने ये भी कहा कि रोल्स रिवर्स्ड व्हेन आई गॉट मैरिड, राइट, एंड आई एम प्रोवाइडेड फॉर माई पेरेंट्स एंड ऑल. आई फील कि जितना अब अपने एक बारे में मैं बोलूं कि जितना माय फादर हैज डन फॉर मी फाइनेंशियली आई एम सेइंग उतना आई कांट डू फॉर हिम आफ्टर आई हैव ग्रोन अप आई हैव स्टार्टेड अर्निंग उसके बाद मैंने उनके लिए उतना बिल्कुल भी नहीं किया आई थिंक आई हैवन डन इवन 50% ऑफ इट तो इट्स क्वाइट यू नो इंटरेस्टिंग कि ऐसे में ये फीलिंग जो है मर्दों में आई एम टॉकिंग अबाउट मैन पर्टिकुलरली बिकॉज आई केम अक्रॉस दिस पोस्ट जहाँ पर मैन को स्पेसिफिकली बताया गया कि ये फीलिंग मर्दों में कैसी होती है हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट हाउ वुड यू से इट कि जब इस सिचुएशन में आप होते हैं वट मेक्स यू डिसाइड कि ओके आई विल पुट माई सेल्फ बिहाइंड और मैं वही पैसे खुद की चीज़ों को पूरा करने के बजाय आई विल स्पेंड इट ऑन समवन आई रियली लव एंड आई विल मेक देम फील हैप्पी
2: देखिए सबसे पहले आपकी गलत फहमी है एक बहुत बड़ी
3: क्या
2: कि आई विल पुट माई सेल्फ बैक
3: अच्छा
2: आई पुट माई सेल्फ राइट एट द फोरफ्रंट मैं अपने आप को सबसे आगे रखता हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत सबसे ज्यादा खुशी मिलती है
3: वो बात अलग है
2: आई बिकम वेरी वेरी हैप्पी
3: इमोशनली यू आर पुटिंग योर सेल्फ फ्रंट लेकिन व्हेन इट कम्स टू चॉइसेस लाइक मटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेकर चीजों को लेकर देन यू पुटिंग योर सेल्फ बिहाइंड ना बिकॉज यू वुड नॉट बाई थिंग्स फॉर योर सेल्फ बट यू विल बाई इट और यू स्पेंड दैट मनी फॉर समवन यू लव बट वो चीज करने में खुशी आपको मिलती है इमोशनली लाइक
2: अपने अपने बारे में मैं बताऊं वो नेचुरली भी मैं अपने लिए क्या शॉपिंग करता हूं
3: या दैट्स अनदर थिंग
2: या आई डोंट बाय थिंग्स फॉर माय सेल्फ एनीवेज अपार्ट फ्रॉम ग्रोसरीज एंड या फिर अगर आप देखो तो इफ देयर इज समथिंग जो मैं काम कर रहा हूँ और आई एम वर्किंग ऑन समथिंग इस उसके लिए मुझे अगर किसी तरह के रिसोर्स की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट बाय एनीथिंग कपड़े भी बीवी खरीद कर देती है
3: अच्छा वो सब बोलने की जरूरत नहीं है
2: नहीं मैं बता रहा हूँ ना कि अब एक तो आप एक्सपीरियंस पूछ रही हैं फिर बता रही हैं बताने की जरूरत नहीं
3: आई वाज गोइंग मोर ऑन अ इमोशनल नोट
2: मुझे पता है आप इमोशनल
3: किसी और दिशा में निकल गए
2: एकदम इमोशनल होकर एक्सपीरियंस शेयर करें तो मैंने सोचा माहौल को थोड़ा हल्का कर देता
3: माहौल को बहुत हल्का कर दिया आपने बट एनीवेज हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन रेज किया कि वुड यू रादर बाय योरसेल्फ दैट वन थिंग यू हैव बीन वांटिंग फॉर मंथ्स और यूज द सेम मनी टू सरप्राइज समवन यू लव What would you choose and why? ये आपको आज हमें बताना है अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे तो टेक्स्ट कर सकते हैं
2: बड़ा कंजूस कंजूस या बड़ी कंजूसी वाली फीलिंग आ रही है
3: आपको
2: नहीं मुझे नहीं मुझे आ रही है कि लोग आज ऐसा फील कर रहे हैं
3: क्यों
2: क्योंकि कोई टेक्स्ट भी नहीं किसी ने नॉर्मली ऑटोमेटिकली टेक्स्ट करके कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बता देता
3: है आज हमने जब टॉपिक शुरू किया वी डिडंट इवन रिवील आई मीन मतलब हमने नंबर्स वगैरह जो ये नहीं बताए इनको आ गए थे No one waited for us to, you know, say कि इस नंबर पर आप कॉल कीजिए उससे पहले कॉल्स आ गए थे बट एज वी सेड 0800 004866 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं टू टॉक टू अस लाइव ओन एयर और अगर आपको ओन एयर आकर बातें नहीं करनी है तो आप 5599 पे टेक्स्ट कर सकते हैं
2: गुड मॉर्निंग हेलो
3: कोई नहीं है
2: ये तो क्या इशारे कर रही हो मुझे
3: नहीं,
2: समझ
3: नहीं का कॉल आ रहा था इसलिए मैंने आपको इशारा किया कि आप बात कीजिए आप वापस से आ रहा है इनका कॉल गुड मॉर्निंग शेरव
6: गुड मॉर्निंग विजय भाई गुड मॉर्निंग पूजा
2: गुड मॉर्निंग
6: ब्यूटीफुल टॉपिक सॉरी आई वाज कॉलिंग फिर मैंने कहा जब लगता है टाइम निकल गया फिर मैंने बंद कर दिया था आई थिंक दिस इज माय डैड आई मीन अभी भी आई मीन वी आर ऑल इन आवर 40s अभी 2-3 साल पहले हम गए थे पीजी हॉलीडे पे डैड एंड मम को देखने एंड मम स्टैंडिंग दिया चलो बेटियां आई हैं एंड देन माई डैड गोज इन अ ज्वेलरी शॉप एंड ही बाय दस ज्वेलरी
3: अरे वाह
6: कि जो चाहिए ले लो ना आई मीन ही इज गन बी 70 नेक्स्ट ईयर स्टिल वर्किंग और उसको किसी के हमने बोला अब बंद कर दो डैडी यू देयर इज हम आपको वी आर गोना सपोर्ट यू गोना डू दिस उसको बोला जिस दिन मैं बोल दूंगा कि नहीं काम करना है एंड आई विल टेल यू एंड ही आई नो ही विल नेवर टेल अस वी आर आस्किंग हिम टू रिटायर फॉर द लास्ट 5-6 इयर्स बट वो नहीं कर रहे तो या नोइंग हिम ही इज बीन ऑलवेज आई मीन दे आर टाइम्स दैट ही यू नो जैसे भी आपने बोला कहीं शादी होती थी ना तो डेड वुल से आई वेयर द सेम शर्ट बेटियों के लिए ले लो या बेटों के लिए बच्चों के लिए ले लो तो माय डैड ऑलवेज डन दैट एंड माय हस्बैंड इज 10 टाइम वर्स देन माय डैड उसको कुछ नहीं चाहिए जो भी चाहिए तुम ले लेना गेट इट फॉर माय पेरेंट्स गेट इट फॉर माय तुम्हारी बच्ची के लिए तो यू नो बट हम भी ऐसा ही करते हैं ना अभी आप द कोला सेट की कॉफी पीनी थी बट हमने बेटी को जूस दिला दी ना ऐसा होता है आप जाओगे आपको कुछ चाहिए होगा देन लाइक यस्टरडे आई टुक माय डॉटर आउट क्योंकि हम काम करते शाम को उसको लेकर गए बाहर तो शी सेड हाउ मच इज माय बजट टुडे मॉम मैंने कहा क्यों किस लिए I've been at home, एकदम you know the face down. उसको चाहिए था जो squishy होती है.
3: Oh.
6: I've seen it. I mean, the budget was only to buy one. It's not कि एकदम महंगा वाला, but that still big, puts a big smile on her face.
3: Yeah.
6: So I think वो खुशी मिलती है as parents हमें. And I think my dad and mom would have got the same thing ki my kids are happy or my family is happy, I am happy.
3: Interesting. Thank you so much Cheryl आपके call के लिए. Have a nice day. बहुत बहुत शुक्रिया. Okay, एक message भी आया है आज के topic of the day के बारे में. इन्होंने कहा है, I will 100% get my loved ones things they want to see the joy and happiness on their faces. That's priceless. ये देविका ने कहा है. Thank you देविका. बहुत बहुत शुक्रिया आपके message के लिए. 30 मिनट हो रहे हैं आज 8:00. आप भी अपने जो भी views है आज के What's It Take topic के बारे में हमारे साथ share कर सकते हैं. If you can't call, remember 0800 048 666 पर आप हमें वैसे कॉल कर सकते हैं, बट 5599 पर आप हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं.
0: Bollywood's most wanted.
7: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
8: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Show with VJ and Pooja.
1: Tumo jao, papi ho. Tumo jao.
2: Accurate traffic.
3: Better traffic starts now.
4: A lot of cloud, but still mainly fine today, a high of 19. Coming into the city on the Northern Motorway, half an hour Constellation Drive to town. We're heavy on and off from there. Fine now at Silverdale. Northwestern, 35 minutes in from Massey, heavy on and off there to the city. Southern, 38 Manukau to town, 48 from Drury. Slow at Manurewa, clear to Waitahu, but heavy there on and off to Green Lane. Southwestern, bit slow both ways.
3: Want to freeze fuel tax? Vote Labour. Authorised by Rob Salmond to Gilmer Terrace, Wellington.
5: Kisi priyajan ko khona परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
6: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं. कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
7: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
8: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
6: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and Solicitors. Papatoy and Hamilton.
9: तो आज के बाद से एक टॉपिक जो आपके लिए हम लेकर आए थे थोड़ी देर पहले, उसके लिए एक और एक मैसेज आया है और इन्होंने कहा है, गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक. आई विल सरप्राइज माय पिलर ऑफ द पिलर ऑफ माय हाउस. ही डज अ लॉट ऑफ फॉर अस, ही डज अ लॉट फॉर अस, लेट अलोन थिंग्स फॉर हिमसेल्फ. इवन फूड एट होम विल बी किड्स चॉइस टू मेक ऑल हैप्पी. दे आर लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेज, अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेज विच इज एंडलेस. उर्मिला जी का मैसेज ये आया है. थैंक यू सो मच उर्मिला जी, आपके भी मैसेज के लिए और आपके साथ के लिए. फिलहाल चलिए, हमने आपसे वादा किया था कि मौके आपको देते रहेंगे हमारे साथ तो जीतने के, और ये एक और एक मौका इस बार आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. ऑल थैंक्स टू लॉजिक फाइनेंस के गुरु किंडोला. लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु किंडोला एक हाउस होल्ड नाम जो है ये बन चुका है इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. और अगर आप भी इनकी लाजवाब सेवाओं के बारे में डिटेल्स चाहते हैं, इनसे बातें करते हुए इनकी सेवाओं से फायदा उठाना चाहते हैं, तो 0800 लॉजिक जी पर आप कॉल कर सकते हैं और गुरु किंडोला से बातें कर सकते हैं ऑफ लॉजिक फाइनेंस. और टॉकिंग अबाउट द सेम, इनकी ओर से आप जीत सकते हैं $1,000 वर्थ ऑफ वाउचर्स फॉर न्यू वर्ल्ड सुपरमार्केट. $1,000 के न्यू वर्ल्ड सुपरमार्केट के वाउचर्स इज गोना बी एन अमेजिंग अमेजिंग प्राइज फॉर यू टू विन. इमेजिन आपके दिवाली, क्या दिवाली के साथ साथ दिवाली के बाद की भी ग्रोसरी शॉपिंग हो जाएगी.
10: अगर आप एवरेज $250 पे वीक ग्रोसरीज पर स्पेंड करते हैं, एक महीना सॉर्टेड.
9: हां एग्जैक्टली,
10: $1,000 स्ट्रेट आपके सेविंग्स में चले जाएंगे.
9: तो आप जल्दी से हमारे पास अपनी एंट्री सेंड कीजिए इफ यू वांट टू विन $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड ग्रोसरी वाउचर्स, ये शॉपिंग वाउचर्स. और इसके लिए लॉजिक फाइनेंस का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी ओर से जीतने का मौका है आपके पास. इफ यू वांट टू विन दिस, आपको बस एक चीज करनी है.
10: सबसे पहले आपको लिखना है लॉजिक, याद रहे लॉजिक, LOGIC. लॉजिक आप लिखें उसके बाद अपना नाम लिखें और ये बताएं कि एक हफ्ते में आपका ग्रोसरी बजट कितना होता है।
9: Okay.
10: आपका वीकली ग्रोसरी शॉपिंग बजट कितना होता है वो आप हमें बताएं। सो लॉजिक, अपना नाम और वीकली ग्रोसरी बजट ये लिखकर 5599 पर आप हमारे पास भेजें। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए hum.rover.nz ये आप विजिट कर सकते हैं।
9: और याद रहे सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम हम आपको दे रहे हैं, वी आर नॉट गोना एक्सटेंड एनी मिनट ओवर देन 5 मिनट्स, तो इसीलिए द नेक्स्ट 5 मिनट्स आपके, अपनी एंट्रीज आप सेंड करें और ड्रॉ का हिस्सा बनते हुए नाम जीतने का मौका जरूर हासिल करें। लॉजिक स्पेस आपका नाम स्पेस वीकली ग्रोसरी शॉपिंग का, आप कितना पैसा जो ये स्पेंड करते हैं या ग्रोसरी शॉपिंग के लिए कितना बजट होता है आपका वीकली, ये अमाउंट आप टेक्स्ट करें 5599 पर। इफ यू वांट टू विन $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड सुपरमार्केट वाउचर्स थैंक्स टू लॉजिक फाइनेंस।
2: लेट्स गो
0: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर

0: अरमान मलिक की आवाज में आपके लिए आज का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हम शामिल कर रहे थे फ्रॉम द मूवी अक्टूबर. 13 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 9 बजने में और आपके पास करीबन 2 मिनटों का समय बाकी है अपनी एंट्री सेंड करने के लिए.
1: टू मोर मिनट्स लॉजिक, उसके बाद अपना नाम और आपका वीकली ग्रोसरी शॉपिंग बजट कितना है, ये आप हमें लिखकर 5599 पर भेजें. अभी तक जस्ट ग्लांसिंग थ्रू आई थिंक वंदना का मुझे सबसे ज्यादा नजर आ रहा है $500 पे वीक, ये उन्होंने कहा है. तो आप भी 5599 पर विद इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स अपनी एंट्रीज हमारे पास भेज सकते हैं. हम फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून जिसमें इस बार लॉजिक फाइनेंस की ओर से $1000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड शॉपिंग वाउचर्स जो है ये जीतने का मौका है.
0: एंड रिमेंबर इफ यू वांट टू विन दीस शॉपिंग वाउचर्स ऑल थैंक्स टू लॉजिक फाइनेंस, तो नेक्स्ट 2 मिनट्स में आपकी एंट्री हमारे पास 5599 पर आ जानी चाहिए.
2: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
4: Accurate traffic.
5: Your new home awaits in Strathmill, Ottawa.
6: A lot of cloud, but still mainly fine today. A high of 19. Coming into the city on the northern motorway, half an hour Constellation Drive to town. We're heavy on and off from there. Fine now at Silverdale. Northwestern, 35 minutes in from Massey. Heavy on and off there to the city. Southern, 38 Manukau to town. 48 from Drury. Slow at Manurewa. Clear to Otahuhu, but heavy there on and off to Green Lane. Southwestern, bit slow both ways.
5: Strathmill. Discover your new home in beautiful Ottawa. Visit strathmill.co.nz.
7: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
8: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
9: The right support can make enrolling and voting easier. Ask someone you trust to help you enrol, find information and plan how you'll get to a voting place. When you're there, they can also support you to cast your vote behind the voting screen. However you're supported, you make the decisions. Find out more at vote.nz or call 0800 36 7656. Brought to you by the Electoral Commission.
10: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
2: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
2: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
0: चलिए टाइम इज अप. जितने लोगों ने हमारे पास अभी भी अपनी एंट्री सेंड की है फॉर हमारा दिवाली फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून जहां पर यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस टाइम अराउंड, $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड शॉपिंग वाउचर्स लॉजिक फाइनेंस की ओर से जीतने का मौका. जितने लोगों ने एंट्रीज हमारे पास भेजी है शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया. अब हम चलिए ये कॉम्पिटिशन यहीं पर रैप अप कर रहे हैं. अगली अपॉर्चुनिटी के लिए आपको सुनते ही रहना है और जैसे ही मौका मिले अपनी एंट्रीज सही तरीके से हमारे पास सेंड करनी है. याद रखिए हर एक इनाम को जीतने के लिए, हर एक एंट्री के लिए एक कीवर्ड होता है जो आप राइट तरीके से अगर हमारे पास सेंड करते हैं तभी आपकी एंट्री वैलिड होती है. ये भी याद रखिए स्टैंडर्ड कैरियर रेट अप्लाई व्हेनेवर यू टेक्स्ट अस एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन hum.rova.nz फॉर दिवाली फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून.
1: एंड रिमेंबर जितनी ज्यादा एंट्रीज उतने ज्यादा चांसेस जीतने के.
0: Absolutely. तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसमें पार्ट लेने के लिए जाने के लिए सुनते रहिएगा. 8 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 9 बजने में और ठीक 9 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे. लेकिन फिलहाल बारी है वन ऑफ दीज अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग्स ऑल द वे फ्रॉम 2001. दिल चाहता है एक ऐसी फिल्म जिसने बहुत सी चीज़ें चेंज तो की थी व्हेन इट केम टू लुक्स एंड स्टोरीज एंड एवरीथिंग, बट म्यूजिक ऑफ कोर्स शंकर एहसान लोई का म्यूजिक जिसने काफी कुछ चेंज किया था म्यूजिक इंडस्ट्री में भी.

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: Hum, accurate traffic.
2: Kitchen Mania free installation.
3: Mainly fine, but quite cloudy at times. High of 19 degrees into the city. Southern motorway easing up. 34 minutes Manukau to town. Slow at Manurewa. Clear to Penrose. Then heavy patches there to Green Lane. Southwestern, little slow northbound at Whitty. Southbound at Mount Roskill. Northwestern, half an hour Massey to the city. Heavy on and off from Te Aratu. Northern 26 from Constellation. Heavy gravel to there and slow to the bridge.
2: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply.
4: Kya baat hai खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
5: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
6: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
5: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800-4-NZPMI Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
7: The ultimate pro iPhone, iPhone 18 Pro. With a big leap in battery life, new 48 megapixel Fusion main camera with variable aperture for more creative control, and four gorgeous colors. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.
0: Hum, time check.
1: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
8: Good morning, Isamitik Nobajre hai.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
9: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Cause for concern within the National Party ranks is its support in the polls plummets. The RNZ Reid Research poll puts them below the 26% mark. Political scientist Lara Greaves says it might be unsettling for leader Christopher Luxon and his colleagues.
10: I can imagine that would be quite freaky for a lot of people within National. It just does seem a bit unprecedented the way that we're seeing the minor parties really come up in the polls.
9: A scene examination at the last known address of Braden Hepworth has been completed in Christchurch. Police say they're still working to understand the circumstances surrounding his disappearance. The 21-year-old hasn't been seen or heard from since September 14th, and police say they are very concerned. The number of people worried about being ripped off while making payments has risen. A survey shows it weighs on the minds of 76% of consumers. Steve Wiggins from Payments NZ says things like AI are being used by bad actors.
11: It's evolving as technology evolves. As the scammers become more selective in terms of how they target and also the ability for them to target at scale.
9: Reports of injuries to livestock are emerging after a crash in Masterton. Emergency services were called to State Highway 2 between Chester and Wilton's roads earlier this morning. In sport, Daniil Medvedev insists there was no malice involved as the Russian tennis star was kicked out of the China Open for hitting a spectator in the face with a ball.
12: You can see that there is zero anger in this moment. Yeah, it hit him and I hope he's okay.
9: Ben Old scored a cracking goal as the All Whites lost the Curran Cup football final 2-1 to Japan in front of a sold-out crowd of 67,000 in Yokohama.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari good brands mein hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
8: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम अगर देखा जाए, क्लाउडी पीरियड्स के साथ साथ चांसेस ऑफ लिटिल बिट ऑफ शावर्स जो शाम के समय थमती हुई नजर आएगी. सनसेट 7:30 PM पर होगा. राइट नाउ टेम्परेचर 11.9 डिग्रीज है. हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड लेटर टुडे. ओवरनाइट 7 डिग्रीज रहेगा.
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
13: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको. बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर होम. हैरिंगटन Living Monaco.
14: What's going on? क्या बकते हो?
15: अरे कहना क्या चाहते हो?
8: आज की क्या बकते हो स्टोरी. इलेक्शन का टाइम है भाई, और इलेक्शन के टाइम पे हर कोई अपना अपना जो कैंपेनिंग है ये जारी रखता है और तरह तरह से इसको ज़िंदा रखते हैं. बेसिकली इसको एंटरटेनिंग भी बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव भी बनाते हैं, इंसाइटिंग भी बनाते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके कैंपेन्स पर ध्यान दें, इसकी ओर अट्रैक्ट हो और इनके कैंपेन्स को ध्यान देते हुए उनको वोट भी करें. राइट. लेकिन एक ऐसे शख्स है जो यहाँ न्यूजीलैंड में नहीं, ब्राज़ील में रहते हैं. और ब्राज़ील का जो ट्रेडिशन ऑफ जोक कैंडिडेट्स है ये इन्होंने अलाइव रखा है. इनके बारे में कहा जा सकता है इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, और बड़ा ही अनोखा तरीका है इनका. और इन्होंने इनफैक्ट अपने आपको काफ़ी पॉपुलर नहीं सॉरी ही इज़ नॉट अ टैक्सी ड्राइवर, माफ़ कीजिएगा. इन्होंने अपने आप को काफ़ी पॉपुलर रखा है. इज़ अ लोकल पॉलिटिशियन और ये इलेक्शन में भी खड़े हुए हैं कई बार. और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का एक लुक अलाइक जो है ये बना लिया.
16: ओके.
8: और अपने आप को ये फिलिनियो ट्रम्प के नाम से ज़्यादातर यू नो प्रस्तुत करते हैं लोगों को. और ही एक्चुअली गोज राउंड इन हिज कार जहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प का लुक लेकर ये नॉर्मली ट्रेवल करते हैं साउथ ईस्टर्न स्टेट ऑफ ब्राज़ील में. और यहाँ पर इन्होंने अपनी गाड़ी में अमेरिकन फ्लैग भी लगाई हुई है टू मेक इट लुक लाइक अ प्रेसिडेंशियल मोटो कार बेसिकली. और इनके बारे में बताया गया है कि ही इज़ रनिंग फॉर कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन अनटिल 4th of October ये दरअसल अपने अंदर के डोनाल्ड ट्रंप को जगा रहे थे. उनके जैसा दिख रहे थे, उनके जैसा हेयर स्टाइल, उनके जैसे कपड़े पहनना, उनके जैसे फर्म हैंड शेक, उनके तरह बात करने का तरीका, जस्ट टू गेट पीपल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम. एंड उसके बाद चलकर इन्होंने इनके बारे में एक और एक खबर ये आई है कि ही इज़ नॉट दी ओनली गाय जो ऐसा करते हैं. इनफैक्ट यहाँ ब्राज़ील में और भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन के दौरान अलग अलग सेलिब्रिटीज़ का जो लुक है ये लेते हैं. जैसे दे इज अनदर पर्सन जो कि बॉर्न, इनका नाम है क्लॉडियो हेनरिक डॉस एंजोस, और ये हेनरिक बराक ओबामा के नाम से जाने जाते हैं.
16: बिकॉज हेनरिक बराक ओबामा,
8: या बिकॉज ही इम्पर्सोनेट्स हिमसेल्फ एज बराक ओबामा, और उनके तरह ये अपना लुक जो ये रखते हैं. इन्होंने भी कई बार इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग वगैरह जो की है, एंड ही हैज मेंटेन्ड हिज लुक ऑफ बराक ओबामा. एंड नॉट जस्ट दैट, देयर इज अनदर गाय, 57-year-old गाय जो कि ब्राज़ील के ही हैं और ब्राज़ील के कैपिटल ब्राज़ीलिया मेरे ख्याल से वहाँ पर कैंपेनिंग करते हैं. फेडरल डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्होंने सेनेटर के लिए आई थिंक इलेक्शन में ये खड़े हुए थे. और मिक जैगर, इनका जो लुक है इन्होंने इम्पर्सोनेट किया था. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ कैंपेनिंग फॉर योर पार्टी और फॉर योर पर्टिकुलर पॉलिसी. ब्राज़ील में काफ़ी पॉपुलर है ये. आई वंडर न्यूजीलैंड में अगर ये शुरू हो गया तो
16: तमाशा होगा.
8: वो बात अलग है, बट इंटरेस्टिंग भी रहेगा.
16: हाँ, वो तो है.
8: या एंड देयर सो मेनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आवर एमपीज कुड एक्चुअली प्ले यू नो जस्ट टू गेट दैट अटेंशन. बट ब्राज़ील में ये चलन है जहाँ पर लोकल एमपीज जो है ऐसे फेमस पर्सनैलिटी पॉलिटिशियंस का लुक लेकर अपनी अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते हैं.
16: तो ऐसी खबरें और भी हैं जो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ऑन हम ओनली

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: तो क्या हो रहा है हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में, इसकी जानकारियां आपको हम पर हम देते रहते हैं. आज अंतिम दिवस है श्री राम कथा का और श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडसन में पूज्य राजन जी के साथ रात 7 बजे से कथा आरंभ होगी, जिसमें आप जरूर हिस्सा ले सकते हैं.
4: और उसके अलावा आपको याद दिला दें कि और भी बहुत सी जगहों पर इनफैक्ट जो नवरात्र के पर्व है ये शुरू होने वाले हैं. आपके आसपास भी अगर नवरात्र के पर्व जो ये शुरू होने वाले हैं या आप मिलकर करने वाले हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ, तो हमें ज़रूर बता सकते हैं. आप हमारे पास डिटेल सेंड कर सकते हैं 1559. नाउ सबसे पहले याद दिला दें कि रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एव मेनिका, यहाँ पर भी नवरात्र का महोत्सव मनाया जाएगा. संडे 11th ऑफ अक्टूबर से लेकर ट्यूजडे 20th अक्टूबर तक रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एव मेनिका पहुंच सकते हैं और हर रोज शाम 6 बजे से इसमें आप भाग ले सकते हैं. जानकारियों के लिए आप रामकृष्ण मंदिर को जरूर संपर्क कर सकते हैं.
3: और दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नवरात्रि का महाउत्सव इसी रविवार से मंगलवार 20 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. द केव 5x57 कैवेंडिश ड्राइव मेनुकाउ में शाम 6:30 बजे से स्थापना पूजा आरंभ हो जाएगी. रात 8:30 बजे तक श्रीमद देवी भागवत की कथा, जिसके बाद प्रसाद और भोजन का भी प्रबंध रहेगा.
4: वैसे 16 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 9:00 व्हाट्सअप ऑकलैंड में और भी कम्युनिटी रिलेटेड इवेंट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे. अगर आप भी कुछ कर रहे हैं अपने आसपास अपनी कम्युनिटी के लिए तो हमें जरूर बता सकते हैं. पर फिलहाल के लिए
3: श्री आदिशुक्ता शक्ति दुर्गा माता मंदिर पर नवरात्रि पूजा जो है इसी रविवार से आरंभ होगी. 20th अक्टूबर तक जारी रहेगी. 38A वोम्सली रोड ऑटोहूहू, जहां पर आप जाकर दैनिक पूजा में हिस्सा ले सकते हैं. और उसके साथ अगर देखें और भी कई जगह हैं जहां पर नवरात्रि की पूजा जो है ये चल रही है या आरंभ होगी रविवार से. श्री हनुमान मंदिर 14 बाई पार्क प्लेस बर्गडेल नोचो, आप जाकर पूजा में हिस्सा ले सकते हैं. देवी कथा पूजा और कथा हर शाम 6:15 बजे से शुरू होगी. माता की चौकी जो है ये लगेगी 13th और 17th अक्टूबर को शाम 6:30 बजे से.
4: तो याद रहे buzz@hummfm.com buzz@hummfm.com पर आप हमारे पास अपने ईमेल्स सेंड कर सकते हैं. वैसे एक और एक जरूरी सूचना, मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ. जस्ट एज वी केयर फॉर आवर बॉडी, इट इज ओके टू सीक सपोर्ट फॉर आवर माइंड टू. If you are feeling overwhelmed or struggling to manage your emotions, you do not have to face it alone. Asian Family Services offers free, confidential and professional emotional support from people who understand your culture. Call Asian Helpline free on 0800-862-342. If you or someone you know is in immediate danger, call 111. Remember, call 111.
0: Show with Vijay and Pooja.
5: Hey, the coma again.
6: Hey, ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
7: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
6: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
7: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
6: बस इतना ही.
7: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा.
8: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
9: Coffee? The usual?
10: How about the unusual?
11: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. something a bit different at BP.
2: Dibba khul gaya.
12: Bharat bhai, tiffin khul gaya chhe. Sanjana ka dibba khul gaya.
13: Jab Kashish Spices se khana banega, to saare office ki nazar mein rahega. Phir yahi to hoga. Dibba khul gaya. Haldi, mirchi, garam masala, Kashish masale, acche wale. Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.
14: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
15: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
16: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
15: इसीलिए NZPMI से बात कर लो. वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
14: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800 4NZPMI.
17: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
18: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: 20 मिनट हो रहे हैं, या माफ कीजिएगा 22 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में, वैसे 9 बजकर, और आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. और शेरोन जी, आपका मैसेज हमें मिल चुका है, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. जैसे ही ये सॉर्ट आउट हो जाए, विल डेफिनेटली अप्रोच यू एंड सेंड इट अक्रॉस. जिस चीज़ के बारे में आप बातें कर रहे हैं, शी वॉज अ विनर ऑफ अ वाउचर ऑन द शो, तो बस थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए तो हम आपको जरूर अप्रोच करेंगे एंड विल फॉरवर्ड इट टू यू. बट फॉर नाउ
3: एक लेडी है, इनका वेट लॉस जर्नी जो है, इसके बारे में खबर जो है ये अभी काफी चर्चे में है. 11 महीनों में शी लॉस्ट 32 किलोज.
2: वाओ, 11 मंथ्स.
3: हाँ, 32 किलोज. उन्होंने कुछ खाना बंद किया, कुछ खाना शुरू किया.
2: ओके, क्या बंद किया?
3: स्टॉप ईटिंग, सबसे पहले शुगरी ड्रिंक्स. उन्होंने कहा कि ये इन्होंने बंद कर दिया. She's not taking any more sugary drinks.
2: Mm-hmm.
3: Better options: lemon water, coconut water, green tea. और दूसरी चीज, white bread.
2: Okay.
3: उन्होंने बंद किया क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि refined carbs जो हैं ये insulin spike करते हैं and create more fat storage. Better option: multigrain या फिर whole wheat bread.
2: Okay.
3: Sourdough bread. और oats.
2: Okay.
3: तीसरी चीज जो इन्होंने बंद की, पैकेज्ड स्नैक्स.
2: ओके,
3: हाई सॉल्ट इक्वल्स ब्लोटिंग प्लस अननेसेसरी क्रेविंग. बेटर ऑप्शन, रोस्टेड चना, नट्स, क्या बोलते हैं, मखाना.
2: हाँ, मखाना.
3: ये खाना उन्होंने शुरू किया.
2: फॉक्स नट्स ना,
3: मुझे नहीं पता ये क्या.
2: मखाना इज फॉक्स नट्स.
3: और चौथी चीज जो इन्होंने बंद की, फ्राइड फास्ट फूड.
2: ओके,
3: हाई फैट प्लस सॉल्ट इक्वल्स वेट गेन एंड स्लगिश फीलिंग. क्या उन्होंने खाना शुरू किया इसके जगह पर, होममेड रैप्स, पनीर या चिकन टिक्का एंड सिंपल होममेड मील्स. पांचवी चीज जो इन्होंने बंद की, लेट नाइट रैंडम स्नैकिंग.
2: ओके,
3: और बेटर ऑप्शन, हर्बल टी या जस्ट स्लीप. स्मॉल चेंजेस बिग डिफरेंस ये इन्होंने कहा. Reduce or avoid this food, drink 2 to 3 liters of water, sleep 7 hours per day, walk daily and you'll start noticing changes in your face and body.
2: That's nice, yeah.
3: ये इन्होंने कहा है.
2: You know, weight loss की जो journey होती है, ये कभी instant नहीं होती है. It's not something that you can see it in a month also. कभी कभी it takes more than that, but you have to be consistent with it. वो सबसे ज़रूरी चीज़ है. And I guess that's the place where I personally lack a lot of energy. Consistency नहीं होती ना मुझसे. Few days तक I'll go, or maximum that I've been, which is not a very good thing to do, but the maximum that I've been on a particular situation जहाँ पर अपने health पर ध्यान देते हुए अपना वजन कम करने के लिए मैंने कुछ मेहनत की, was 2 weeks, not more than that.
3: Okay.
2: After 2 weeks I gave up. And that is the whole game, consistency. ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, this sounds like so easy, so basic, क्योंकि ये चीज़ें हर कोई कर सकता है. स्पेशली ये जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड बंद करना, इट्स पॉसिबल. ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, पर होता नहीं है ना कई लोगों से, कंसिस्टेंसी नहीं होती है. एंड मी बीइंग वन ऑफ देम. बट इट्स अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन. 11 मंथ्स में 32 किलोज, इट्स अ बिग चेंज. और इट्स नॉट समथिंग जो लोग आजकल करते हैं जस्ट टू लुक अ पर्टिकुलर वे, बट टू फील हेल्थी.
3: वो भी ज़रूरी है. आज सुबह ही मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था, यू नो, करीना कपूर खान की जो, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशनिस्ट, वो कुछ आइडियाज़ जो है ये दे रही थी. और यू नो, वो क्या इस्तेमाल करती हैं टू कीप करीना द वे शी इज़.
2: राइट, तो
3: मैंने बोला भाई कमाल है ना.
2: यस, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है बॉडी का. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता है, पर हम करते कितना है वो अलग बात है. सो इफ़ यू कैन मेक दोज चेंजेस इन योर लाइफ टू मेक योर लाइफ बेटर एंड हेल्थियर, वेल गेट दैट डन मोस्टली, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प कर सकती है. थोड़ी देर बाद विल टॉक अबाउट दैट मूवी जो कई सालों पहले आई थी, डिड क्वाइट वेल, और उसका जो पार्ट टू ये अनाउंस हुआ है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का डेली राउंड अप ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे इन अ वाइल, जहाँ जहां पर कुछ जरूरी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ।
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
5: मैं लाऊं अपना ए गेम।
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: सुनिधि चौहान की आवाज आपके लिए हम लेकर आ रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और इधर चलिए आपके लिए, जबकि हमने कहा था कि बताएंगे इस फिल्म के बारे में, जहां पर दिस पर्टिकुलर मूवी इज समथिंग जो आपने शायद कई सालों पहले देखी थी, एंड फाइनली इसका जो पार्ट टू ये अनाउंस हुआ है. एंड इफ इट्स समथिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू, वेल इट डिपेंड्स टोटली कि आपकी पसंद क्या है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी. 2007 में आई थी हे बेबी, आपने देखी है?
1: मैंने देखी है.
0: हाँ, तो हे बेबी जो है ये 2007 में रिलीज हुई थी और इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर एट दैट टाइम. अक्षय कुमार, फरदीन खान, रितेश देशमुख और विद्या बालन ये थे इस फिल्म में. बट स्पेशल अपीयरेंस में शाहरुख खान और अनुपम खेर भी दिखे थे, अलोंग विद बमन ईरानी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मूवी. और साजिद खान ने मेरे ख्याल से इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. तो साजिद नडियाडवाला द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी हैज सेड कि ये एक ऐसी फिल्म है विच वॉज अनलॉजिस्टिकली बहुत सारे चैलेंजेस इसमें इस फिल्म को बनाने में फेस किए गए थे, बिकॉज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी वॉज अ 8 month ओल्ड बेबी.
1: अच्छा,
0: 8 महीने की एक बच्ची थी जो इस फिल्म की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रही थी. एंड एज ही फॉर्मली इंट्रोड्यूस द अपकमिंग सीक्वल टू हे बेबी, उन्होंने कहा कि जो चैलेंज उस टाइम पर उन्होंने फेस किया था विल गेटिंग दिस फिल्म, शायद इस बार वो चैलेंजेस उनको वापस से फेस करने पड़े, बट किस तरीके से वो अलग बात है. तो अभी देखना ये है कि हे बेबी का जो सीक्वल है ये क्या हे बेबी जितना ही विटी, इंटरेस्टिंग और हिलेरियस रहता है या नहीं.
1: सो ओनली टाइम विल टेल. और इसके बारे में खबरें जैसे हमें और मिलेंगी ये हम आपके लिए हम पर लेकर आएंगे.
0: पर फिलहाल के लिए एक जरूरी चीज आपको बता दें, अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रोजबे में सैंडी एंड रोजबे ने बातें की है, एक बहुत ही कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद अ सेलिब्रिटी जो कि यहाँ न्यूजीलैंड की जानी मानी सेलिब्रिटी तो है ही, लेकिन बॉलीवुड में भी काफी नाम अपना इन्होंने कमाया हुआ है अपनी सिंगिंग से. और इन्होंने एक्टिंग में भी अच्छा खासा डेब्यू करते हुए एक्टिंग फील्ड में भी अपना कदम रखा है. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन शर्ली सेठिया. उनकी जर्नी कैसी रही from New Zealand to India, the realities of navigating the entertainment industry as an outsider, or of course the challenges unhone face kiye that come with trying to find your place in the industry. Kya connections, kya expectations, kya perceptions hote hain which play a huge role. So the good, the bad, the brutal honest side of the film industry, Bollywood industry, iske baare mein baate ki hai Shirley Sethia ne is bahut interesting conversation mein jo aap jaakar check out kar sakte hain. Aur Unfiltered case recent एपिसोड में ये आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, विच यू कैन फाइंड एट रोवा एंड स्पॉटिफाई एज वेल. बस अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रोजबे आपको सर्च करना होगा. एंड ऑन द अदर हैंड डोंट फॉरगेट इलेक्शन स्पेशल भी ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं. न्यूजीलैंड में दिस इज द इलेक्शन ईयर और एवरी थर्सडेज को ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करते हैं अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज इन न्यूजीलैंड, देयर पॉलिसीज एंड ऑल. और पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स भी इनके साथ जुड़ते हैं टाइम्स टू ब्रिंग दोज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू यू. तो एवरी थर्सडेज ये इलेक्शन स्पेशल लेकर आते हैं. एंड last they had a conversation with Sunny Kaushal jo ki chairman and CEO hai of India New Zealand Chamber of Commerce and Industry, chairman Ethnic Business Organization Alliance, Ministry of Ethnic Communities, chairman Dairy and Business Owners Group and former chairman Ministerial Advisory Group Government of New Zealand ke liye. To inke sath inhone kuch baatein ki hain and what he believes ki government ka you know kadam hona chahiye, agla kadam what the government should prioritize aur kya politicians truly small businesses ki sunte hain, ye sari baaton par inhone kuch conversation ki hai jo agar aap chahe sunna to drive likhkar 5599 par text kar sakte hain. Pura ka pura episode jo hai ye aapko mil jayega.
2: Mornings made better.
3: Two frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर। सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
1: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
0: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
2: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
3: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today. For expert advice you can rely on, TC's fees and credit criteria apply.

0: products from leading brands. TVs, whiteware, computers, smartphones, small appliances, plus loads more priced to sell out. Big brands, hot prices, end to end stay. Conditions apply. Only at No Leeming.
1: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और professional, confidential और free emotional support देते हैं। Call Asian Helpline Free on 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है, तो 111 पर कॉल करें।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
4: What's going on?
5: चले डेली राउंडअप की बारी आई है, लेट्स चेक आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन न्यूजीलैंड राइट नाउ।
6: कल शाम ऑकलैंड के नॉर्थ में घटी एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जानें चली गई, जबकि एक और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एमरजेंसी सर्विसेज को कल दोपहर 2 बजे के वक्त डेरी फ्लैट हाईवे पर बुलाया गया, जहां पर 3 गाड़ियां जो हैं ये आपस में टकराई थी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि दुख की बात है कि 2 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इस दुर्घटना की वजह से रास्ते को बंद भी करना पड़ा था।
5: और इसके अलावा एक और एक खबर आ रही है कि कोकेन यूज न्यूजीलैंड में अब बढ़ता जा रहा है। इट्स राइजिंग शार्पली एंड रिसर्चर्स ने कहा है कि चीपर प्राइसेस, इजीयर एक्सेस एंड ग्रोइंग सोशल एक्सेप्टेंस आर द कॉसेस दैट आर ड्राइविंग द इंक्रीज। पुलिस वेस्ट वाटर टेस्टिंग ने एस्टिमेट किया है कि कीवीज वर यूजिंग नियरली 7 किलोग्राम्स ऑफ कोकेन एवरी वीक in the second quarter of 2026. That's down from a record 9.4 kilograms a week late last year, lekin still a major increase compared to previous years. New Zealand Drug Trends survey ne ye paya hai ki 31% of respondents reported using cocaine compared with just 11% in 2017 and 2018.
6: पुलिस का कहना है कि वो उस मामले की छानबीन कर रही है, जिसके तहत आज तड़के सुबह एक व्यक्ति गनशॉट वुंड के साथ क्राइस्टचर्च अस्पताल पहुंचा। ये व्यक्ति तकरीबन 2 बजे के वक्त अस्पताल गया था, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ये दिया गया और उसके बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनके इंजरी और उससे जुड़े सिचुएशंस के बारे में अभी भी तहकीकात की जा रही है।
5: एंड इसके साथ साथ न्यू रिसर्च में ये पता चला है कीवीज आर इंक्रीजिंगली एम्ब्रेसिंग डिजिटल पेमेंट्स, लेकिन सिर्फ एक चीज है दैट दे स्टिल वांट अबव एवरीथिंग एल्स व्हिच इज सिक्योरिटी। पेमेंट्स न्यूजीलैंड ने पाया है कि 76% ऑफ पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट फ्रॉड एंड स्कैम्स, व्हाइल 55% से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर व्हेन चूजिंग अ न्यू वे टू पे एंड स्कैम्स आर एक्चुअली changing our habits. 29% ने कहा है कि they've changed how they pay because of fraud concerns.
6: UEFA Nations League के मैचेस के आज के रिजल्ट्स इस तरह से रहे। साइप्रस 2, लेटविया 1, इटली 3, टर्की 1, स्वीडन 1, रोमानिया 0, बोस्निया हर्जेगोविना 1, पोलैंड 0, फ्रांस 4, बेल्जियम 1, मोंटेनेग्रो और आर्मेनिया 0-0 से बराबर, हंगरी 2, यूक्रेन 1 और नॉर्दर्न आयरलैंड साथ में जॉर्जिया जो है ये 0-0 से बराबर हैं। इसके साथ ये भी याद रखें कि जो फिजी में आईडीसी चैम्पियनशिप है, एफएमएफ आईडीसी, ये आज दिन में 12 बजे से न्यूजीलैंड समय अनुसार शुरू हो जाएगा और जो पहला मैच है ये प्रीमियर डिवीजन का खेला जाएगा दिन में 11 बजे सेंगंगा वर्सेस किरिबास एचएफसी बैंक स्टेडियम में, 1:30 बजे नैंडी वर्सेस नावुआ, 3:30 PM नसीनू वर्सेस रेवा, 5:30 PM बा वर्सेस लोटुका एंड या फिर 6:30 PM बा वर्सेस लोटुका एंड न्यूजीलैंड समय अनुसार रात 9 बजे लंबासा वर्सेस सुवा। बर्केस्ट पार्क पर 12 PM तालिवोनितेसिरी वर्सेस तावुआ, 2 PM तवयुनी वर्सेस सावुसावु, 4 PM नॉर्थलैंड तालिवु वर्सेस मबुआ। PGFA एकेडमी ग्राउंड्स 12 PM रकेरेकी वर्सेस नंदोंगो एंड 2 PM ड्रकेती वर्सेस लामी मैचेस जो हैं ये खेले जाएंगे।
7: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. दो बातें।
2: सफर जो भी हो अपनी मंजिल पर पहुंचता ही है। कभी कभी सफर में कुछ हम सफर साथ होते हैं तो ये सफर और भी खूबसूरत हो जाता है, और कभी कभी अकेले ही सफर करना पड़ता है।
3: अरे वाह, क्या कितना सफर कर रहे हैं आप?
2: बहुत सफर कर रहे हैं, बता नहीं सकता कितना सफर कर रहा हूँ।
3: वही तो।
2: दो बातों में आज। सबसे पहले कहते हैं कि शब्द दिखावा कर सकते हैं पर स्वभाव कभी झूठ नहीं बोलता।
3: ओह नाइस।
2: और आज की दूसरी बात
3: जी,
2: इस पर हो सके तो थोड़ा
3: और फरमाइए।
2: हाँ, कि जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है।
3: जिंदगी में
2: सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए,
3: राइट,
2: और ना ही किसी को कम चाहिए।
3: अच्छा, वेरी नाइस यार। चलिए इन्हीं बातों के साथ अब आपको कहेंगे टाटा बाय बाय। मुलाकात होगी कल आपसे एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। टेक केयर, हैव लॉट्स ऑफ फन, एंजॉय योर ट्यूसडे, हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे और बी सेफ।
4: हां जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2

0: क्यों रहा, नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:03 होने वाले हैं एज आई स्पीक। कैसे हो? ठीक हो? मौसम ना, यू नो आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट मेकिंग अप इट्स माइंड। इट्स ऑलरेडी अक्टूबर और हमें लगता है कि हम स्प्रिंग में पहुंचे हैं कि विंटर ही चल रहा है। बताओ, आज का मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्रीज बताया जा रहा है। सो लो, ये सोच के लोग कि ओ माई गॉड, ये मौसम हमें कब तक ऐसे सताएगा। आई थिंक इफ़ आई मे रिकॉल आई कैन से ऐसा लास्ट ईयर भी कुछ हुआ था। मुझे अभी भी याद है कि मैं अपना जंपर पहन के सुबह के टाइम आ जाती थी, लेकिन ऑफ कोर्स आफ्टरनून में यहाँ तो टेम्परेचर वगैरह सब अंदर बढ़िया रहता है, बट बाहर निकलो तो वो हवा खाने लग जाती है हमें। और जब ये हवा खाने लग जाती है ना, तो हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। यू नो इट्स ऑल सर्कल, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। वो फिर ठंड आती है, फिर वो हवा आती है, फिर वो हवा के बाद हमें डॉक्टर पे जाना पड़ता है, फिर हमें ये, फिर हमें वो, फिर फलाना ढिमकाना, फिर हमें लगता है ओ इतने पैसे खर्च हो रहे, अरे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, अरे ये पैसे बढ़ते चले जा रहे, अरे अब क्या करें। आई अंडरस्टैंड ऑल दिस, लेकिन एक ही बात कह सकती हूँ, जो भी कुछ हो, मौसम कैसा भी हो, आपको अपना ख्याल रखना है और एक माउंटेन बन के खड़े हो जाना है इसे फेस करने के लिए। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, चाहे सिचुएशन आपके घर खरीदने की क्यों ना हो। तो ऐसे में हमारे पास आज एक स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनके साथ मैं बस थोड़ी ही देर बाद बातें करने वाली हूँ। इनका नाम तो आप गूंज जो है इनकी आप हम पर सुनते ही चले आ रहे हैं, NZPMI के पॉल, लेकिन इनसे बातचीत करेंगे इन अ बिट। वेलकम ऑन माई टाइम मेरे साथ कशिका के साथ 12 बजे तक कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए बिल्कुल 10 से 12 बजे का मंडे टू फ्राइडे का सफ़र बहुत खूबसूरत होता है। चलिए पहला गाना मैं आप ही को डेडिकेट करना चाहती हूँ।
1: बचाओ क्या

0: पिछले सात दिनों में ये सब है खोया।
1: एक्सपर्ट्स अड्डा।
2: तो जब मैं एक्सपर्ट अड्डा की बात करती हूँ और मैं बात करती हूँ कि क्या क्या चल रहा है, किस तरह से आप एक घूम फिर के जो कहानी मैंने आपको बताई थी अबाउट योर प्रॉपर्टी एंड हाउ इट गोज एंड NZPMI, एक ऐसा नाम है जो आप रेडियो पे कंटिन्यूसली सुनते चले आ रहे हैं, किस तरह से आप अपने घर को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप अपना एक एरिया जो है बढ़ा सकते हैं। एंड आई हैव समबडी हियर हु इज़ एन एक्सपर्ट इन ऑल दिस। This is none other than Paul Singh, who is the Managing Director and a Civil Engineer for NZPMI. NZPMI is New Zealand Project Management and Infrastructure Limited. And let me welcome Paul. And a very, very good morning to you, Paul. How are you today?
3: I'm good, thank you, Kashika, and thanks for getting me on air. Sorry for missing my earlier appointment.
2: It's fine. We are there for you now, always. Don't worry about it. Okay, so coming to the point straight away, I would like to ask you, Hindi-English dono mixed, okay? कि अगर हमारे पास खुद की एक प्रॉपर्टी होती है ऑकलैंड में, सपोज कीजिए, हैं, और ऐसे में हाउ कैन यू फाइंड आउट वेदर आपकी प्रॉपर्टी में एक सब डिविजन का पोटेंशियल है और क्या आप इसको डेवलप कर सकते, क्या ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा? सो इफ यू कैन आंसर दिस फॉर मी।
3: श्योर कशिका, इट्स एक्चुअली अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू अस एवरी सिंगल डे। ये क्वेश्चन बहुत सारी ऑडियंस के उसमें होगा कि ये किस तरफ से स्टार्ट किया जाए और ये डुएबल है कि नहीं है, और सबसे पहले ये ज्यादा पैसे खर्चे बिना, क्योंकि कई बार पीपल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू अंडरस्टैंड वेदर दिस कैन बी डन और नॉट, एंड दैट इटसेल्फ इज अ स्टॉपिंग रोड ब्लॉक। सो आई मीन द थ्री थिंग्स दैट वी बिलीव एवरीबडी नीड्स टू लुक एट देयर प्रॉपर्टी वुड बी इज वन।

0: that whether the zoning permits it or not. Now, zoning is usually residential, mixed suburban and mixed urban. This kind of zoning can be found on the council websites itself. So, if you thoda sa bhi Google karenge ki mera ghar kaun si zoning mein aata hai, wo zoning aapko planning maps mein mil jayega, geo maps mein mil jayega, jo ki council ki sites pe available hai, free of cost and things like that. So that is your first, step that you got to look at. Of course, the second step comes is the technical assessment of your site, which is where the information is available on the council geo maps, but you still need someone to read for you, or aap hamare paas bhi aa sakte hain, we will do that free of cost for you. That is mostly technical assessment, means like agar wo flood plain mein hai, agar uske koi natural hazards hai, agar uski topography theek hai, ya koi bhi aisa hazard hoga jo wo rok sakta hai development ya karne dega. So zoning first check hai, dusra uske natural specifications uska dusra check hai, aur teesra check feasibility hai. Wo dono aapko council mein nahi milenge, wo aapko खुद से देखना पड़ता है. हम लोग भी आपको करके देते हैं, जिसमें आप ये देखने की ठीक है अगर मैं एक घर को डिमोलिश करके पांच घर में बनाऊंगा तो वो पांच घर का वैल्यू कितना होगा. पीपल कैन रीड थ्रू द वेबसाइट्स, अगर उनका homes.com पे सोल्ड स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है, या बहुत सारी वेबसाइट्स है की हुई है जहाँ पे आपको पता लग जाता है कि कौन सा घर कितने फ्लोर का कितने में बिक रहा है. बट दैट वे यू कैन मेक इट की ठीक है कितना कितना मेरा लैंड का वैल्यू है, कितना उसके ऊपर लगेगा, दैट ऑफकोर्स वी फंड, एंड कितना पैसे मिलेंगे टोटल माइनस कितना मेरा मतलब लगा पैसा करके. सो दोज आर द थ्री चेक्स वी लुक एट बिफोर वी कैन से कि डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी गुड और नॉट.
1: सो यू आर टॉकिंग अबाउट कि अगर मान लीजिए लैंड में पोटेंशियल है लेकिन आपके पास फंड्स नहीं है, तो आप एक ज्वाइंट वेंचर भी कर सकते हैं.
0: Definitely. So this is where we come into the play, Kashika. A whole lot of homeowners, landowners have been, sitting back so far because they don't have the funding to develop, while the land has the potential.
1: Yeah.
0: And since land has enough potential that we would like to then come on a JV, and that's where we make that call. Agar aap, so JV, about 600-700K ya 1 million plus ka land mein potential hai, so then you don't mind coming on to a JV where you don't have to spend any funds and expertise. We will do all of that.
1: Wow.
0: Potentially, you will just come and offer your land as a collaboration and take away the benefits of what the subdivision will bring to the site.
1: Kya baat hai. I think this is really solving the problem. Ki agar aapke paas aapka land hai aur aapko lagta hai aap subdivision kare, to uske baad kya? Aap atak nahi jayenge, aur kyunki aap atkenge nahi, reason is none other NZPMI. जिनका सक्सेस इनका फोकस, आपका सक्सेस इनका फोकस रहता है. एंड द नंबर टू गिव अ कॉल टू देम इज 0800-4, दैट इज न्यूमेरिक 4, NZPMI, एंड द मोबाइल नंबर इज 0223-445-778. इनकी वेबसाइट है nzpmi.co.nz, जहां ये सब डिविजन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके साथ करते हैं. अ बिग थैंक यू टू यू पॉल, एंड वील कैच अप सून विद यू. टेक केयर, बाय बाय.
0: Thank you, Kashika. Thank you. Bye.
1: Bye. My time with Kashika. आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में. अभी तो नहीं.
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very that is a very acceleration.
4: That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This is my fancy English. That's a very.
5: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: After 10 AM.
1: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूँ गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
2: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800 564424.
3: Media Works Complaints. How can I help?
4: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
3: Nice.
4: And you talked me into creating this funny character.
3: Great.
4: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
3: Are you?
4: Yes.
3: Are you Bobby the Baker?
4: Yes.
3: What's that thing you do again?
4: Stop it.
3: You bring the mouth.
4: Stop it.
3: I'll bring the pie.
4: Stop it, please.
3: Okay.
4: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
3: So what's the problem?
4: My name's Bruce.
5: Advertise with
6: Media Works.
3: New Zealand listens to us.
7: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
8: Get in the loop with ANZ to earn cash back. So when holiday mode strikes,
9: room service,
8: money loops back,
9: room service.
8: Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
10: Craving हो रही है उस thick और creamy दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश natural yogurt से, जिसका हर spoon है एकदम delightful, 100% vegetarian, gelatin and gluten free. Perfect है smoothies बनाने के लिए, tangy dips बनाने के लिए, पनीर या chicken marinate करने के लिए, या बस सीधा कप से खाने के लिए, क्योंकि ये है naturally delicious, always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish, natural yogurt.
11: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
12: Office shout out.
13: ऑफिस शार्ट आउट की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास कॉल आया था प्रोफेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के समीर खन्ना जी का एंड साथ साथ मिस्टर टक्यार आपका भी. एंड आपने बताया कि दिवाली आने वाली है और बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स आप लेकर आ रहे हैं. ऐसे में दिवाली के मौके पे एक स्पेशल ऑफर जो है PFSL दे रहा है, जहाँ पे एक एलिजिबल लोन जो है 400,000 का आप सेटल कर सकते हैं, और जब आप सेटल करते हैं तो आपको $250 वर्थ का एक गिफ्ट कार्ड मिल जाता है, प्लस आपका नाम चला जाता है इन अ ड्रॉ टू विन अ 50-inch TV. क्या बात है. तो अपने ड्रीम को एक रियलिटी बनाइए और PFSL के साथ इस दिवाली पे जुड़ जाइए. उन्हें कॉल कीजिए, PFSL को आप सर्च कीजिए PFSL, या फिर कॉल कीजिए उन्हें ऑन 09846-9934. टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई किए जाएंगे.
11: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Wah.
1: How?
0: I'm good.
2: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.
3: याद रहे कि आज IDC fixtures जो है ये शुरू हो रहे हैं और डे वन जो है इसका सुबह 11 बजे से जो है डिफरेंट मैचेस जो है स्टार्ट होने वाले हैं. भाई पूरी कोशिश रहेगी आपको अपडेट देने के लिए. पूल ए पूल बी दोनों तरफ से सुबह 11 बजे जो मैच है वो खेला जाने वाला है. 1:30 ऑनवर्ड से रात 8 बजे तक भी मैचेस चलने वाले हैं.

0: कोई ब्रांच नहीं है।
1: वैसे हमारी कोई ब्रांच है तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। शेयर ये करना चाहती हूँ दैट हम सब जाते हैं डील्स ढूंढने के लिए। मुझे तो वैसे भी डीलू क्वीन बोला जाता है, बट हम ये डील्स देखने के लिए जब मार्केट में जाते हैं तो एक वुलवर्थ की डील थी ना, जो 3 for 20 हमेशा होती थी, एक स्पेशल्स उनके चलते रहते थे। नाउ दिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद 3 for $24.99 ऑफर। ये चेन इन्होंने बताया कि इट वाज वेरी पॉपुलर सिंस इट वाज लॉन्च इन 2018। अब शॉपर्स जो थे 3 meat items या 3 seafood items एक साथ इतने सस्ते प्राइस पे खरीद लिया करते थे, बट देन इट इज सेड दैट कस्टमर्स वांटेड मोर। जब उनसे बात की, उनसे क्लियर करके पता चला दे वांटेड बिगर पोर्शन साइजेस, और उनको लगा कि शायद वैरायटी जो है उनकी फैमिली के लिए वो जो 3 for $20 जो है उसमें कम आता है अमाउंट। सो जब ये फीडबैक लेने की बात चाहिए, उन्होंने सबकी बातों को ध्यान से सुना, और जो नए पोर्शंस जो अब बनकर आएंगे वो आई थिंक प्रॉब्ली विद अ हायर वेट आएगा शायद, और कॉस्ट पर यूनिट जो है अब लगता है इट प्रॉब्ली माइट टर्न बेटर। एंड अब आई डोंट नो, आई हैवंट येट गॉन अगेन टू शॉप, बट आई एम श्योर अब अगर आपने शॉप किया है ये 3 for $20 वाला जो स्लॉट है, जो जहाँ खरीदते थे हम काउंटडाउन से या जो भी फुलवर से, अब वो ख़त्म हो चुका है। $24.99 का ये हो चुका है। हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं ना।

0: Matter.
1: तो संजय लीला बंसाली जो है बिल्कुल तैयार हो गए हैं अपनी फिल्म की रिलीज के लिए, जहां पे उन्होंने लव एंड वॉर ये फिल्म जो है जनवरी में आएगी, लेकिन इसके बाद कहा जा रहा है इवेंचुअली एक ऐसी फिल्म थी जो सलमान खान की इंशाल्लाह जो थी वो करना उनका बहुत बड़ा एक ड्रीम था, बट उन्होंने कहा कि हो सकता है सलमान एंड आलिया भट्ट मिलके इस फिल्म को दोबारा से रीइंस्टेट करके लुक्स लाइक इट माइट जस्ट बी कंसिडर्ड एज एन इंटरेस्ट, और फिर हो सकता है इसको लॉन्च किया जाए आफ्टर द मूवी रिलीजेस. तो गंगूबाई काठियावाड़ के बाद आलिया भट्ट हैज़ बीन अ वेरी बिग फेवरेट विद संजय लीला बंसाली, और इनफैक्ट इनको क्रिटिकल रिकग्निशन भी इस फिल्म के लिए मिला था. नाउ शी इज़ कोलैबोरेटिंग अगेन विद हिम विद लव एंड वॉर, जिसमें ये रणबीर कपूर एंड विकी कौशल के साथ नज़र आने वाले हैं, और कहा जा रहा है दे माइट रीयूनाइट फॉर दिस मूवी इंशाल्लाह, जो 2019 में आइडली यू नो लॉन्च की जाने वाली थी. कहा यह जा रहा था कि शाहरुख खान प्रोबेबली माइट टेक ओवर द लीड इन इंशाल्लाह, बट इस साल की शुरू की ये बात थी, लेकिन अब पता नहीं वो लेते हैं या फिर इसमें सलमान खान आ जाते हैं, या फिर पॉसिबली द स्टोरी इज़ लुकिंग फॉर अ यंगर एक्टर. कुछ भी हो सकता है, सलमान है, शाहरुख है, या यंगर एक्टर है. आलिया भट्ट विल डेफिनेटली रिमेन वेरी शेयर्स. ऑलराइट, सो हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब हम पहुँच रहे हैं टुवर्ड्स द ड्रीम. कोई ऐसी ड्रीम है आपकी जो आपको लगता है कि इंटरप्रेट करनी है, तो मुझे 5599 पे आप टेक्स्ट करें या 0800 00 हम पर कॉल करें.
2: 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
0: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है,
0: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
0: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
6: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and this seat, and that seat.
7: James, this is a radio ad.
6: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
8: Celebrate Macca's 50th with the Meal Steal Combo for $17. That's a Big Mac, cheeseburger, fries, a soft drink, plus a birthday bonus from the warehouse or time zone for a limited time. The Meal Steal Combo. On now at Macca's. T's and C's apply.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
10: Glad I got my enrollment sorted the other day.
11: See, Mai, I told you it was easy.
12: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
11: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
12: Really? What if I miss it?
11: Well, your vote won't count for this year's election.
12: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
13: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: Okay, Dream Diary ki jab main baat karti hoon, to you know, kal I was talking to you about something, jahan pe main keh rahi thi cheetiyan. या यू नो किसी को नज़र आई एंड वो चीटियाँ क्या हो सकता है. सो आई डिड स्पीक अबाउट दैट, बट देन यू नो दे से कि कभी कभी आप वो चीज़ें जो सोच रहे थे एट द बैक ऑफ योर माइंड, आपको याद नहीं रहता जब आप उन चीज़ों को दोबारा सामने, जब तक किसी और कोई और उसको आपको याद नहीं दिलाता. एंड दिस स्पेशली हैपन्स ड्यूरिंग द ड्रीम टाइम. फिर आपको सडनली याद आने लगता, ओ माई गॉड या दैट्स कुड हैव बीन ट्रू. सो आपका माइंड जो है आपकी फिजिकल फटीग को बताता है कोई इलनेस है, कोई एंग्जाइटी है. ये जो टिकलिंग या क्रॉलिंग सेंसेशन आपकी बॉडी में आपको फील हुआ सपने में, उससे रिलेटेड है. एक बात तो है कि कभी कभी ये जो यू शुड थिंक कि ये एंट्स क्यों बाइट कर रहे हैं. तो आपने टेक्स्ट किया था, आपने कहा था कल के ये एंट्स ऐसा लगता है कभी या तो बाइट कर रही होती हैं या इनका कलर डिफरेंट होता है. इज देयर सम डिफरेंस बिटवीन इट? सो पेनफुल बाइट मीन्स अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ बीइंग अटैक्ड. या फिर आप जब अपनी लाइफ में उठते हैं सोकर, सो नींद से जागते हैं, तो आपको लगता है कि आप प्रोवोक्ड फील कर रहे हैं ऑलरेडी कि अरे मुझे सो एंड सो पर्सन ने बाइट किया था, और वो माइंड में आपको एंट्स की तरह से दिखाई दे रहा है. अनदर थिंग, रेड एंट्स जनरली कहा जाता है दे लिंक टू हाई इरिटेशन या फिर एंगर. वाइट, व्हाइल आई टॉक अबाउट रेड एंट्स, ब्लैक एंट्स जो होते हैं दे कैन बी नेगेटिव, बिकॉज ब्लैक कलर कभी कभी नेगेटिव कलर में भी माना जाता है. दे कैन बी हैवी एंड दे कैन बी नेगेटिव थाट पैटर्न्स एज वेल. सो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जब आप देख रहे होते हैं कुछ चीज़ों को और आपको याद नहीं रहता, फिर आपको एक जब मेरी बात हो रही होती है उस दौरान याद आ जाता है. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड बहुत से लोग जो हैं जो इस समय प्रोग्राम को सुन रहे हैं बता देते हैं इलेक्शन स्पेशल जो है वहाँ सनी कौशल जी जो हैं, ये इनका एक एपिसोड रिकॉर्ड किया गया एंड इनसे बातचीत की गई है अबाउट द कीवी बिजनेसेस विच आर फेसिंग अ प्रेशर अबाउट राइजिंग क्राइम एंड रिपीटेड ऑफेंडर्स फॉर इमिग्रेशन वर्कफोर्स शॉर्टेज वगैरह है, कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस, ऑल दीज थिंग्स. ये एक एपिसोड बहुत ही खूबसूरत रिकॉर्ड किया है एंड आप 5599 पे टेक्स्ट जरूर कर सकते हैं, आप ड्राइव लिख के भेजें.
13: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
1: ब्रेकफास्ट ने भी एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात की थी जहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग सेटल्ड इसके बारे में बातचीत की, राइट फ्रॉम होम लोन्स टू मैरिज क्या है. BF लिख के भेजे 5599 पे, पूरा ऑडियो आप सुन सकते हैं.

0: business loan, commercial loan or construction.
1: दिवाली आ रही है, जब दिवाली आने लग जाती है तो हम आप लोगों के लिए गिफ्ट आइटम्स लेकर आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें लेकर आती हैं जो आपको बहुत ही फ़ायदा कर सकती हैं आपके लिए। आपके किसी एक परिवार को हम देने वाले हैं $5,000 में से आपका शेयर। अब बताइए, फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ये होने वाला है और आपको बता देते हैं कि अगर आप अपना फॉर्च्यून बनाना चाहते हैं, $1,000 कैश लेके जाना चाहते हैं, तो बस आपको क्या करना है, आपको फॉर्च्यून लिखना है 5599 पे। और आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, आपको फॉर्च्यून लिखना है 5599 पे। और आप मुझे इस समय कहाँ से सुन रहे हैं, यही लिख के आपको मुझे भेज देना है। फॉर्च्यून के बारे में बता देती हूँ, उनके फॉर्च्यून के होल ग्रेन्स एसेंशियल विटामिन्स फॉर्च्यून जो है आपके लिए हर बार, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक फॉर्च्यून आपका घर में आपका आ ही जाता है और वो फॉर्च्यून आपके लिए फॉर्च्यून के प्रोडक्ट्स लेकर आ जाते हैं। चलिए, तो क्रुणाल आप ग्लेनफील्ड से सुन रहे हैं एंड आई एम वेटिंग फॉर अदर्स एज वेल टू रिस्पॉन्ड टू दिस। अरे भाई, अरे अंबिका आप सनी वेल से सुन रही हैं मुझे, लेकिन साथ में मेरे पास 8477 एक बड़ा खतरनाक सा ड्रीम देखा है आपने। अच्छा, इसके बारे में अगले घंटे पे मैं बात करती हूँ, वरना रह जाता है ढेर। आप ड्रूरी से मुझे सुन रहे हैं, वाओ।

शाउट आउट टू मैंगरी से, आप मालकम सुन रहे हैं, वायुकू से नबी, एंड पुकेकोई से नीलेश दयाल, पुकेकोई से केतन, एंड पुकेटे से हैमिल्टन से आप योगी आप सुन रहे हैं, ऑकलैंड से सीबीडी से कोई और सुन रहा है, राजेश्वरी फ्रॉम हेंडरसन। आपको फॉर्च्यून लिखना था और आपको अपना नाम लिखना था और कहाँ से सुन रहे हैं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 18, overnight temperature of 7. आज का forecast बताया जा रहा है, आसमान पे बादल रहेंगे, easterly शाम तक कम पड़ती चली जाएंगी. It feels like 15 degrees right now. 7:30 PM sunset बताया जा रहा है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid-morning Mazah.
3: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai.
2: My time with Kashika.
1: स्टूडियो की घड़ी में 11:03 हो चुके हैं. क्योरा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मैं काशिका आपका साथ निभाने वाली हूँ 12 बजे तक. मिड मॉर्निंग मजा का वक्त भी शुरू हो चुका है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डर लग गया है, क्योंकि एक सपना जो है वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. मैंने एक्चुअली देखा जाए तो कौन सी पिक्चर थी, मिस्टर नटवरलाल? हाँ, वो सुन सुन के गाने हम बड़े, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो. सामने था एक शेर और फिर यू नो दैट सॉन्ग. When आपका टेक्स्ट आया तो मुझे तो गाना ही याद आ गया था. बट इट्स ऑल राइट, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट इट वेरी शॉर्टली. एंड जितने लोगों ने अभी अभी फॉर्च्यून में भाग लिया है तो आपको बता देती हूँ. योगी फ्रॉम पुकेटे हैमिल्टन, आपका नाम भी विड्रॉ में ऐड कर लिया. नीना फ्रॉम ऑकलैंड CBD, आपका नाम भी ऐड कर लिया है. ध्रुवी फ्रॉम माउंट वेलिंगटन, आपका नाम भी ऐड कर लिया है. सो कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है माई टाइम मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के दरमियान. By the way, you know, I've done some theater as well, quite a lot actually. Back home in India, I have done quite a lot of theater. यहाँ पे theater किया था अभी last month, बहुत मज़ा आया. And when I saw the makeup being done on the men, बहुत आराम से उन्होंने makeup करा लिया था. Because theater है, या फिर आप जब dance कर रहे होते हैं, you know, तभी भी आपको makeup की ज़रूरत पड़ती है. अब ये makeup के brushes की बहुत importance होती है. क्या इम्पोर्टेंस होती है, थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी देती हूँ. ऑफकोर्स इस घंटे पर भी जीतने के लिए मौका दूंगी जहाँ आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा. वैसे हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप हमारी वेबसाइट और रोवा ऐप के जरिए ज़रूर समझ सकते हैं व्हेन एंटरिंग हमारा दिवाली जो हम फॉर्च्यून से रिलेटेड कर रहे हैं.

0: Monster.
1: सो सबसे पहले तो मुझे खबर देनी है कि जो बिल्डिंग्स हैं इवैक्यूएट हो गई हैं. अ सेक्शन ऑफ खाइबर पास रोड जो ऑकलैंड के न्यू मार्केट के पास है, वहाँ पे गैस लीक की संभावना बताई जा रही है. खाइबर पास रोड के आसपास रोड जो बिटवीन क्रोहर्स्ट स्ट्रीट एंड ब्रॉडवे जो है इस समय बंद है. एंड सम बिल्डिंग्स नियर बाय हैव बीन आस्क्ड टू यू नो इवैक्यूएट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर. ये कुछ एक लाइन जो थी वो डैमेज हुई है, जिसकी वजह से कुछ काम चल रहा था और वो लाइन डैमेज हुई, बट कोई इंजरीज बताई नहीं गई हैं. मोटरिस्ट से कहा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर एरिया को आप अवॉइड करें. सो द एरिया विड बी बिटवीन खाइबर पास रोड नियर न्यू मार्केट एंड क्रोहर्स्ट स्ट्रीट एंड ब्रॉडवे. चलो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन कर रही थी अबाउट मेकअप. ऑफ़ कोर्स ये कुछ ब्रशेस जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. एक नेचुरल फाउंडेशन होता है, हमने अपने एक ब्रश से लेके उसको अच्छी तरह से हमने पूरे फेस पे उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया और उसके बाद उसके लेयर्स जो होती हैं वो लगाने के लिए. लेकिन ये ब्रश इन इटसेल्फ, चाहे वो पाउडर ब्रश हो, फाउंडेशन ब्रश हो, किसी तरह के भी ब्रशेस होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट तरह के ब्रशेस होते हैं. मेक श्योर एक्सेसिव पाउडर लुक आप अपने फेस पे ना रखें. जस्ट टू गिव दैट स्मॉल टिप टू यू, बट देर इज ब्लश ऑन का अलग ब्रश होता है, आपके आई लाइनर का अलग ब्रश होता है, आपके आईज के ऊपर लगाने का अलग ब्रश होता है, आई शेडोज को लगाने का. और फिर एक एंगल ब्रश होता है फॉर योर आईब्रोज इट्सेल्फ. कितने तरह के ब्रश होते हैं बताइए. आई मीन यू जस्ट नेम इट एंड द ब्रशेज आर देयर, बट मोस्टली कहा जाता है व्हेन यू आर यूजिंग ऑल दीज ब्रशेज टुगेदर, इंश्योर दैट आप इनको रेगुलरली गर्म पानी और साबुन के साथ धो लें, उसके बाद इसको ड्राई कर लें एंड दे विल लास्ट यू फॉर अ लॉन्गर टाइम.
2: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
2: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
2: बस इतना ही
3: सर. मैं चैट

0: GPT हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
1: This Diwali, listen to Hum on 104.2 FM or Rova and take part in Festival of Fortune and get in the draw to win your share of $5,000 worth of prizes like grocery vouchers, fuel vouchers, home deco and furniture vouchers, building and garden supply vouchers and cash. Festival of Fortune, brought to you by Indelible Homes, your building experts. Harrington Living, Manukur, beautiful furniture with 60 months interest-free. NZPMI, your local development experts. Logic Finance and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Swimming pool heat pumps under $2,000. Outdoor four-piece resin lounge set just $299. Outdoor gazebos just $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
6: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
7: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
8: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
9: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
10: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
11: So, meri six word ki story aaj kafi achhi hai. The speed of growing up together. क्योंकि मैंने थीम रखी है बच्चे, किड्स, एंड आई एम वेरी श्योर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपनी स्टोरी बना सकते, कहानियाँ बहुत होती हैं. हाँ, मैं बात कर रही थी, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो. कई साल पहले की बात है, घने जंगलों से गुजरता हुआ मैं चला जा रहा था, आ रहा था और सामने आ गया एक शेर. बिल्कुल यही कहानी आपकी निकली. माय गॉड, आपको इस तरह से सपना आया. 8477 दैट हाय कशिका जी, आई हैड अ ड्रीम वेयर आई वाज वॉन्डरिंग थ्रू अ जंगल एंड सॉ अ टाइगर. वी लुक्ड एट ईच अदर एंड दैट्स ऑल. क्या बात है. एक बात बताऊँ आपको, जंगल और टाइगर एक साथ देखना, ऑफकोर्स टाइगर तो जंगल में ही होता है, जू में भी पाया जाता है. You are navigating a new life, you know, जिसमें अभी इस समय chaos चल रहा है शायद, और एक intense personal growth आपकी बहुत important है, क्योंकि ये एक navigation जो होता है जंगल के through होता है ना, तो आपकी life में भी एक navigation है. और आपके अंदर, मन के अंदर जो एक subconscious mind में आप कहीं कहीं wander कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और उसमें से आपको निकल कर आना ही आना है. Now when we are talking about tiger, अगर हम टाइगर को देखते हैं सपने में, इट ब्रिंग्स इन वेरी गुड फॉर्च्यून, जैसे एक स्पिरिचुअल पावर, करेज लेकर आते, क्योंकि टाइगर इन रियल लाइफ कह सकती हूँ एक पर्सनलाइज पावर आपके अंदर एक बोल्ड एक्शन लेने के लिए, और वो आपको अगर देख रहा है, आपके आमने सामने हो रहे, द स्पिरिट ऑफ एन एनिमल एक्चुअली ये दिखाता है आपकी डीप फीलिंग्स, आपकी शार्पनेस, आपकी अवेयरनेस, किस तरह से आपकी गट जो है वो रिएक्शन देती है उन चीज़ों पर। हुआ है ऐसा कुछ? ओके, आईडीसी का जो मैच है अभी शुरू हो चुके हैं दो जगह, दोनों पूल्स का, उसकी अपडेट अगर मेरे पास आती है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

अब व्हाट इज अप, क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बनता है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। लेट्स डू इट।

वैसे मेरे पास माफ़ कीजिए IDC के सुपर प्रीमियर फिक्स्चर्स जो हैं वो आ चुके हैं, और कहा जा रहा है कि सिया काका वर्सेस किरीबाती, आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट, माई अपोलॉजीज इफ़ आई एम नॉट, सुबह में एक मैच जो है अभी HFC बैंक स्टेडियम में शुरू हो चुका है, और इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे राखी राखी वर्सेस नाडोगो जो है पूल बी का मैच भी आज खेला जाने वाला है. सो ये अपडेट्स जो हैं मैं आपको बता तो रही हूँ, लेट्स वेट एंड वॉच. लेकिन 11th October के दिन चैम्पियनशिप ख़त्म हो जाएगी और वी विल गेट टू नो द रिजल्ट्स एंड होपफुली फीजी डे पे कहा जा रहा है ये सेमीफाइनल्स 10th October के दिन खेले जाएंगे.

0: Klassiker.
1: Boah.
2: Hau.
1: An Gott.
3: बातें कर रहे हैं जब अद्भुत होने की, तो अद्भुत बात तो ये है कि हम आपके लिए लेकर आ जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा लुभाने लग जाती हैं। अब जब बात करती हैं वो है फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि दिवाली जब आता है तो बहुत सारी खुशियां, उमंगे लेकर आता है। ऐसे में मेरा सेकेंड राउंड अब शुरू हो चुका है। अब सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, फ़ोन उठाना है। फ़ोन उठाकर आपको बताना है कि क्या आप फ्यूल वाउचर जीतने चाहते हैं, $1,000 का फ्यूल वाउचर। एक विनर होगा, ठीक है। अब बिग थैंक यू पहले तो कर दूं मैं, किसको कौन दे रहा है। इंडेलिबल होम्स जो आपके बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैं, एंड आपके लिए ये indelibleholmes.co.nz की वेबसाइट अवेलेबल है। आपको कॉल नहीं करना, लेकिन आपको 5599 पे IH इंडेलिबल होम्स का जो है आपको मुझे टेक्स्ट करना है। IH लिख के भेजिए इंडेलिबल होम्स के शॉर्ट फॉर्म को। इसके साथ साथ आप लिखिए माई टाइम, आप कितने सालों से सुन रहे हैं। देखिए सिंपल सवाल है, माई टाइम आप कितने सालों से सुन रहे हैं। IH लिखिए, $1,000 का एक बंदा या बंदी वाउचर्स लेके जाने वाली है। कब से सुन रहे हैं, याद रहे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए आप हम FM के वेबसाइट पर जा सकते हैं, rova.nz पर जा सकते हैं। और ये अगले 5 मिनट तक, यानी कि दिल से दिल तक के जो गाने आएंगे तब तक मैं बजा सकती हूँ। याद रहे IH आपका कीवर्ड है, आपको 5599 पे IH लिखना है, माई टाइम कब से सुन रहे हैं, अपना नाम लिखना है, आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड कर दूँगी।
4: मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा रहता रे।
5: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने।
4: गणराज गजानन गाऊंगा।
5: हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
6: हम, you know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
7: Hey you with the ears. Your skinny phone plan now has rewards. So, or you're scrolling, tapping.
8: Babe, wake up, look at this meme.
7: Ha-ha reacts and thumbs up from Dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 Everyday Rewards points. Skinny and Everyday Rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the Skinny.
9: Happy, happy, happy, oh.
10: Voting feels easier when you know what to expect. Accessible resources are available to help you prepare to vote in the 2026 general election. Get information in the format that works for you. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Visit vote.nz or call 0800 36 76 56. You can vote from Monday 26 October to 7 p.m. on Election Day, Saturday 7 November. Brought to you by the Electoral Commission.
11: Thinking of switching lanes? How about insurers? Switching to Tower is easy. Plus, get $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.

0: यू नो आई हैड समबडी ओवर एट माई हाउस, और उस समय क्या हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि मैं चावल धो रही थी उनके सामने क्योंकि दे हैड कम फॉर डिनर, और फिर मैंने वो चावल धो के मतलब आई वॉज वॉशिंग द राइस एंड वो पानी फेंक रही थी। शीशे से पानी मत फेंक आशिका, मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहते ये पानी जो रिसाइकल हो सकता है। मैंने कहा अच्छा, और वो भी चावल का मतलब पानी जो है। कहती इसको प्लांट्स में आप डालोगे ना तो बहुत फ़र्क आएगा। आई ट्राइड इट और इनफैक्ट मेरे कुछ प्लांट्स में ब्लूम होने शुरू हो गए। वॉजन दैट ब्यूटिफुल आइडिया? आई थिंक आई क्वाइट लव्ड इट। ओके, नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट पीपल, जो कौन कौन सुनते हैं। हाय, IH लिख के भेजा आपने, परफेक्ट। आई लिसन डेली फ्रॉम 9 AM एंड स्टेज ऑन ऑल डे एट माई वर्क प्लेस और इन द गार्डन। कार लॉक, आपका नाम है प्रवीण महाराज। प्रवीण जी थैंक यू वेरी मच। अमृता भाटिया, आप 7 सालों से सुन रहे हैं। राजेश्वरी, आप मुझे 15 सालों से सुन रही हैं। ऑफकोर्स मुझे 15 साल हम के साथ तो हो ही गए हैं। इसके साथ लीना, आप 5 साल से सुन रही हैं। सोनाली फ्रॉम 7 ईयर्स, विशाल फ्रॉम 2020, सनिल फ्रॉम 10 ईयर्स। ओ माई गॉड, आज माई टाइम मैंने कब शुरू किया था? 20 अब हो गए 12 साल माई टाइम के साथ। उसके पहले लंच बॉक्स भी किया है, आफ्टरनून मॉर्निंग शो भी किया है, ब्रेकफास्ट शो किया है फॉर आई थिंक दिस वाज इन सैटरडे ब्रेकफास्ट शो आई यूज़ टू डू, एंड देन कुछ टाइम के लिए मैं और रुजबे हमने ब्रेकफास्ट शो भी हमने किया था जब विजय एंड पूजा वर नॉट देयर। ओके, IH विचार आपने, कृणाल आप 10 ईयर्स से, अमीशा मद आप, मिनास आप 10 साल से सुन रही हैं। धीर, आप क्वालिफाई नहीं होते बट चलो ठीक है, यू नो आई हाउ आई एम, आई विल स्टिल गिव यू द मार्क्स टू गेट इनटू द ड्रॉ, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: सो मैंने एक स्टोरी के एक छोटे से इमेज को पोस्ट किया फेसबुक के पेज पर, जहाँ पे मैंने बताया कि एक बच्चा जो है वो 11 साल का है एंड ही यूज टू गेट बुलीड कि वो अपने बाल क्यों नहीं काट रहे, लेकिन ही केप्ट ग्रोइंग देम फॉर 11 ईयर्स। और उसके बाद उन्होंने 11 साल के बाद अपने बालों को डोनेट किया फॉर चिल्ड्रन हु आर बैटलिंग फ्रॉम कैंसर। इट्स अ पर्सनल मोटिवेशन फ्रॉम विद इन बिकॉज ही हैड लॉस्ट 4 मेम्बर्स इन हिज फैमिली जिन्हें कैंसर हो गया था, इंक्लूडिंग 3 ग्रैंड पेरेंट्स। ये डोनेशन वॉज ऑफ 18 इंचेस विच इज़ 46 सेंटीमीटर्स और इनका नाम है जेकब मैकपी। अब ये 11 ईयर स्टूडेंट हैं फ्रॉम इंग्लैंड जिन्होंने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ऐसा किया। आई लव सच ब्यूटिफुल थाट्स एंड थिंग्स। तो अभी मैंने नाम नहीं दिया था बट आई एम गोना ऐड हिज नेम टू इट, यू कैन प्रॉब्ली गूगल हिम एंड सी एंड अंडरस्टैंड हिम मोर। तो चलिए इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है मंगलवार, लेकिन बता देती हूँ आज पूज्य राजन जी का आखिरी दिन होगा जहाँ प्रवचन कर रहे हैं श्री राम मंदिर में, तो आप 7 से 9 बजे के बीच में वहाँ पहुँच सकते हैं। तो अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास जितने लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू एंड कीप हमिंग विद मी काशिका ऑन माई टाइम 10 से 12 बजे तक। यू गाइज रॉक एब्सोल्युटली।

0: with Ketan.
1: क्या हो रहा, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। वैसे यस, आप मुझे बताइए हाउ इज योर डे बीन, अभी आपका मॉर्निंग कैसा रहा? मॉर्निंग के बाद जो ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट टाइम होता है वो अभी काफी लोग ब्रंच भी करते हैं 10 से 12 के बीच, सो इफ यू हैड दैट क्या खाया आपने? एंड अगर लंच करने वाले हैं बहुत ही जल्द तो यस, डू लेट मी नो, आप 5599 पे मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं। होम सिक रेमेडीज में थोड़ी देर में आप सभी के लिए लाइंस ओपन हो जाएगी वे यू कैन कॉल मी 0800-004-866 पे और बताइए कुछ चटपटी खबर, यानी कि क्या आप खाने वाले हैं या फिर कुछ ऐसी रेमेडीज या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन जो आप सचमुच बहुत ज़्यादा मिस करते हैं यहाँ पे बीइंग इन ऑकलैंड। बट उसके अलावा एक स्टोरी भी लेके आने वाला हूँ, यानी कि आई आई एम ट्राइंग टू गेट सम अमेजिंग स्टोरी। कल एक हॉरर स्टोरी बताई थी तो आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को कुछ हटके आपके लिए स्टोरी लेके आऊँगा। सो आपको क्या करना है, आपको बस स्टे ट्यून रहना है और सुनते रहना है मुझे आज के शो में। सो यप, डोंट गो एनीवेयर, कीप ट्यूनिंग एंड लिसन टू मी अंटिल 3। मेरा नाम केतन है, एन्जॉय दिस सॉन्ग होर नाच बाय रितु पाठक।

Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. Well, yes, let's talk about homesick remedies. क्या होमसिक रेमेडीज की बातें हैं? यहाँ पे एक मैसेज आया मुझे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं. एक वीडियो डाला है मैंने, काफी फनी है. I couldn't stop myself. So basically, I was going out and वहाँ पे मैंने दो एनिमल्स के बीच में हैकिंग देखी और obviously it was quite funny. तो मैं उस पर हंस लिया, लेकिन हंसने के बाद जो रिएक्शन हुआ है वो मैंने पोस्ट डाला है वहाँ पे हमारे सोशल मीडिया पे. सो यस, गो एंड चेक इट आउट. हमारे फेसबुक पे भी 104.2 FM या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा. अगर टिकटॉक पे भी हैं तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी देर मिल जाएगा. बट गो एंड चेक आउट कि मैं कौन से एनिमल्स की बात कर रहा हूँ. एंड यस, जस्ट टू गिव यू एन अपडेट, नो एनिमल्स हैज बीन हार्म्ड ड्यूरिंग दैट शूट. Shoot as in like filming, not literally shoot. So yes, go and check it out on our social media. But yes, Yash bhai, thank you so much aapke message ke liye. Inhone likha hai, walked into a local barbershop yesterday just for a simple haircut, a hair trim and beard lineup. The guy finished the whole thing in 12 minutes. Barely spoke two words, didn't even offer a head massage. And charged me $60. Bhai saab, $60? Well, you know, back home when we used to do, then of course it used to be like more like a massage and gossip, talking to each other. And then, yeah, it is all, the whole thing takes around 45 minutes of relaxing as well. And if we are lucky, then we get the chai as well. And just for 15 rupees. 15 rupees to nahi hoga itna.

सस्ता नहीं है बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर मैंने जो लास्ट हेयर कट करवाया था इंडिया से उसने मुझसे 200 रुपीज़ लिए थे नॉट वेरी फार नॉट वेरी लॉन्ग टाइम बैक बट आई नो दैट 10-15 थे बट वो तो बहुत ही पहले लाइक लिटरली आई वॉज अ किड तब मेरे को लग रहा है इन्होंने शायद जब अगर बाल कटवाए होंगे उसके बाद से शायद कभी कटवाए नहीं और काफ़ी टाइम हो गया होगा इस वजह से ही आई मीन लाइक राहो यश भाई स्टिल मे बी थिंक दैट बट यश भाई प्लीज बताइए यार 15 रुपए में कहाँ और कैसे कटवाते पेड़ के नीचे तो नहीं कटवाते ना जस्ट जोकिंग बट यहाँ पे $60 भी पेइंग दैट इज अ लॉट यार कहाँ से कटवा रहे हो ये भी मेरा सवाल है क्योंकि मैं यहाँ पे पापड़ोरे में एक जगह है वहाँ पे मैं हेयर कट करवाता हूँ स्कूल के पास में कहीं है वो सिर्फ मुझसे $25 देता है जी हाँ $25 लेता है हेयर कट करवा देता है बट ऑब्वियसली ट्रिमिंग एक्स्ट्रा है सो इट माइट बी समवेयर अराउंड $30 or $35 बट स्टिल 40-50% चीपर देन वॉट यू बीन पेइंग अनलेस इफ यू आर लिविंग समवेयर एल्स लाइक मैं तो साउथ की बात कर रहा हूँ आप मुझे बताने कहाँ कहाँ मतलब कहाँ से मुझे मैसेज कर रहे हैं डू लेट मी नो बताइए मुझे 5599 पे उसके बारे में भी बट इस चीज़ को ऐसे ही कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा तो है लाइक यू नो पीपल डोंट टॉक अ लॉट एंड दे आर सो बिजी इन टू यू नो थोड़ा बहुत बातचीत कर लेंगे बट ऑफकोर्स हर एक चीज़ पैसा तो है यहाँ पे राइट नॉट लाइक बैक इन आवर कंट्री जहाँ पे आराम से मसाज मिल जाती थी फ्री ऑफर भी मिल जाता चाय भी मिल जाती थी या हर एक चीज़ महंगी है आप क्या करें करना ही पड़ता टेंशन होती ना दिमाग में इस वजह से बट थैंक यू फॉर सेंडिंग मैसेज और बट हाँ $60 यार दैट्स अ लॉट आई फील but of course if you love this guy ek hota na kabhi kisi ka personal barber bhi hota like he or they don't want to go anywhere else because they know ki bhai ye mere baalon ko janta hai ye mere taste ko janta hai that is different thing but still I'm curious to know yaar $60 is it too much or is it not bataiye mere listener $60 agar aap haircut karwate hain to aap kitna pay karte hain मुझे बताइए 5599 पे यश एक्चुअली वांट्स टू नो यस नेशन नहीं यहाँ पे यश एक्चुअली वांट्स टू नो आप मुझे बताइए 5599 पे लंच बॉक्स विद केतन मुझे पसंद है लड़का हम कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन माजे दिए मोमबत्ती है पहले दिनों तेरे उत्ते आँख रखिए तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दिल मंगिए

0: Idea.
1: Streaming on Rover.
2: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
3: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
2: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
4: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
5: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं, तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz। दैट्स commonwealthvault.co.nz।
6: Media Works Complaints, how can I help?
7: Yeah, hello?
6: Hi.
7: Hi, yeah, can you guys take a radio jingle out of my brain?
6: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
7: Well, okay, well, what about something like a brain surgeon?
6: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
7: Great, sing it to me.
8: Advertise with
9: Media Works.
8: New Zealand listens to us.
10: It's Farmer's Sleep Sale with super deals across all Sleepyhead Queen beds. Get the chiropractic firm mattress now $1,199 or the Balance Plus Queen bed set now $2,699. Great bed deals now on at Farmer's Sleep Sale. Conditions and exclusions apply.

0: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
1: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
2: Lunchbox with Ketan.
3: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
4: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Ek message aaya hai specially for Yash bhai. Yash bhai, Sanjay ji ka message hai. Wo kehte hain, I have my haircut at Ash Cuts. Papa Toy Toy, of course, office shout out pe bhi inka naam liya jayega. Very reasonable at $20 for normal cut. He is very good at his job and you do need to book an appointment. So no waiting in queue for hours like most other places. Sanjay bhai ne ye message kiya hai. Thank you so much, Sanjay bhai. And Yash bhai, mere ko pata nahi kyun aisa lag raha hai ki aapko loota ja raha hai. Ya phir I don't know like how long your hair is. Length pe bhi depend karta hai, right? I mean, how long your hair and then what you doing? Maybe shampoo ya phir massaging. I don't know what you exactly doing. But do let me know, yaar. But hope ye jo message aaya hai, usse shayad aapko naya साथी ढूंढना पड़े, नए बालों का साथी, हेयर कटिंग वाला जो बार्बर है पर्सनल, वो आपको शायद ढूंढना पड़े. बट यस, स्टे ट्यून. अगर मुझे और भी कोई मैसेज आता है, सजेशन आते हैं, तो डेफिनेटली बताऊंगा. एक और मैसेज आया नील भाई का. भाई, आई डू माय हेयर कट जस्ट यू योर सेल्फ डू क्या. अच्छा, सॉरी, माई बैड. भाई, आई डू माई हेयर कट जस्ट फॉर $10. एनी डिज़ाइन और एनी शेप. वेरी प्रोफेशनल सेटअप एज वेल. इन पापा टोटो नील. अच्छा, नील भाई कह रहे हैं कि वो खुद हेयर कट करवाते हैं या करते हैं फॉर जस्ट $10. अरे भाई साहब, मेरे को नंबर चाहिए आपका. मेरे को चाहिए. सो बिग शाउट आउट टू नील भाई एज वेल ओवर हियर. कोई भी कटवाना चाहता है बाल बाल बाल बाल, तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम. यस, फेसबुक पेज कुछ है ऐसा, बता दो यार नंबर. तो ऑब्वियसली आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज ओवर हियर, बट बताइए मुझे. नील भाई, मैं तो सबसे पहले बुक करूंगा आपको यार. मतलब $10 यार, कितनी बचत होगी यार, है ना. मतलब मेरे को तो ग्रोथ बहुत, टचवुड, ग्रोथ इतना जल्दी हो जाता है दैट आई डेफिनेटली नीड एटलीस्ट वंस अ मंथ ये इतना हेयर कट होता है. बट थैंक यू यार, थैंक यू. और किसी को और भी सवाल जो आप पूछने हैं तो बता दीजिए. मेरे को लग रहा है आज बहुत ही बढ़िया मौका है टू फाइंड आउट द बेस्ट बार्बर इन टाउन.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं अभी की लेटेस्ट आज के एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड के बारे में। 6 अक्टूबर 1769 की ये बात है जब एक 12 ईयर ओल्ड शिप बॉयज निकोलस योंग ने कैप्टन जेम्स कुक के शिप HMB एंडिवोर से पहली बार न्यूजीलैंड की लैंड को स्पॉट किया था। निकोलस को रिवॉर्ड के तौर पर एक गैलन रम मिला और कुक ने पुअर्टी बे के साउथ वेस्ट पॉइंट का नाम योंग निक्स हेड रख दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि योंग ने जो लैंड देखी थी वो शायद एक्चुअल कोस्ट लाइन नहीं बल्कि इनलैंड माउंटेन रेंज थी। लेटर निकोलस योंग इंग्लैंड वापस जाने के बाद बॉटनिस्ट जोसेफ बैंक्स के सर्वेंट बने और 1772 में उनके साथ आइसलैंड भी गए। That's so cool, yeah. That's so cool. Good to know that.

0: ब्रेकफास्ट विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Buy a birthday bundle at Macca's and get a birthday bonus. Choose between 35% off toys online at the warehouse or free 30-minute time play at Time Zone. The more the merrier at Macca's 50th. T's and C's apply. Birdie.
4: A message to all road users. You must now give way to buses that are leaving bus stops, the roadside or bus lanes in areas where speed limits are 60 kilometres an hour or less. This will help buses rejoin traffic safely. Learn more at nzta.govt.nz.
0: Lunchbox with Keithan.
5: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी। हम
6: चटनी शॉट्स। चटनी शॉट के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं फट से पढ़ूंगा आपके लिए खबर, और खबर कुछ ऐसी है, कल एक्चुअली बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड एंड उसने बताया कि ही वॉज लिटरली सिटिंग इन द कार, ऑब्वियसली थोड़ा दूर था, और सडनली उसने देखा कि कोई कार आई और कोई बंदा क्रॉस कर रहा था, शायद वेस्ट की तरफ ये कुछ हुआ, क्रॉस कर रहा था और सडनली किसी ने ऊपर से कार चला दी एंड लिटरली ब्रेकिंग द जो लाइट का खंबा होता है उसे भी तोड़ के चले गए, और वो बंदा लिटरली गाड़ी के नीचे था। सो इट वाज वेरी वेरी स्कैरी फॉर हिम एज वेल, और जिस हिसाब से वो बता रहा था उस हिसाब से भी हम सोच के भी, हमें सुन के भी थोड़ा डर सा लग रहा था कि यार होपफुली ही इज़ ओके, बट नॉट श्योर उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज भीड़ इतनी जमा हो गई एंड देन यू नो पुलिस आ गई थी एंड देन एम्बुलेंस भी आई थी वहाँ पे। बढ़िया सर, वेस्ट ऑकलैंड के ग्लेंडन में संडे रात को एक काफ़ी सीरियस स्टेबिंग भी हुआ। ये वो नहीं है, ये अलग खबर है, वो तो कल की बात है, और ये जो है ये संडे की बात है जिसमें 3 लोग इंजर्ड हुए थे इंक्लूडिंग एक चाइल्ड। 2 लोगों की कंडीशंस काफ़ी क्रिटिकल है और अब एक पर्सन सर्जरी के बाद भी क्रिटिकल है, जबकि दूसरा सीरियस बट स्टेबल कंडीशन में आ चुका है। तीसरा परसों मॉडरेट इंजरीज के बाद घर पर रिकवर कर रहा है, और पुलिस ने 33 ईयर ओल्ड वुमेन को अटेम्प्टेड मर्डर के चार्ज में अरेस्ट किया है। पुलिस के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व्ड लोग एक दूसरे को जानते थे और किसी और सस्पेक्ट की तलाश नहीं की जा रही थी। इंसिडेंट के वक्त नेबर्स ने इंजर्ड लोगों की हेल्प भी की, जिसके लिए पुलिस ने उनकी ब्रेवरी को अप्रिशिएट भी किया। वुमेन आज वाई ठाकरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेड साइड हियरिंग के थ्रू अपियर होने वाली है, तो जैसे ही कुछ अपडेट आता है वहां से हम आपको जरूर बताएंगे।
0: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
0: थ्रोबैक Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: वेलकम बैक. ये रहा मेरा सवाल इस आर का. हिप्पोपोटामस, ये तो आपको पता ही है ना कौन है. वैसे उससे पहले ये सवाल करना चाहूंगा, आपको जब पसीना आता है कौन से कलर का आता है? आप भी सोच रहे हो कि क्या फनी कलर, फनी क्वेश्चन है. को पसीने का आइडियली आई फील देयर इज नो कलर, राइट? ट्रांसपेरेंसी टाइप ही होता है. इट्स लाइक वाटर, ओनली वाटर टाइप. बट अगर मैं पूछूं हिप्पोपोटामस जो होता है उसको जब स्वेटिंग होती है तो कौन से कलर की हो जाती है उसकी स्किन? ये आप मुझे जवाब दीजिए 5599 पे. जी हाँ, व्हाट कलर इज हिप्पोस स्वेट? टू लेट मी नो. 5599 पे टेक्स्ट भेजिए आप मुझे. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर.

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: हम आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Taking part in the 2026 general election feels easier when you know what to expect. If you are disabled, a caregiver, or a support person, then you may have questions about the accessible options available to enrol and vote. Join one of our online sessions to get practical information and ask the questions that matter to you. Find session details at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
5: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
6: मेरी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए.
7: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
5: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
8: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
5: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
8: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
9: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.